नव ऊर्जा, नव सृष्टि सृजन, नव हो उमंग, पवित्र हो मन। नित्य नव दिवस का शुभारंभ भक्ति भाव की पुष्पांजलि।

मन मंदिर में जब बजे भक्ति की करताल, सुरों से ही सजती है ईश्वर की ये ढाल। ना चढ़ाओ सोना चांदी ना कोई थाल, बस भावों से भर दो तुम अपनी ही पुष्पांजलि की डाल। नमस्कार, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और आप सभी भक्तजनों की उपस्थिति से सजी इस पावन सुबह में मैं रतन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं।

भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। उनका स्वरूप सादगी, तपस्या और त्याग का प्रतीक है। वे कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते हैं और संसार को जीवन जीने की सच्ची शिक्षा देते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ है, जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है।

प्रातः के 6:15 का समय हो चुका है। आप सुन रहे हैं पुष्पांजलि 100.7 FM रेनबो पर आज अपने दोस्त रतन के साथ। भक्ति मनुष्य के भीतर शांति और संतोष का संचार करती है। जब व्यक्ति संसार की अस्थायी वस्तुओं से असंतुष्ट होकर ईश्वर की शरण में जाता है, तब वह सत्य आनंद का अनुभव करता है। यह आनंद न समय से टूटता है, न ही परिस्थितियों से।

जानकी जी और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। रास्ते में नदी पार करनी थी। केवट पहले से ही अपनी नाव लिए खड़ा था। उसे मालूम था आज प्रभु आ रहे हैं, आज सेवा का अवसर मिलेगा और मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। प्रभु पहुंचे, केवट ने स्वागत किया। प्रभु ने कहा, केवट हम लोगों को उस पार उतार दो। केवट ने कहा, प्रभु आपका सेवक हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा।

लेकिन एक छोटी सी शर्त है मेरी। प्रभु ने कहा क्या शर्त है? केवट बोला, प्रभु पहले अनुमति दें कि मैं आपके चरण पखार लूं।

है बस, और वो भी मेरी जीविका का सहारा है। इसको कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रभु मन ही मन मुस्कुराए, समझ गए केवट क्या चाहता है। अनुमति दी। केवट ने प्रभु के चरण पखारे, चरणामृत पिया और ले चला उस पार।

उतार दिया उस पार। प्रभु ने सोचा केवट का तो यही काम है, यह व्यवसाय है, इसको मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन बनवासी राम देते क्या, कुछ था ही नहीं। सीता जी की ओर इशारा किया। सीता जी ने अपनी एक मुद्रिका उतार के केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। प्रभु ने कहा ले लो केवट, ये तो तुम्हारा व्यवसाय है, तुम्हारी मजदूरी है। केवट ने कहा प्रभु एक विशेष कारण है, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। प्रभु ने कहा क्या कारण है? केवट बोला प्रभु एक ही व्यवसाय करने वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं करते। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा और केवट का व्यवसाय एक कैसे हो गया। केवट ने कहा प्रभु है

प्रभु एक ही व्यवसाय है, एक ही काम है। मैं भी नाविक हूं, आप भी नाविक हैं, थोड़ा ही सा फर्क है। मैं इस छोटी सी नदी का मल्लाह हूं और आप इस भवसागर के मल्लाह हैं।

और भक्तों के लिए आशीर्वाद पूर्ण है। शनिवार या मंगलवार को हनुमान चालीसा का 7 या 11 बार पाठ करना उनकी कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। सिंदूर चोला चढ़ाना, लाल फूल चढ़ाना और ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का जाप उनकी पूजा के मुख्य अंग हैं। ऐसा करने से वीर बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और अपनी आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करते हैं। बोलिए वीर बजरंगबली महाराज की जय।

भगवान शनि की भक्ति अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। शनि देव न्याय के देवता हैं, जो कर्म फल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उनकी पूजा के लिए शनिवार को तिल, सरसों का तेल, काले कपड़े और लोहे की वस्तुओं का दान करना चाहिए। शनि चालीसा या शनि स्त्रोत का नियमित पाठ, नीले या काले रत्न धारण करना और शनि मंदिर में दीप जलाना उनकी कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय है। सच्चे मन से ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करने से शनि दोष शांत होता है और जीवन में स्थिरता आती है। उनकी भक्ति से कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति धैर्यवान बनता है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

श्री हनुमान जी की भक्ति शक्ति और नम्रता का संदेश देती है। वे कहते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार, अर्थात भगवान मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान करें, सभी दोष हर लें। वे कहते हैं, शारीरिक बल से अधिक मन का बल महत्वपूर्ण है, जो आंतरिक शक्ति पर जोर देता है। उनकी ये बातें जीवन को उत्साहपूर्ण और राम भक्तिमय बनाती हैं।

भक्ति जीवन का सबसे ऊंचा आभूषण है। यह मनुष्य को अहंकार से मुक्त करके विनम्रता, प्रेम और आनंद का अनुभव कराती है। भगवान का स्मरण और उनकी शरण ही वह पवित्र पथ है जिस पर चलकर आत्मा अपने परम लक्ष्य ईश्वर से मिलन को प्राप्त कर सकती है। इसी कामना के साथ कि आपके जीवन में भी भक्ति की रसधार बहे, आज की पुष्पांजलि से अब अपने दोस्त रतन को दीजिए जाने की अनुमति और आप सुनते रहिए एफएम रेनबो, जिस पर अगला कार्यक्रम सदाबहार गीत बिल्कुल तैयार है आपके लिए। न्यूज ब्रेक के बाद आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए एफएम रेनबो।

नमस्कार, प्रातः के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और विभिन्न विशेषज्ञों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य कैंसर टास्क फोर्स और उत्तर प्रदेश ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हर जिले तक कैंसर उपचार सुविधाएं विकसित करने और सड़क दुर्घटनाओं व अन्य आपात स्थितियों में गोल्डन आवर के भीतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशव्यापी एकीकृत ट्रॉमा और इमरजेंसी नेटवर्क स्थापित करने के निर्देश दिए। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि देश की सबसे न्यूनतम बिजली दरें उत्तर प्रदेश में हैं। कल एक प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और दिन के समय उपलब्ध सस्ती सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित सोलर आवर्स में 20% टैरिफ छूट की व्यवस्था लागू की है। इससे न केवल ईवी चार्जिंग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि जो कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लखनऊ का यह उनका पहला दौरा होगा। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक लगभग 42 भव्य स्वागत मंच बनाए गए हैं, जहाँ पार्टी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उनका स्वागत करेंगे। श्री नवीन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल होंगे। शिक्षा पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा का आज अंतिम दिन है। कल दूसरे दिन की परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों पालियों में कुल 8,07,709 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से करीब 93% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया। परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से भी सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

कुछ नगमे दिल से जुड़ जाते हैं, कुछ लफ्ज सदियों तक गूंजते हैं। आज उन्हीं धड़कते सुरों का सफर है, जहां हर गीत में एक मोहब्बत है। दोस्तों, यादों की गलियों में लेकर चलने आ रहे हैं हम, जहां मोहब्बत के नगमे हैं, जहां रोमानियत की खुशबू है। सदाबहार गीत के इस खास सफर में आज हम आपको सुनाएंगे वो नगमे जिनकी धुनें अब भी दिल को धड़कन देती हैं। तो चलिए इस यादगार सफर का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात।

जी हाँ दोस्तों, 7:10 का समय, प्रोग्राम सदाबहार गीत, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। तू चांद बन के आए मेरी जिंदगी में, तू चांद बन के आए मेरी जिंदगी में, तेरी रोशनी से रोशन मेरी बंदगी है।

सात बजकर 15 मिनट का समय, प्रोग्राम सदाबहार गीत। और दोस्तों लगातार आपकी जो मेल्स हैं वो भी हम तक पहुंचती रहती हैं। सुबह 6:30 बजे यानी कि मेल प्रोग्राम इधर शुरू हुआ पुष्पांजलि, और आपकी मेल्स का जो सिलसिला है वो प्रारंभ हो जाता है। लगातार हमारे पास मेल्स आती रहती हैं। और मनीष यादव साहब जी की मेल हमारे पास आई है। पता है दोस्तों, इन्होंने हमें सुबह 6:30 बजे मेल की और ये कह रहे हैं, मेरे प्यारे रतन सर को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मनीष कुमार यादव सदरापुर ज़िला सिधौली सीतापुर से ये हमें इन्होंने मेल की है। और ये कह रहे हैं कि घमंड इंसान की बुद्धि को इतना अंधा कर देता है कि उसे अपनी ही बर्बादी का रास्ता दिखाई नहीं देता है। क्या बात। अहंकार में इंसान दूसरों की नहीं सुनता और धीरे धीरे अपना सब कुछ खो देता है। सभी प्रोग्राम आप लाजवाब प्रस्तुत करते हो। सर मैं आज प्रोग्राम नहीं सुन रहा हूँ क्योंकि आज मैं बहराइच टेट का पेपर देने आया हूँ। थैंक यू। तो आप प्रोग्राम नहीं सुन रहे हैं लेकिन आपने मेल करना नहीं भूला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आप अपने पेपर की तैयारी में लगे हुए होंगे तो आपको आपके पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे नंबरों से इस पेपर में पास हों और आपका आने वाला जीवन बहुत सुखमय हो, यही हम दुआ करते हैं आपके लिए। मनीष जी राधे राधे। बहुत मेहनत करते हैं हमारे जितने भी लिसनर्स हैं दोस्तों, बहुत कुछ खास करने की कोशिश करते हैं। और अगली मेल जो आई है हमारे पास वो किसकी है ये भी देखिए, हमारे बहुत प्यारे से लिसनर हैं नीरज कुमार इनका नाम है। हेलो डियर प्यारे क्यूट से गोलू बोलू आरजे जी को प्यार भरा नमस्कार। और ये नीरज कुमार की मेल से हमें हमारी पुरानी जो लिसनर है रिंकी पिंकी वो हमें मेल कर रही हैं जगदीशपुर शिवगण दीवानों के शहर जिला रायबरेली से। गुड मॉर्निंग शुभ प्रभात सभी श्रोताओं को, कैसे हैं हम लोग? एकदम चकाचक हैं बिल्कुल। चलिए हम यही आशा करते हैं कि आप भी बिल्कुल चकाचक होंगी। और ये कह रही हैं कि जुड़ गए हैं हम आपके कार्यक्रम में आपका साथ निभाने के लिए। थैंक यू सो मच रिंकी और पिंकी। हमारे साथ सभी दोस्त भी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे नाम भी दिए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। और ये अनुरोध कुछ कर रही हैं कि एक अनुरोध है कि ओके इस कार्यक्रम में सुधार कर दीजिए। बिल्कुल चलिए, हमने आपके सुधार को नोट कर लिया है और इस प्रोग्राम में सुधार हम ज़रूर कर देंगे। थैंक यू सो मच रिंकी और पिंकी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेज बहादुर यादव जी की भी मेल हम तक पहुंची है। पुष्पांजलि और सदाबहार गीत कह रहे हैं, रतन सर जी कैसे हैं आप? तो मैं बहुत अच्छा हूँ। और पुष्पांजलि और सदाबहार गीत के बारे में इन्होंने कुछ अपने विचार हम तक पहुँचाए हैं, आगे लिखते हैं।

हमारे प्यारे रतन सर जी को मेरा प्यार भरा सुप्रभात और राम राम। कैसा है आप? तो मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत सुंदर भक्ति गीत सुनवाए जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। यानी कि ये मेल इन्होंने हमें पुष्पांजलि के दौरान ही कर दी थी। मन प्रसन्न हो जाता है ऐसे भक्ति गीत सुनकर, सब मंगलमय कर देते हैं दक्षिण मुख के हनुमान प्रभु। क्या बात। तो वाकई में दोस्तों, ये जो भक्तिमय माहौल है, हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि इस वातावरण को पूरी तरह से भक्तिमय बना दें, ताकि आपका जो दिन है ना, उसकी जो शुरुआत है वो इतनी प्यारी हो, इतनी भक्तिमय हो कि आपका पूरा दिन बहुत ही खूबसूरत सा गुजरे। आपकी मीठी मीठी बातें तो अलग ऊर्जा देती हैं हमें। सुबह सुबह थोड़ा जल्दी आने की कृपा करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी आया करें आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। आज आप आएंगे, ये खबर अच्छा अंजू दीदी ने आपको पहले ही दे दी थी। थैंक यू सो मच तेज बहादुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गाँव मऊ शर्की ज़िला रायबरेली उत्तर प्रदेश से ये हमें मेल कर रहे हैं और रहने और मेल तो हम ये यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन इस समय ये हमें गुरुग्राम हरियाणा में सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बात हम जानना चाहेंगे तेज बहादुर जी, कि गुरुग्राम हरियाणा में आप क्या करते हैं, हमें ये बताइए। आप किस तरह का काम करते हैं, क्या वर्क है आपका, हमें ज़रूर बताइए, हम जानने के इच्छुक हैं। बहुत सारी मेल्स और भी हैं हमारे पास। 7:20 का समय हो चुका है। इतनी प्यारी प्यारी बातों के साथ, इतनी प्यारी प्यारी मेल्स के बाद कोशिश हमारी बस यही रहती है कि एक प्यारा सा गीत भी हम आप तक बहुत जल्दी से पहुंचा दें। तो इस प्यारे से गीत को अपने प्यारे से कार्यक्रम सदाबहार गीत पर एंजॉय कीजिए। हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेडियो, धड़कन लखनऊ की।

0: को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: 870-001-4242।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात बजकर 25 मिनट का समय हो चुका है और ये हो गए 7:26। और दोस्तों ठीक 7:30 पर आप सुनेंगे विंबलडन टेनिस चैम्पियनशिप 2026 की अपडेट्स। तो आप बस थोड़ा सा कीजिए इंतज़ार, फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए आपके अपने प्यारे से शो सदाबहार गीत पर। और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना दोस्त रतन।

अभी आप सुन रहे थे विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 की अपडेट्स। सात बजकर 35 मिनट का समय, आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत कर रहा हूं आपके अपने प्यारे से शो सदाबहार गीत पर, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। और दोस्तों, लगातार आपकी मेल्स हम तक पहुंच रही हैं, लेकिन अभी ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए।

दोस्तों बातें करते करते आपसे टाइम का पता ही नहीं चलता, जैसा कि हर बार हमारे साथ यही होता है कि जब आपसे बातें करते हैं तो वाकई में टाइम इतनी अच्छी तरह से पास हो जाता है, इतनी अच्छी तरह से गुजर जाता है, एहसास ही नहीं होता कि एक घंटा कब गुजर गया। और वाकई में ये जो साथ है आपका बहुत प्यारा सा लगने लगता है, और ज़्यादा जब आपकी ये जो मेल्स हम तक पहुँचती हैं और ये मेल्स लगातार यह हमें एहसास दिलाती हैं कि आप हमारे साथ लगातार इसी प्यार, इसी मोहब्बत, इसी जज्बे के साथ बने हुए हैं कि आपकी मेल्स हम ज़रूर पढ़ेंगे। और वाकई में हमारी कोशिश भी यही रहती है कि जितने भी मेल्स हम तक पहुँचें हम उन्हें आपके लिए ज़रूर ज़रूर पढ़ें। सुल्तान रज़ा साहब की मेल हम तक पहुँची है, अस्सलाम वालेकुम, जिसकी आवाज़ सुनने को हम करते हैं जतन और हमारे साथ हैं हमारे गोलू मोलू आरजे रतन। भैया इतना इतना प्यार, इतनी आर्टिस्टिक बातें कहाँ कहाँ से आप लोग लेकर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। जिसे मिलाने की दिल में बहुत जुस्त जू है और इस सफ़र को और भी बेहतर बनाएंगे हमारी प्यारी आरजे।

जूं मैडम ओके सुपर फास्ट एक्सप्रेस को सुल्तान रजा का प्यार भरा आदाब। कुतुबखाना सब्जी मंडी बरेली से ये हमें मेल कर रहे हैं और जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा, मम्मी पापा, इन्होंने उनका नाम भी दिया है और कह रहे हैं एक शायरी इन्होंने छोटी सी कुछ पंक्ति के रूप में भेजी है। चलिए देख लेते हैं क्या इन्होंने कहा है। हाय क्या शायरी है, ऐसा इनका कहना है कि कुछ सालों बाद ना जाने क्या समा होगा, कुछ सालों बाद ना जाने क्या समा होगा, पता नहीं कौन सा दोस्त कहाँ होगा, फिर मिलना होगा तो मिलेंगे यादों में, फिर मिलना होगा तो मिलेंगे यादों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारी प्यारी ये दोस्ती जो है कभी भी पुरानी नहीं होगी, सूखे गुलाब के पत्तों की तरह किताबों में नहीं मिलेगी, ये हमेशा यूं ही जिंदा रहेगी और आपसे हमारी ये दोस्ती लगातार यूं ही बढ़ती रहेगी। हिमांशु त्रिपाठी साहब बालागंज लखनऊ से हमें मेल कर रहे हैं। हेलो रतन सर, कैसे हैं आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलफ्सा सिद्दीकी की भी मेल हम तक पहुंची है। हेलो गुड मॉर्निंग रतन भाई, मैं गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से, मैं आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि आपको सुन लिया और मेरी भी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि आपकी मेल हम तक पहुंच गई है और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए कि आप एफएम रेनबो को इतना प्यार करती हैं, हमें इतना प्यार करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है मैं आज रात को सोच रही थी कल रतन भाई आए तो मज़ा आ जाएगा क्या बात है, अगर आप कुछ और भी मांग लेती ना ऊपर वाले से तो वो भी शायद आपको मिल जाता। और देखो आप आज आ गए, वेरी वेरी थैंक्स। और इन्होंने तीन चार कई नाम भी इन्होंने साथ में लिखे हुए हैं, हम सभी सुन रहे हैं आपको, ओके थैंक यू सो मच गुलफ्सा जी, आपको और आपके जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त हैं उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अशोक कुमार साहब की भी मेल हम तक पहुँची है और ये अशोक राज साहब हैं। सुप्रभात सर, कैसे हैं? और ये हमें रायपुर, उदारा, मिथौली, सीतापुर, लखीमपुर, माफ़ी चाहेंगे, लखीमपुर खीरी से हमें मेल कर रहे हैं, कह रहे हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, पुष्पांजलि भजन बहुत अच्छे लगे और सदाबहार के जो नगमे हैं वो इन्हें पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। राजकुमार साहब की मेल हम तक पहुँची है, गाँव फरांसी, ज़िला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, इस कार्यक्रम में हम पहली बार भाग ले रहे हैं, कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है और जी सुबह सुबह आपका कार्यक्रम ताजगी देता है जी, थैंक यू सो मच जी। मोनू साहब की भी मेल हम तक पहुंची है और ये कभी कभी संस्कृत के जो शब्द हैं बहुत कठिन लिख देते हैं, भैया जी सुप्रभात, महाकाल, जय महाकाल, कैसन हैं उम्मीद है बहुत नीक हुई हैं आप, ओके हम बहुत नीक हैं, अच्छे हैं, पुष्पांजलि बहुत खूबसूरत रहा, पुराने गीत भी बहुत अच्छे बज रहे हैं आपके द्वारा, ओके संतोषा परमो लाभा सत्संगा परमा गति विचारा परमम ज्ञानम शमो ही परमम सुखम, अर्थात संतोष यानी प्रसन्नता सबसे बड़ा लाभ है और अच्छे लोगों के साथ सत्संग सबसे बड़ी गति है, सही विचार सबसे बड़ा ज्ञान है और मन की शांति ही सबसे बड़ा सुख है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और इतनी प्यारी और इतनी ज्ञानवर्धक मेल हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे पास मुनेश कुमार साहब की मेल आई है और इन्होंने एक सुविचार भी दिया है कि इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है, पेड़ लगाओगे तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें धुआं देंगी। रतन सर को सुबह सवेरा, आपको भी इस प्यारी प्यारी सुबह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर रतन सर, आपका सदाबहार गीत कार्यक्रम सुनकर दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाती है, थैंक यू सो मच, आप हर गाने इतने प्यार और लगाव से प्रस्तुत करते हैं कि पुराने गाने भी बिल्कुल नए जैसे लगने लगते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है, ये तो मैं पहली बार पता चला कि पुराने गाने भी नए जैसे लगने लगते हैं, थैंक यू सो मच, आपकी गानों की पसंद और प्रस्तुति का अंदाज बेमिसाल है, थैंक यू सो मच, आप जो गाने चुनते हैं वो सीधे दिल को छू जाते हैं, पुराने ज़माने की मिठास और आज की ताजगी दोनों आपके कार्यक्रम में मिलती है, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए इतना शुक्रिया आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कार्यक्रम में हमेशा सीखने, आपके कार्यक्रम से हमेशा सीखने को मिलता है, अच्छी चीज़ें

कभी पुरानी नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही श्रोताओं का मन मोहते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप जैसे श्रोता हमारा साथ इसी प्यार के साथ निभाते रहेंगे तो क्यों नहीं हम इस तरह की बातें और इस तरह के गीत आप तक भेजते रहेंगे। और इन सब गीतों का, इन सब बातों का जो माध्यम है आपका अपना प्यारा सा रेनबो, तो रेनबो को सबसे बड़ा वाला शुक्रिया आपको हमें मिलाने के लिए। लेकिन अभी समय हो चुका है इस प्यारे से गीत का, तो बस इस गीत को सुनिए, हमारे साथ इसी प्यार के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

7:52 का समय और अब एक सूचना कि कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस आप सुनेंगे प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 से 1 बजे, जिसके प्रायोजक होंगे चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ। और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक। बस आप इसी प्यार के साथ हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। 7:53 का समय हो चुका है और जो मेल्स हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं जी। और जगदीश जी की भी मेल हम तक पहुंची है और ये मेल हमें कर रहे हैं कहां से, ये मेल इन्होंने हमें मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम MP से इन्होंने मेल की है। कह रहे हैं आपको प्यार भरा

नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम लाइव एंजॉय हो रहा है, हमें भी शामिल करें, हो सके तो कोई गीत में शामिल कर ले। ठीक है, बिल्कुल, हम आपको शामिल कर लेंगे। और इन्होंने कई नाम भी साथ में मेंशन किए हुए हैं, शुक्रिया जगदीश जी। ब्रजेश सिंह जी की भी मेल हम तक पहुंची है, गुड मॉर्निंग मेरे फेवरेट सर जी, कहाँ चले गए थे, इतने दिनों के बाद आए हैं, बहुत याद आ रही थी आपकी। हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। अरे भाई, हम भी छुट्टियों पे गए थे, जब आप लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं तो हम नहीं जा सकते क्या, इसलिए हम भी चले गए। हमने कहा हमारे श्रोतागण इतनी छुट्टियों पे जाते हैं कभी कभी, तो चलिए इस बार हम भी एक लंबी छुट्टी पर जाते हैं और देखते हैं कितना मिस करते हैं हमें। और वाकई में आप लोगों ने हमें बहुत मिस किया, थैंक यू सो मच। आपकी सर मीठी सी आवाज़ सुबह कार्यक्रम को और बेहतरीन बना देती है, कार्यक्रम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, थैंक यू सो मच। ब्रजेश जी, इटावा कैसरगंज बहराइच से आप हमें मेल कर रहे हैं। 7:54 का समय हुआ है। सुधांशु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भगवती पूर्व पोस्ट मोहाना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से। कार्यक्रम पुष्पांजलि ने अच्छा लगा, अच्छे अच्छे

आवाज़ सुबह कार्यक्रम को और बेहतरीन बना देती है. कार्यक्रम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है. थैंक यू सो मच ब्रजेश जी. इटावा कैसरगंज बहराइच से आप हमें मेल कर रहे हैं. 7:54 का समय हुआ है. सुधांशु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भगवती पुर पोस्ट मोहाना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब ज़िला लखनऊ से. कार्यक्रम पुष्पांजलि ने अच्छा लगा. अच्छे अच्छे गीत जो उसमें बजाए गए भजन इन्हें पसंद आए. सदाबहार गीत भी इन्हें पसंद आ रहा है. आपने गाने बहुत अच्छे अच्छे बजाए. मेघा रे मेघा और मध्य प्रदेश क्या मेघा रे मेघा ये गाना मुझे बहुत पसंद है. सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी. थैंक यू सो मच. इतनी लंबी छुट्टी के बाद आने के बाद थोड़ी एनर्जी और ज़्यादा आ गई है. आंचल सेठ जी की मेल हम तक पहुंची है. रतन भैया नमस्ते. अंजू दीदी के आगमन पर शुभकामना. सनीचर भक्ति में आपका भी इंतज़ार रहा. पुष्पांजलि बहुत सुंदर रहा. ओके थैंक यू सो मच. तेज बहादुर यादव जी की फिर मेल हमारे पास वही वाली दोबारा आ गई है. थैंक यू सो मच तेज बहादुर जी. इतनी प्यारी प्यारी आप लोग हमें मेल्स करते हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं. और अब इतनी सारी बातों के बाद समय भी इशारा करने लगा है कि आज के सदाबहार गीत को हम यहीं पर वाइंड अप करते चलें, क्योंकि जब तक हम इस कार्यक्रम को वाइंड अप नहीं करेंगे तब तक अगले प्रोग्राम यानी गुड मॉर्निंग लखनऊ में आपसे मुलाकात कैसे करेंगे. ठीक 8 बजे आप तक पहुंचेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से. और ठीक 8:15 पर होगी आपकी हमारी मुलाकात, जिसमें मैं तो आपके साथ रहने वाला हूँ और अंजू भी आपके साथ रहेंगी, आपकी फेवरेट आरजे. तो बस आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए. सुंदर 7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की.

0: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की मौसम विभाग ने गुजरात गोवा महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा और मैनचेस्टर में दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स शहरी परिवहन रेलवे सड़क नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई है प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई पैकेजिंग टेक्सटाइल ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा इस चरण से एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी जितेंद्र द्विवेदी आकाशवाणी समाचार जोधपुर
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा यह प्लांट डिजाइनिंग वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा इसके साथ ही यहां निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव दूरसंचार 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी अपर्णा खूट आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से

0: गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्योर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक वित्तीय तकनीकी निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर उज्जैन देवास धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और

0: विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और

साइक्लोन के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात।
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ।
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल, सांस्कृतिक गतिविधियां और सेहत का ख्याल, अखबारों की सुर्खियां और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे।
1: नहीं तो आप बता ही दीजिए किस बात का गम है।
0: तो
1: पूछ ही लेते हैं
0: तो पूछ लिया
1: नहीं तो अब आप बता ही दीजिए।
0: अब आपने पूछ लिया तो कोई गम ही नहीं है।
1: अच्छा
0: यही तो गम है कि वो हालचाल पूछते नहीं, लेकिन हम आते हैं हमेशा आपका हालचाल पूछने के लिए। तो कैसे हैं भाई आप लोग? नमस्कार, गुड मॉर्निंग,
1: स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से शो गुड मॉर्निंग लखनऊ पर। आप सभी को सादर आदाब, आप सभी का अभिनंदन। मैं हूं रतन और मेरे साथ हैं अंजू, आपकी प्यारी और फेवरेट आरजे।
0: अच्छा, आप भी बहुत फेवरेट हैं और बहुत प्यारे हैं रतन। और वैसे ये जो गाना है ना, ये भी पूछ रहा है आपसे हालचाल, है ना? तो सुना देते हैं। गुड मॉर्निंग सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग लखनऊ 100.7 एफएम रेनबो पर। 8:17 का ये वक्त, और यकीनन ये सफर हमारा खूबसूरत होगा, शानदार होगा जब आप हमारे साथ होंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
1: आज का मॉर्निंग मंत्र।
2: जी दोस्तों, 8:22 का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपके दो दोस्त अंजू और रतन आपके साथ हैं और अब समय हो चुका है कि आज के मॉर्निंग मंत्रा को भी आप तक पहुंचा दिया जाए।
3: जी, तो आज हम शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरक विचार से। हालांकि उनके बहुत सारे विचार, उनके सभी विचार हमें हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, लेकिन अक्सर हम ये बात दोहराते हैं जो उन्होंने कही थी कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो इसी से जोड़ते हैं आज का मॉर्निंग मंत्रा।
2: जी हाँ दोस्तों, तो आइए आज के मॉर्निंग मंत्रा के साथ ये संकल्प लेते हैं कि संकल्प ये कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने लक्ष्य, अपने कर्तव्य और अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और ना ही हम हटेंगे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए।
3: बिल्कुल, और इसी के साथ हम नमन करते हैं श्रद्धा के साथ, पूरी कृतज्ञता के साथ स्वामी विवेकानंद जी को, क्योंकि आज है उनका उनका स्मृति दिवस और इस विषय में आगे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल गुड मॉर्निंग लखनऊ का ये सफर जारी रहेगा। 8:23 का वक्त है और आज बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास हैं आपके लिए, जो आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे अब से लेकर 10 तक, और साथ ही साथ बहुत सारे बढ़िया बढ़िया गाने भी हैं रतन, है ना, जो हम बहुत दिनों बाद सुन रहे हैं।
2: और इसके लिए आपको करना क्या होगा?
3: हमारे साथ बने रहना होगा
2: जी।
3: अपने काम करते रहिए क्योंकि सुबह का वक्त है, नाश्ता चल रहा होगा, वैसे तो वीकेंड है बहुत सारे लोगों का।
2: जी, बहुत सारे लोग अभी भी बिस्तर में होंगे। हाँ, आज वीकेंड का आनंद ले रहे होंगे।
3: बिल्कुल, लेकिन भाई स्कूल्स ओपन है 4 जुलाई।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: मुद्दा

0: आज का।
1: जी भाई, अब बात कर लेते हैं आज के मुद्दे से जुड़ी हुई, जिसका आप सभी को रहता है इंतजार। वैसे तो आपके खूबसूरत ईमेल्स हमें लगातार मिलते रहते हैं, लेकिन जब आज का जिस भी मुद्दे पर हम गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम में चर्चा करते हैं उस पर आपकी राय मिलती है तो हमारा प्रोग्राम मुकम्मल होता है। और 8:29 और ये लीजिए 8:30 हो गए हैं, 8:30 बज गए हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। लेकिन जहां कहीं भी आप हमें सुन रहे हैं, अगर आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए हमें सुन रहे हैं, लाइव रेडियो के जरिए हमें सुन रहे हैं, तो हमारी आवाज़ थोड़ी देर बाद उन तक पहुंचती है, कुछ सेकंड्स का अंतर रहता है। तो अपनी घड़ी अपने घर की घड़ी से या मतलब अच्छी वाली घड़ी से मिलाइएगा, और ये जरूर श्योर करिएगा कि आपका वक्त कुछ भी हो लेकिन वो जबरदस्त बनता है एफएम रेनबो के साथ, क्योंकि ये है हमारा सतरंगी चैनल। और जिस तरह से इंद्रधनुष जब आसमान में निकलता है ना तो हमारा मन प्रफुल्लित हो उठता है, उसी तरह जब रेनबो ट्यून इन होता है ना तो हमारे लिसनर्स का मन रेनबो की
2: साथ प्रफुल्लित होता है, जोश के साथ भर जाता है और खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता।
1: और इंद्रधनुष कब दिखता है आसमान में रतन?
2: बारिश के बाद।
1: और लेकिन इंद्रधनुष को देखने के लिए जरूरी है बादल और अच्छी वाली बारिश।
2: जी बिल्कुल,
1: है ना। वैसे खुशी की बात यह है कि मॉनसून का आगमन हो चुका है।
2: बिल्कुल हो चुका है,
1: और इंतजार तो हम सबको रहता है इसका।
2: बिल्कुल रहता है,
1: इससे तपती धरती को मिलती है राहत, किसानों के चेहरे पर आती है मुस्कान और पेड़ पौधे हरियाली से भर जाते हैं
2: और वातावरण में एक नई ताजगी आ जाती है। लेकिन
1: बारिश के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, पता है?
2: बिल्कुल आते हैं, संक्रामक बीमारियां बढ़ती हैं, जल भराव होता है, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जाती है, बिजली बाधित होती है और कई बार छोटी छोटी सी लापरवाही बड़ी बड़ी परेशानियों का कारण बन जाती है।
1: तो दोस्तों, बारिश का मतलब केवल गर्मा गर्म चाय, कड़क पकौड़े, भीगी सड़कें, सेल्फी और रोमांटिक गाने नहीं होते।
2: वैसे हमें यही याद आता है
1: अक्सर सबको, ज्यादातर लोगों को यही याद आता है और इसी से हम जोड़ते भी हैं। देखिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, खुश रहने के लिए कहते ना कि ख्याल ही काफी है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ख्याल अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारा मन प्रसन्न कैसे रहेगा। जैसे अभी हमने इंद्रधनुष की बात की, तो भाई देखिए, जब अच्छी अच्छी बातें हमारे आसपास होती रहती हैं, बारिश के मौसम में हम बहुत सारी चीजों का आनंद लेते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा, चाहे वो मौसम के साथ आनंद उठाने की बात हो, तीज त्योहार के साथ आनंद उठाने की बात हो, या रूटीन लाइफ में हर रोज, हर पल, हर वक्त, लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी है सावधानी और सतर्कता।
2: कहा जाता है ना अंजू की हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो बस जैसे बारिश का एक पार्ट इतना अच्छा, इतना खूबसूरत है कि बस चाय पकौड़े और सेल्फी और विंडो के भीतर बैठकर बाहर बारिश का नजारा देखना, ये एक पार्ट है।
1: और दूसरा और रेनबो पर बजते हुए बढ़िया बढ़िया गाने,
2: क्या बात,
1: सुनते रहना है ना। लेकिन दूसरा पार्ट है सफाई, सुरक्षा और जिम्मेदारी, साथ साथ सावधानी, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही पूरे परिवार को परेशानी में ला सकती है। और इसीलिए मानसून का स्वागत खुशी के साथ साथ पूरी तैयारी के साथ भी करना पड़ता है। और कौन कौन सी परेशानियां आती हैं बताएं? तो
2: परेशानियां तो बहुत सारी आती हैं, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले ही मैंने जिक्र किया कि बारिश के मौसम में बहुत सारी बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल बुखार, त्वचा के रोग और आंखों के संक्रमण जैसी जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ती हैं।
1: और इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स भी बढ़ते हैं, बिजली की समस्याएँ बढ़ती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके आसपास घट जाती हैं बारिश के मौसम में, जिसका मुझे लगता है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। और ख़ासतौर पर जब हम एक सामान्य भाषा में बात ना, एक लाइन में अगर कहे ना, तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर एक दिन भी, 2-4 घंटे भी लगातार बारिश हो गई, तेज बारिश, जल भराव हो जाता है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है।
2: जहां लोग सड़कों पे फराटे मारते हुए अपनी गाड़ियां चलाते हैं ना, वहां पे जब जल भराव होता है तो वही लोग अपनी गाड़ियों को बिल्कुल धीरे धीरे थामे हुए आगे बढ़ते नजर आते हैं, कारण जल भराव।
1: और कई बार तो घर में भी बाढ़ आ जाती है, क्योंकि छत की सफाई नहीं हुई होती है जल निकासी की जो भी तरीके होते हैं वहां पर सफाई नहीं हुई होती है, ठीक है, सड़कों की सफाई नहीं हुई होती है, जगह जगह कचरा होता है, घर में हमारी छत पे जो नाली है ना उस पर फूल पत्तियां इकट्ठा होते हैं, उसकी सफाई नहीं हुई होती है, घर की छत पे बहुत सारे पुराने फर्नीचर या जो कबाड़, अक्सर लोगों का शौक होता है कि अरे कुछ नहीं, यहाँ ये काम करनी है, चलो छत पे पहुंचा दो,
2: छत पे पहुंचा दो, कभी ना कभी काम आएगा, लेकिन कभी काम नहीं आता है,
1: कभी नहीं काम आता है। तो वो सारी चीजें, वहां पर पानी इकट्ठा होना और उसके बाद फिर जो इन्फेक्शन है वो फैलना, संक्रामक बीमारियों का तेजी से बढ़ना, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसी चुनौतियां आती हैं जिनका सामना आम जनता के साथ साथ शासन प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और तमाम अलग अलग विभाग भी करते हैं, पूरी तैयारियां

0: जीतती हैं, बावजूद उसके वो चुनौतीपूर्ण समय आ जाता है हम सबके सामने, बाढ़ जैसी स्थिति भी बनती है। तो कुल मिलाकर ये सारी भूमिका हमने इसलिए बनाई है कि आज के मुद्दे को आप तक पहुंचा दें और थोड़ा सा आप समझ लें कि मुद्दा है क्या। सीधी सी एक छोटी सी बात, मॉनसून का आगमन और आपकी तैयारी।
1: तो बस इस छोटे से मुद्दे के साथ आज अपने विचार, अपनी बातें हम तक साझा कीजिए। हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। इस मेल आईडी के माध्यम से आज हमारे साथ आप जुड़े, यानी कि FM रेनबो के साथ जुड़े और अपने विचार, अपनी बातें हम तक साझा करें।
0: बिल्कुल, तो बारिश का आनंद तो लेना ही लेना है, और लेकिन साथ साथ तैयारी भी जोरदार रखनी है ताकि जो हमारा आनंदपूर्ण समय है उसमें खलल ना पड़े। तो चलिए बताइए मॉनसून का आगमन और कैसी है आपकी तैयारी, हम है आपके ईमेल्स का इंतजार। और ये आ रहा है एक बहुत ही बढ़िया वाला गाना।

0: मैं देखिए बरसात में जब सावन का महीना आएगा तो अंगूठी भी पहना दीजिएगा है ना, सब कुछ कर लीजिएगा, लेकिन भैया बरसात तो आए पहले अच्छे से। हम चर्चा कर रहे हैं मॉनसून और उसकी तैयारियां, मॉनसून का आगमन। अच्छा, और आपकी तैयारी
1: जी, एक बात जरा सोचिए कि अगर आज आज आप अभी प्रोग्राम करने के बाद जब घर जाएंगी तो और तेज बारिश शुरू हो जाए तो आपकी क्या तैयारी है?
0: मेरी तो अच्छी खासी तैयारी है।
1: आपके बैग में मतलब रेन कवर है?
0: हाँ, नहीं, मैं जैसे अगर अपनी बात करूँ तो फोर व्हीलर से आती हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी का वाइपर ठीक है, सारे टायर सही हैं, है ना, और मतलब इस तरह की ऐसी कोई परेशानी अचानक से अगर तेज बारिश होती है तो मेरी गाड़ी फिट है।
1: पूरी तरह से आप तो पूरी तरह से तैयारी करके
0: और एक छतरी भी मेरी गाड़ी में रखी हुई है कि अगर मान लीजिए हमें उतरना हुआ पार्किंग से लेके यहाँ तक आने के लिए या कहीं और जाना है तो हम भीगे ना, उसके लिए मैंने तैयारी कर रखी है। लेकिन जो लोग टू व्हीलर से जा रहे हैं या अभी 8:41 हुआ है, वैसे बारिश अचानक आ जाती है, पता भी नहीं चलता
1: है ना,
0: वेदर अपडेट तो हम लेंगे बताएंगे, लेकिन फिर भी जो लोग टू व्हीलर से जा रहे होते हैं अचानक ऐसा होता है जैसे आपके साथ एक दिन हुआ है, आप भीग गए थे और भीगे भीगे आके स्टूडियो में आपको बैठना पड़ा था, है ना। तो मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आप पूछ रहे थे, पूछिए हमारे लिस्टनर से पूछिए।
1: हम तो अपने लिस्टनर से भी यही जानना चाहते हैं कि अगर आप अचानक से बाहर निकल चुके हैं और अचानक में बारिश हो जाए तो आपके साथ किस तरह की आपने तैयारी कर रखी है, क्या आपके बैग में रेन कवर है, या फिर क्या आप क्या मोबाइल और जरूरी दस्तावेज जो आपके बैग में है या आपके पास है वो सुरक्षित है या नहीं, क्या आपके वाहन के टायर ब्रेक और वाइपर ठीक है, जैसा कि अंजू ने कहा ये तो पूरी तरह से फिट एंड फाइन करके रखे हुए हैं और इन्होंने अपने साथ छाता भी ले रखा है, क्या आपके पास छाता या रेनकोट है और आपने उसको अपने साथ ले रखा है, अगर नहीं तो जरूर लेके रखिए। और बारिश का एक सबसे बड़ा अच्छा जो तरीका है वो ये कभी बता कर नहीं आती है, ठीक है?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये कभी भी बता कर नहीं आती।
0: कई बार बादल आते हैं और हाय हेलो करके चले जाते हैं बस ऐसे ही बिना एंट्री दर्ज कराए, लेकिन कई बार तो मतलब अचानक आ जाते हैं और अचानक मतलब सूर्य देवता भी होते हैं और बारिश होने लगती है।
1: तो इसके लिए करना क्या है, आपको सचेत रहना होगा, आपको सतर्क रहना होगा, तैयारी आपको पहले से करके करनी रखनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल रतन, और जो जरूरी दस्तावेज की बात आपने कही, मोबाइल की बात कही जिसमें हमारा सब कुछ होता है आजकल, तो ये तो जरूर आपके पास एक वाटरप्रूफ कवर होना चाहिए ताकि जब भी बारिश आए, अचानक भी बारिश अगर आ रही है या हो रही है लगातार बारिश, तो आप उन चीजों को सिक्योर कर सकें और आपका कोई भी छोटा भी नुकसान ना हो। साथ ही साथ रेनकोट, और भाई बारिश में भीगने में बहुत मजा आता है बड़े सारे लोगों को, है ना,
1: हीरो बनते हैं। मजा आता है जब हम किसी काम के लिए ना जा रहे हो या फिर हम फ्री हो तब बहुत आनंद आता है, लेकिन जब हम किसी जरूरी काम के लिए जा रहे होते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे भीगना बिल्कुल पूरी तरह से अलाउड है ही नहीं कि हाँ हमें बिल्कुल आराम से बिल्कुल फ्रेश और चमकते हुए जाना है, और वहां पे अगर हम भीग के जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती है।
0: बिल्कुल, और खासतौर पर जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, अकेले जाते हैं, टू व्हीलर से जाते हैं, पैदल जाते हैं, उनके साथ ये सारी चीजें जरूर होनी चाहिए। उनके बैग में उनका जो उनका स्कूल बैग है उसका भी रेन कवर अब तो सब बैग्स के साथ ही मिलता है, वो होना चाहिए, रेनकोट होना चाहिए। बच्चों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए ये भी आप उनको बताइए, समझाइए।
1: और अंजू, उस दिन के बाद बताया, जिस दिन मैं भीगा हूँ उसके बाद से मैंने भी सबक ले लिया और अपनी गाड़ी पे मैं रेनकोट रखता हूँ,
0: क्या बात
1: उस दिन से हटा नहीं है।
0: बिल्कुल, तो मुझे लगता है सबको ये चीजें, इन चीजों, छोटी छोटी चीजों की तैयारी करनी चाहिए। बीच बीच में हम तो बताते ही रहेंगे कि आप क्या क्या तैयारियां कर सकते हैं, लेकिन आप भी हमें बताइए कि अभी हमने सिर्फ इतना बताया कि घर से जब आप निकल रहे हो तो आपको क्या तैयारियां करके निकलना चाहिए मानसून के मौसम में खासतौर पर, लेकिन और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनकी ओर आपका ध्यान हम आकर्षित करेंगे। बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपके क्या विचार है, आपकी कैसी है तैयारी मॉनसून के आगमन पर, ये आप हमें बताइए। और कहाँ बताना है?
1: बताना है आपको हमारी मेल आईडी पे, बहुत ही मैजिकल और प्यारी सी मेल आईडी है हमारी fmakashwani@gmail.com। और इन्हीं बातों में हमें एक और बहुत प्यारा सा गीत भी याद आ रहा है अंजू, और इस गीत को आप एंजॉय कीजिए हमारे साथ, क्योंकि अच्छा। अभी आपने जो नगीने वाली बात बताई थी ना, तो वो नगीना थोड़ा अंगूठी में, हाँ, तो ये जो अंगूठी में नगीना है ये बिल्कुल जड़ा होना चाहिए और बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए और बहुत बड़ा होना चाहिए।

0: अच्छा अच्छा, मैंने अंगूठी वाला गाना इधर से बजा दिया तो
1: मुझे भी याद आ गया,
0: गाना और याद आ गया। तो चलिए एंजॉय कीजिए और वापस आते हैं तो और भी बहुत सारी प्यारी बातें आपके साथ। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

0: दोस्तों 8:47 का वक्त हो रहा है 100.7 FM रेनबो सुन रहे हैं आप. अंजू और रतन हैं आपके साथ. प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ. और गुड मॉर्निंग लखनऊ में अक्सर हम अपने शहर की गतिविधियों के बारे में भी बात करते हैं, अपनी संस्कृति अपनी तहजीब की भी बात करते हैं. और जब बात आती है हमारी संस्कृति की तो संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम हो रहा है सोपान संस्था की ओर से लखनऊ में होने वाला है. उसके विषय में चलिए हम बात करते हैं. और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री दीपक मिश्र सार्थक जी, जो सचिव हैं सोपान संस्था के. गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 100.7 FM रेनबो पर. सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम हो रहा है होने वाला है वो कब है और क्या कार्यक्रम है, उसकी रूपरेखा कैसी है, और हमारे श्रोताओं को उसके विषय में जानकारी दीजिए.
1: जी मैम, हमारे कार्यक्रम जो है अंजुमन अवध नाम से है, जो कि एक कथक नृत्य नाटिका है और इसको लिखा है डॉक्टर योगेश प्रवीण जी ने जी. और ये प्रस्तुति भी पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी को ही समर्पित कर रहे हैं हम लोग, जो कि 6 जुलाई सोमवार सायं 6:30 बजे राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह कैसरबाग में होगा
0: जी.
1: और इसके बारे में यही कहना चाहूंगा, आप सभी जानते हैं कि लखनऊ का जो भी नाजो रियाज राजो अंदाज की मिसाल आज भी कायम है और यहाँ की नजाकत नफासत और अदब की पूरी दुनिया आज भी कायल है. इसके साथ यहाँ की गीत संगीत रक्स को भी दुनिया ने सर माथे पर लिया है और आज भी जो है वो मुकम्मल है. इसके अलावा ये नवाबों के वक्त में, खास करके जाने आलम के वक्त में, जो हमारे जो भी ये नृत्य संगीत की विधाएं जो थी बहुत बुलंदियों पर थी, तो उन्हीं विधाओं को जो है हमने कथक के माध्यम से सजा करके अंजुमन अवध में पेश किया है, जिसमें हमने ये दिखाया है एक तरफ सावन

0: खुली बसंत की बहार, तो दूसरी तरफ मुजरे तराने गजल और कव्वाली का भी नूर मंजर नशी किया है। इसको इसका नृत्य निर्देशन जो किया है डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव, जो कि कत्थक की मशहूर डांसर हैं, और मैंने इसको डायरेक्ट भी किया गया है।
1: जी जी।
0: और योगेश जी, हमारे क्या आप सभी जो भी लखनऊ या लखनऊ वाले हैं, तो लखनऊ वालों के लिए योगेश जी के जगह दिल में जो है बहुत ही अच्छी जगह थी, और आज भी उनके जाने के बाद भी लगता है कि वो हमारे साथ ही हैं। और एक बात ये कहना जरूर चाहूंगा कि जो उनके करीब थे और नहीं भी थे, वो इस बात को जरूर महसूस करते हैं कि उनके न रहने से लखनऊ में कहीं बहुत कमी आई।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आप लोग तो उनके बहुत करीब रहे हैं, आप सभी जानते हैं जिस महफिल में चले जाते थे वो, एक रौनक अजीब तरह का माहौल, और सबसे मिलना, प्यार मोहब्बत से पेश आना, और बिल्कुल जमीनी इंसान से इतना होने के बाद भी।
1: बिल्कुल दीपक जी, योगेश प्रवीण जी हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे, और लखनऊ तो उन्हें कभी भूल ही नहीं सकता है।
0: मैं उनको याद करते हुए बस एक सेकंड का वक्त देना चाहूंगा,
1: जी बिल्कुल,
0: और
1: जी।
0: इस बात को अक्सर अपनी महफिल में वो खत्म किया करते थे लखनऊ वाले की तारीफ में, और आप सभी जानते हैं
1: जी,
0: वो कहते थे लखनऊ वाले अलग जान लिए जाते हैं, लखनऊ वाले अलग जान लिए जाते हैं, गुलाब फूलों में पहचान लिए जाते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत जज्बा उनका, और वो हमेशा जिंदा रहेगा लखनऊ वालों के दिलों में।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: दीपक सर, वैसे नाम से ही ये जाहिर है कि बहुत खूबसूरत ये प्रोग्राम होगा अंजुमन अवध, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या इस प्रोग्राम में जो प्रवेश है वो निशुल्क है या फिर इसके लिए कोई शुल्क निर्धारित किया गया है?
0: नहीं, ये कोई शुल्क इसके लिए निर्धारित नहीं किया गया है, प्रवेश निशुल्क है
1: जी। और हमारे श्रोता पहुंच सकते हैं जो भी संस्कृति प्रेमी,
0: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जो भी आना चाहे आ सकता है, स्वागत सबका है। हम भी चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें इस प्रस्तुति को
1: जी, बिल्कुल,
0: आप उनको याद करें, उनको समर्पित करें अपनी श्रद्धांजलि।
1: बिल्कुल, तो आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं पूरे आकाशवाणी की टीम की ओर से। एक बार समय और स्थान हमारे श्रोताओं को फिर से बता दें।
0: समय है 6 जुलाई सोमवार सायं 6:30 बजे राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह कैसरबाग लखनऊ, आपकी गरिमा में उपस्थिति की हम हार्दिक अपेक्षा करते हैं।
1: जरूर हम सभी भी आएंगे, और इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमसे जुड़ने के लिए, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी।
0: बहुत थैंक यू मैम,
2: बहुत
0: आप सबको भी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं
2: जी सर, बहुत बहुत
0: क्योंकि वो हमारे नहीं, आप सभी के थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, योगेश जी को हम नमन करते हैं, और हमेशा उन्हें हम यादों में अपने जिंदा रखेंगे, और ये कार्यक्रम यकीनन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है।
0: और ये भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आगे भी इनको लेकर के कई कृतियां हमारे पास हैं महफूज, उनकी चीजें तो आगे भी करते रहेंगे, और समय समय पे आपको जोड़ करके उनको याद करते रहेंगे।
1: जी जी जी, धन्यवाद, धन्यवाद दीपक जी,
0: नमस्कार नमस्कार।
2: दोस्तों हमारे साथ है श्री दीपक मिश्रा, सार्थक सचिव सोपान लखनऊ,
1: और वो जानकारी दे रहे थे कथक नृत्य नाटिका अंजुमन अवध की, जो होने वाली है 6 जुलाई को शाम 6 बजे से राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह,
2: शाम 6:30 बजे से राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह कैसरबाग लखनऊ में। तो आपकी भी उपस्थिति बहुत इस प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाएगी, तो जरूर इसमें आइए और अपनी उपस्थिति से इस प्रोग्राम को सफल बनाइए।

0: 8:57 मिनट का वक्त हो गया है, बस 2-2.5 मिनट बाद हम आप तक पहुंचाने वाले हैं समाचार पत्रों की सुर्खियां, लेकिन इस 2.5 मिनट में मुझे लगता है कि देखिए कोई बात नहीं देखिए हमारे स्टूडियो में बहुत कुछ होता रहता है
1: दुर्घटना घटित हो गई
0: मतलब क्या बोलना चाहते हो, हमारे लिसनर्स पैनिक हो जाएंगे कि कैसी क्या दुर्घटना हो गई
1: है, उसको रहने दीजिए, नहीं ओपन नहीं करेंगे
0: बिल्कुल वो हमारे स्टूडियो के अंदर ही रहेगा,
1: वो सीक्रेट है
0: जी। फिलहाल इस 2 मिनट में देखिए आधा सेकंड तो आधा मिनट हमारा बीत गया है 2 मिनट के अंदर अंदर हम कुछ ईमेल्स शामिल कर लेते हैं जो हमारे लिसनर्स लगातार हमें भेज रहे हैं। शुरुआत हुई थी, मोनू जी ने हमारा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कहते हैं कि बारिश का इंतजार है क्योंकि धान की खेती लगनी अभी बाकी है। बिल्कुल हमें मालूम है, अच्छे वाले चावल हमारे खेतों के जरिए हमारी थाली तक पहुंचेंगे, हमारे किसानों की मेहनत के जरिए, और मौसम विभाग से अभी हम थोड़ी देर में अपडेट लेकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे
1: जी। और रिंकी पिंकी कह रही है अंजू मैम जी को प्यार भरा नमस्कार, जगदीशपुर शिवगण दीवानों के शहर रायबरेली से मेल कर रही हैं, करें कैसे हैं आप लोग, हम लोग तो चकाचक हैं। अंजू मैम जी आपसे ये नाराज हैं क्योंकि 29 तारीख को आप हमारे घर नहीं आई थी।
0: अच्छा नहीं, 29 तारीख को हम किसी और के घर चले गए थे
1: कार्यक्रम बहुत अच्छा इनको लग रहा है और बारिश का मौसम भी बहुत अच्छा लगता है, मानसून के आने पर हम लोग सारी तैयारियां करके रखते हैं, ऐसा इनका कहना है।
0: बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए था ना कि कौन कौन सी तैयारी आप करती हैं तो और ज्यादा अच्छा लगता। खैर आप हमसे नाराज ना हो, आपकी नाराजगी सराखों पर हम आपको मना लेंगे और आपको भी प्यार भरा नमस्कार। सिद्धार्थ जी ने भी हमें मेल किया है, गोंडाने परिवार ने, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से हमें सुन रहे हैं, आपको सबको नमस्कार। आंचल जी ने भी गुड मॉर्निंग भेजा है और आकाशवाणी लखनऊ लाखों में एक लिखा है
1: जी। शैलेश कुमार के मेल से नीलू शर्मा बोलती हैं नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग रतन भैया, अंजू दीदी हम आपको सुनने में देर हो गई, सोच रहे थे हो सकता है आज अंजू दीदी आ जाए। अंजू दीदी हमारी एक दोस्त है सारा कौसर जी, उनको मेरा सलाम आदाब बोल दीजिए।
0: बिल्कुल आपको सबको सलाम आदाब और इसी के साथ अब हम ब्रेक लेते हैं और आते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों के बाद गुड मॉर्निंग लखनऊ के अगले घंटे में, तो सुनते रहिए हमारे साथ लगातार बने रहिए, स्टे ट्यून्ड 107 FM रेनबो जिसे आप कहते हैं धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, प्रातः के 9 बज चुके हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सर्ग कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के बयान को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने इस खबर पर शीर्षक दिया है, चढ़ावा चोरी पर संघ ने तोड़ी चुप्पी, कहा दोषियों को मिले कड़ी सजा। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, चढ़ावा चोरी से आस्था को चोट, कड़ी सजा मिले संघ। अमर उजाला ने इस खबर पर आरएसएस के बयान के साथ ही मामले में चल रही जांच को मुख्य खबर बनाते हुए लिखा है, लेनदेन में मिली खामियां, अयोध्या छोड़ गए गोपाल, चोरी की रकम से खरीदी कार बरामद। हिंदुस्तान लिखता है, एसआईटी ने बढ़ाया दायरा, ट्रस्ट की स्थापना से लेकर अब तक आय चंदे की जांच करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कल प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के नवीन परिसर का लोकार्पण किया। इस दौरान दिए गए उनके संबोधन को दैनिक जागरण ने सुर्खी बनाते हुए लिखा है, नीतिगत पंगुता के दौर से बाहर निकली उत्तर प्रदेश की नौकरशाही। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की खबर को पहले पन्ने पर छापते हुए लिखा है, यूपी में एकीकृत ट्रॉमा नेटवर्क बनेगा योगी। स्वतंत्र भारत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों हुए आम महोत्सव के उद्घाटन की खबर को सचित्र छापते हुए लिखा, आधा किलो का आम देख मुस्कुराए योगी, किसानों को किया सम्मानित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC की बैठक में 52,000 करोड़ के रक्षा सौदे स्वीकृत। हिंदुस्तान ने इस खबर पर शीर्षक दिया है, ड्रोन टैंक रोधी मिसाइल की खरीद को मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, जल थल व नभ में बढ़ेगी सशस्त्र बलों की ताकत, मिलेंगे ड्रोन और मिसाइल सिस्टम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। अमर उजाला ने इस खबर पर शीर्षक दिया है, भाजपा अध्यक्ष आज से यूपी दौरे पर, चुनाव रणनीति पर मंथन। बीच सड़क चलते हुए ई रिक्शे को ऐप से बंद करने की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने 7 ऐप को ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये खबर भी आज कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, बीच सड़क ई रिक्शे बंद करने वाले 7 ऐप पर ब्रेक, केंद्र बोला किसी ऐप का गलत इस्तेमाल तो ब्लॉक करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

और अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश तथा पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया के मध्य परिवार नियोजन, डायरिया से शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को सुदृढ़ करने हेतु त्रिवर्षीय गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन MOU पर शुक्रवार को औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन पर मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश डॉ पिंकी जोवल, महानिदेशक परिवार कल्याण तथा PSI इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकेश कुमार शर्मा द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर महाप्रबंधक फैमिली प्लानिंग डॉ सूर्यांशु ओझा एवं PSI इंडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस साझेदारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश को परिवार नियोजन सेवाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम और डायरिया नियंत्रण व रोकथाम को मजबूत बनाने के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और फ्रंटलाइन वर्कर का क्षमता संवर्धन, परिवार नियोजन सामग्रियों की उपलब्धता में सुधार आदि में सहयोग शामिल है। ये सहयोग गुणवत्तापूर्ण संस्थागत प्रसव, परिवार नियोजन सेवाओं तथा तक पहुंच बढ़ाने तथा राज्य की महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा डायरिया से होने वाली शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाने में मददगार साबित होगा। सूचना समाप्त हुई।

0: नाश्ता शो। वेलकम बैक फ्रेंड्स,
1: 9:05 का समय, साथ में 27-28-29 सेकंड प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकंड हाफ पर मैं रतन और मेरे साथ अंजू, हम दोनों आप सभी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और पिछले घंटे में आपने हमारा बहुत साथ दिया, भरपूर साथ दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी घंटे भी आप हमारा इसी तरह साथ देंगे, यही हम पूरी उम्मीद आपसे लगाए हुए हैं।
0: बिल्कुल, और आज का मुद्दा हम दोहरा देते हैं जिस पर लगातार आपके विचार हम तक पहुंच रहे हैं, fmakashwanilakhnau@gmail.com पर। इतने सारे ईमेल्स आ गए हैं कि क्या ही बताएं, अभी थोड़ी देर में जल्दी जल्दी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले गाना और उसके पहले मुद्दे को दोहराना।
1: जी हाँ दोस्तों, चूंकि बारिश का मौसम प्रारंभ हो चुका है, मानसून आ चुका है, और इसलिए आज का जो मुद्दा बहुत छोटा सा कि इस मानसून में यानी कि बारिश के इस मौसम में आपकी तैयारी किस तरह की है, आप हमें बताइए। हमारी मेल आईडी fmakashwanilakhnau@gmail.com, इस मेल आईडी के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आज के मुद्दे पर अपने विचार हम तक पहुँचा सकते हैं।
0: बिल्कुल, बारिश के मौसम का आनंद लेना है लेकिन पूरी तैयारी के साथ, सुरक्षा और सावधानी के साथ, और बढ़िया बढ़िया गानों के साथ।

0: आज की जो ट्रैफिक अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी हाँ दोस्तों, और ऐसी आज की डेट की तरोताजा ट्रैफिक अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह सर। चलिए करते हैं उनका स्वागत। गुड मॉर्निंग लखनऊ पर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।
0: गुड मॉर्निंग सर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज लखनऊ शहर में वर्तमान में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है, कहीं अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है। आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिस कार्यक्रम के चलते जो है हमारा लखनऊ कानपुर मार्ग लगभग जो है यातायात से डायवर्जन के रूप में रहेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा लखनऊ कानपुर मार्ग हमारा थोड़ा ट्रैफिक के लिए थोड़ा प्रेशर में रहेगा। तो हमारा जो मार्ग है ये अमौसी एयरपोर्ट से लेकर के जो भाजपा कार्यालय है वहां तक का जो है यातायात जो है लगभग 11 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक लगभग 2 घंटे का रुक रुक करके थोड़ा सा ट्रैफिक चलेगा। इस दौरान अगर आप जो है अगर अमौसी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं या आप जैसे नादरगंज हो गया, स्कूटर इंडिया हो गया, दरोगा खेड़ा हो गया, और आप बारा बिरुवा से, तो इधर से आप जो है बारा बिरुवा से हैं तो आप सही पथ का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर स्कूटर इंडिया नादरगंज दरोगा खेड़ा की तरफ है तो किसान पथ का प्रयोग कर आप गंतव्य को जा सकते हैं। आप जो है कोशिश करें कि यदि अति आवश्यक ना हो तो इस बीच जो है लखनऊ कानपुर मार्ग यूज करने से बचें ताकि आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। वैसे फिलहाल जैसे ये मूवमेंट होगा तो मूवमेंट के दौरान पीछे के जो चौराहे रहेंगे वहां से हम यातायात को चालू कराते रहेंगे, परंतु यदि जो है इससे ज्यादा उचित ये रहता है कि अगर अति आवश्यक ना हो तो इस मार्ग का प्रयोग करने से बचे तो आपको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती है इस दौरान तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9454-5155 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाम के समय में लगभग 2 बजे से 3-4-5 बजे तक हमारा जो विधान भवन के पास में थोड़ा सा यातायात का डायवर्जन रहेगा, रॉयल होटल से कोई भी यातायात भाजपा कार्यालय और अपना अटल चौक की तरफ नहीं जा सकेगा। इस दौरान जो है हम यातायात को सिकंडी तिराहा से होते हुए DSO हो करके भेजेंगे, तो आप सभी से यही अनुरोध है कि दिए गए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें, अति आवश्यक न हो तो उक्त मार्ग के प्रयोग से बचे, सुरक्षित रहे और इंजॉय के साथ सुनते रहे 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
0: क्या बात है, बहुत
1: शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका।
0: तो दोस्तों हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ थे दोस्तों विकास सिंह सर, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर, और आपको जो जो जानकारी दी गई है उसका ख्याल रखिएगा। अगर कहीं बहुत ज़रूरी जगह पर जाना है तो वक्त से थोड़ा सा पहले एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिए, है ना रतन?
1: और कोशिश कीजिए कि जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या जाम का क्षेत्र बना हुआ है तो आप वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें ताकि आप आसानी से अपने गंतव्य तक पहुँच सकें।
0: और अगर थोड़ी देर इंतज़ार करना भी पड़ रहा है ना तो बेवजह हॉर्न मत बजाइए, क्योंकि हॉर्न बजाने से आप सामने वाला उड़कर नहीं बाहर आगे निकल जाएगा, अक्सर बहुत इरिटेटिंग होता है, और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए हर जगह, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल देखिए गाने तो हम सुनाते रहेंगे, बैठे बैठे अपने मन को थोड़ा प्रफुल्लित करते रहिए, मटकाते रहिए, है ना, खुश रहिए, बस हमेशा खुश रहिए।

भाई जब बारिश होगी तो मोर तो बोलेंगे ही और नाचेंगे भी, है ना, मगन होकर आप भी बरसात का आनंद लेंगे. लेकिन फिलहाल लखनऊ शहर में सड़कों पर क्या हलचल है इसकी जानकारी आप तक पहुंचानी है जरूरी. अगर घर से निकल रहे हैं या कार स्टार्ट कर दी है या बाइक पे बैठने वाले हैं, तो जो जा रहे हैं आपके घर से निकल रहे हैं उनको जरा सा अलर्ट कर दीजिए.

0: भाई यूपी का तो ठुमका बहुत फेमस है है ना, दिखाइए दिखाइए, देखिए जरूर, ठुमका मारिए लेकिन थोड़ा संभाल के कमर लचक ना जाए। और यूपी का आम भी बहुत फेमस है। आम से याद आया रतन कि आम महोत्सव चल रहा है।
1: हमें भी आम बहुत पसंद है।
0: हाँ, हमें भी पसंद है। आम से बनने वाली बहुत सारी चीजें, खासतौर पर अचार बहुत।
1: लखनऊ आम आपने खाया?
0: अरे सब हर तरह के आम चखे हैं। और जानते हैं जिन लोगों को वैरायटीज देखनी है या आम से बनने वाली और बहुत सारी डिशेज देखनी है, उनको हम अपडेट दे देते हैं कि आम महोत्सव चल रहा है 3-5 जुलाई इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। जरूर जाइए, सैटरडे संडे वीकेंड का आनंद जरूर लीजिए, पूरी फैमिली के साथ जाइए और सब कुछ ट्राई कीजिएगा।
1: जी हाँ दोस्तों, आधा किलो का आम भी आया जिसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने देखकर मुस्कुराया था, वो आम भी आप जाकर देख सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं और लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। और भी बहुत तरह तरह के आम वहाँ पे आए। तोता परी काम आता है,
0: बहुत सारे आते हैं। अभी लिस्ट अगर निकालने बैठोगे ना तो ये जो सामने लिस्ट दिख रही ना वो छूट जाए।
1: लेकिन दशहरी आम की अगर बात करें,
0: मैंने क्या बोला रतन कि लिस्ट पे, आम की लिस्ट पे मत जाओ वरना सुबह से शाम हो जाएगी।
1: अब आम की बात होगी तो हमें आम ही याद आ रहे, क्या करें बताइए।
0: नहीं नहीं, अब आप इधर, हम आपकी गर्दन घुमा देते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर की तरफ देखिए, इतने सारे ईमेल्स आए हमारे श्रोताओं के,
1: बहुत सारे ईमेल्स आ गए,
0: पहले उनको पढ़ें।
1: बिल्कुल। और हमारे पास जो अगली मेल आई है वो आई है पिंकी बारी जी की, और इन्होंने प्रोग्राम की बहुत तारीफ की है। अंजू जी आपकी तारीफ करी है, कह रही चार चांद लगा दिए, हमें मिस कर रही थी, हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक सुना तो इनको पता चल गया हम आ गए, इसलिए इनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुद्दे पर ये लिख रही है कि मैं वो बातें आपको, सिंपल बातें बताऊंगी जो मैं अपने आपके लिए सोच के रखती हूँ और वो मैं करती हूँ अलर्ट रहने के लिए। और ये करती क्या है कि बारिश के मौसम में घर का राशन होता है, पीने का पानी होता है, साग सब्जियाँ, 5-6 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं करती हैं ये। उसके बाद हमेशा अपने पास टॉर्च, पावर बैंक, ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनको हमेशा चार्ज करके रखती हैं ताकि जब लाइट जाए बारिश होने पर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छी ग्रिप वाली ये चप्पलें पहनती हैं ताकि फिसलने ना पाए।
0: मोस्ट इम्पॉर्टेंट
1: जी। कफ सिरप और जरूरी सप्लीमेंट साथ में भी ये रखती हैं, ऐसा इन्होंने कहा है कि आप लोग भी किया करें। और घर में हमेशा 2-3 दिन में लौंग और कपूर का धुआं करें, इससे फ्रेशनेस भी रहती है और इन्फेक्शन भी बचा जा सकता है, उससे भी बचा जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे आज हमें बताई और वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं।

0: और आगे अंत में छोटे बच्चों के लिए भी कुछ
1: छोटे बच्चों को फुल कपड़े पहनने पहनाए कॉटन के, ताकि उनको गर्मी भी ना लगे और वो मच्छरों के काटने से बचे रहें।
0: बिल्कुल, और उनका स्पेशली बहुत ध्यान रखें जब बारिश हो रही हो कि वो बाहर ना जाने पाए, बालकनी में ना जाने पाए, है ना, कहीं भीगे ना, कहीं खेलते खेलते गिर ना जाए फिसल कर। तो बहुत सारी ऐसी बातें पिंकी जी आपने लिख दी जो हम, मुझे लगता है कि उसका फायदा बहुत सारे और भी लिसनर्स को होगा, खासतौर पर वो लॉन्ग और कपूर वाली जो
1: बातें आम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: बिल्कुल, यहाँ पर भी आम आ ही गया रतन के मुंह से। देखिए अब आम नहीं, अब हम खास बातें ही करेंगे। वैसे जो पिंकी जी ने बात कही पावर बैंक और चार्ज टॉर्च की, तो उससे मुझे भी याद आता है कि अक्सर बिजली बाधित होती है बारिश के मौसम में, तो इसलिए घर में हमेशा आप मोबाइल फोन वगैरह चार्ज करके रखिए अगर इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है तो, और अगर है तो इन्वर्टर को भी चेक करवा के रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपडेटेड नहीं है, पानी वानी कम है, या जो भी बैटरी में प्रॉब्लम आ जाती है अचानक तो इन्वर्टर जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। और जब लाइट जाए तो एक्स्ट्रा लाइट्स को बंद करके रखे, वैसे वो हमेशा करना चाहिए आपको। घर में चार्ज की हुई टॉर्च भी होनी चाहिए, है ना, बैटरी वाली टॉर्च तो बहुत कम मिलती है आजकल, बहुत कम घरों में दिखाई पड़ती है। इमरजेंसी लाइट हो, पावर बैंक हो, या मतलब कुल मिलाकर इमरजेंसी में काम आने वाले सभी सामान आपके परिवार में,
1: इक्विपमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए।
0: और परिवार के सभी आवश्यक संपर्क नंबर भी होने चाहिए, ऐसा ना हो कि फोन डिस्चार्ज हो जाए और सारे नंबर उसी में। एक छोटी सी नोटबुक जरूर रखिए जिसमें जो इमरजेंसी में जो काम आने वाले नंबर हैं वो जरूर लिखकर
1: होने चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। रोशनी रावत जी की भी मेल हम तक पहुंची है, प्रोग्राम इन्हें अच्छा लग रहा है, बमाना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से इन्होंने मेल किया है और कह रही है बारिश का इंतजार है, बस मेरी कोई तैयारी नहीं है।
0: ये लास्ट मोमेंट वाले हैं, चले कोई बात नहीं। कुलदीप गुप्ता जी ने भी प्रोग्राम की तारीफ की, सुप्रभात भेजा, बहुत अच्छे अच्छे विचार लिखे हैं, लेकिन इस मेल में मुद्दे पर कुछ नहीं है। उधौली बाराबंकी से, माफ कीजिएगा, उधौली, हाँ बाराबंकी से ही आपका मेल है। अच्छा, और इसके अलावा राजेश कुमार विद्यार्थी जी ने क्या लिखा है पता है, इनका मेल काफी पहले आया था और इन्होंने एक फोटो भेजी है, उसमें ओम प्रकाश उजाला जी हैं, ये लोग साथ में सुन रहे हैं इस समय प्रोग्राम हमारा, ये बुद्धेश्वर से सुन रहे हैं और इन्होंने शायद राजेश को फोटो भेजी होगी, राजेश जी ने हमें भेज दिए, हमको चाय भेज रहे हैं, चाय का कप दिखा रहे हैं दूर से, भेज गा रहे हैं,
1: चाय है भी इसमें या नहीं है
0: पता नहीं, कब दिख रहा है खाली। और इन्होंने भी आम महोत्सव की जानकारी दी है और बोला है सभी श्रोता जाकर जरूर देखें, तो लखनऊ के श्रोता जरूर पहुंच सकते हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में।
1: जी अगली मेल हमारे पास आई है राममोहन गुप्ता साहब की और ये कुछ पंक्तियां इन्होंने बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी हमें लिखकर भेजी है। बारिश का मौसम आने की खुशी तभी खुशी होती सभी को मिलती, रहा तपिश से रिमझिम फुहारे पड़े ज्यों, कृषकों के चेहरे खिल जाते, मुफ्त तराई हो जाती, तपती धरती की प्यास बुझती, तरुणाई आ जाती, मौसम बारिश का यही संग कई दुश्वारियां लाता, बाढ़ बिजली गिरना बादल का फटना है सताता, यही नहीं मौसमी बीमारियां भी पैर पसार लेती हैं, हुई चूक जरा सी झट अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, ऐसे में कई तैयारियों संग सावधानी बरतनी पड़ती, जल भराव मच्छरों बीमारियों से जंग लड़नी पड़ती, छाते रेनकोट साफ सफाई संग चौकसी आते काम, आकाशी बिजली करंट से बचाव होते जरूरी काम, सबसे बड़ी बात लापरवाही से पूरी तरह से बचकर रह सकते सुखी स्वस्थ मस्त सावधानियां बरत कर। क्या बात है राम मोहन गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमर लखीमपुर खीरी राम मोहन गुप्ता जी, आप ये शॉर्ट में अपना नाम लिखते हैं और बहुत अच्छी पंक्ति आपने भेजी, इसके लिए शुक्रिया।
0: और मुझे लगता है सब कुछ ही लिख दिया है आपने, है ना। वैसे ओम प्रकाश का भी मेल आ ही गया है और इन्होंने लिखा है कि मॉनसून की तैयारी जबरदस्त है, जिस तरह आपका कार्यक्रम लाजवाब, वैसे छतरी ले ली है और रेनकोट भी। जी हाँ, पुरानी छतरी अक्सर खराब हो जाती है, तो खुल रही है ठीक से कि नहीं ये भी चेक कर लीजिए। फिलहाल एक छोटी सी तैयारी मैं बता देती हूँ, घर में अगर बारिश जब बहुत तेज आ जाएगी, अभी तो हम लोग सिर्फ तैयारियां ही कर रहे हैं और उसके आगमन का इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत तेज बारिश होगी ना तो मेक श्योर अदरक ना खत्म होने पाए, है ना, वरना चाय का मजा नहीं आएगा,
1: बेसन भी ना खत्म होने पाए, प्याज भी ना खत्म होने पाए, वरना पकौड़े कैसे बनेंगे।
0: बस करो, ठीक है, गाना आ रहा है, गाना सुनो।

0: जी नमस्कार, 29 मिनट का वक्त हो गया है और अब वो जरूरी अपडेट जिसका आप सबको है इंतजार।
1: जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश सर। चलिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।
2: जी गुड मॉर्निंग।
1: और आज लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों का मौसम कैसा होने वाला है प्लीज बताइए सर।
2: मौसम की बात करें तो मौसम थोड़ा साफ रहेगा, गर्मी की संभावना रहेगी, उमस वाली गर्मी रहेगा
1: जी।
2: तो हालांकि दोपहर में हल्के बादलों की आवाजाही रहेगा लेकिन गर्मी का सबब बना रहेगा और कल भी कुछ इसी तरीके से रहेगा लेकिन कल शाम से थोड़ा सा तब्दीली आने की संभावना है। तो कल शाम और परसों से फिर से थोड़ा बारिश का दौर शुरू होगा।
1: अच्छा। जी यानी कि आज और कल मिलाकर थोड़ी सी गर्मी का माहौल होने वाला है।
2: जी बिल्कुल
1: जी, बहुत बहुत
0: तो
1: शुक्रिया।
0: मानसून लखनऊ और आसपास कब फुल फॉर्म में आएगा सर, ये भी बता दीजिए।
1: सर मानसून कैसे सर, मतलब पूरी फुल फॉर्म में आने वाला कब तक?

0: देखिए मानसून से फुल फ्लेज आया था, लेकिन जैसे कि क्या होता है, जो मानसून कफ लाइन होता है वो सिर्फ ऑसिलेट करता है, ऊपर नीचे होता है, तभी एमपी के ऊपर चला गया है, तो वहां पर अच्छी बारिश हो रही है। अच्छा। बाकी कल शाम से या परसों से ये धीरे धीरे उत्तर की तरफ शिफ्ट होगा, अपने प्रदेश की तरफ आएगा, तब यहाँ पर फिर से एक जो बढ़ोतरी होगी बारिश की वो शुरुआत होगी।
1: जी अच्छा, बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए।
0: ओके, धन्यवाद।
1: दोस्तों दानिश सर ने तो बता दिया कि भैया अभी मौसम थोड़ा सा एक दो दिन गर्मी वाला रहने वाला, उसके बाद कुछ आशा है।
2: जी, तो हम लोग वैसे मॉनसून के आगमन और उसकी तैयारियों की बात करें, तैयारियां अपनी पूरी रखिए और आज के लिए चश्मा जरूर रखिएगा अपने साथ, छतरी और रेनकोट को अगर ना रह जाना चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: इतिहास के पन्नों में आज का दिन।
2: जी दोस्तों, बात कर लेते हैं इतिहास के पन्नों में। आज का दिन यानी 4 जुलाई की तारीख क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले तो अगर हम आज के तारीख की बात करें तो विश्व इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है ये तारीख, क्योंकि 1776 में आज ही के दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने यानी अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था, और यही कारण है कि आज अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है,
3: क्योंकि दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1902 में महान सन्यासी और युवा चेतना के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ में महासमाधि ली। इतिहास हमें यही सिखाता है कि इस महान व्यक्तित्व शरीर से भले ही विदा हो जाएं, लेकिन उनके विचार सदियों तक समाज का मार्गदर्शन

0: करते रहते हैं।
1: तो हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा पूर्वक उन्हें नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने विश्व मंच पर भारतीय संस्कृति और सनातन दर्शन का गौरव बढ़ाया। उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास, राष्ट्रप्रेम और सेवा की भावना जगाई और उनका अमर संदेश कि आप अपने आप पर विश्वास कीजिए, यही सफलता का पहला रहस्य है। तो बहुत श्रद्धापूर्वक हम उन्हें नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज की तारीख में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 1751 की। तो स्वीडिश रसायनज्ञ और खान विशेषज्ञ फेडरिक क्रोनस्टलर निकल का पता लगाने में पूरी तरह से ये सफल हुए थे आज के दिन, यानी कि 1751 में निकल जो मेटल होता है उसका पता लगाया गया था। और बात करते हैं 1886 की। तो न्यूयॉर्क ट्रिब्यूनल मुद्रण मशीन का उपयोग करने वाला पहला समाचार पत्र आज के दिन बना था।
1: जी, और आज जुलाई माह का पहला शनिवार है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं इतिहास के सेगमेंट में, क्योंकि आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इस दिवस की शुरुआत दोस्तों 1923 में हुई थी, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने की थी। बाद में वर्ष 1995 में जब ICA ने अपनी शताब्दी मनाई, तब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जुलाई के फर्स्ट सैटरडे यानी प्रथम शनिवार को आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में मान्यता दी। और इसका उद्देश्य लोगों को ये संदेश देना होता है कि सहयोग, सहभागिता और सामूहिक प्रयास से ही समाज को अधिक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाया जाता है। भारत जैसे देश की अगर बात करें ना रतन, तो यहाँ पर सहकारी समितियों ने किसानों या हम जो दुग्ध उत्पादकों की बात कर लें, स्वयं सहायता समूहों की बात कर लें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, तो सबको एक नई ताकत दी है। और आज का ये जो संदेश है इस दिन पर, वो यही हमें सिखाता है कि मैं से हम तक का सफर ही विकास की असली पहचान है।
0: बिल्कुल सही बात है कि मैं से हम तक का सफर ही विकास की असली पहचान है। और वाकई में जब ये मैं छोड़कर हम बनेंगे तो वाकई में उन्नति हमें छू सकती है और हम उससे आगे बढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।
0: और बात करते हैं 1886 की। तो फ्रांस द्वारा अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की गई थी आज के दिन। जो इतनी बड़ी सी मूर्ति देखते हैं आप ना, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। और 1997 की बात करें तो नासा का पाथ फाइंडर मानव रहित अंतरिक्षयान मंगल ग्रह पर आज ही के दिन उतरा था। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आज के दिन को और भी ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट बनाती हैं इतिहास के पन्नों से, क्योंकि हर दिन का इतिहास अपने आप में बहुत ज्यादा खास होता है, इम्पोर्टेंट होता है।
1: बिल्कुल, तो चलिए एक बढ़िया सा गाना एंजॉय करते हैं, वापस आते हैं तो जो है बहुत सारी और अपडेट्स और आपके ईमेल्स आज के मुद्दे पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: हाँ कितना बढ़िया गा रहे हो रतन
1: सिखा दिया आपने
0: हमने सिखा दिया
1: आदत डलवा दी इन्होंने
0: भाई देखिए यही तो एक गाना है जो खुशी के साथ
1: रोज गाया जाता है
0: रोज गाया जाता है सब गाते हैं उसको सब मिलकर गाते हैं ताली बजा बजा कर गाते हैं तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल डियर लिसनर्स जिनका आज है जन्मदिन उनको बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी
1: और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां हमारी पूरी टीम की तरफ से एफएम रेनबो की टीम की तरफ से
0: बिल्कुल
1: तो दोस्तों आज आप अपने इस दिन को खूब सेलिब्रेट कीजिए पूरी तरह से और हमारे साथ जुड़कर और भी खुश हो जाइए क्योंकि हम आपको ये भी बताएंगे कि आज आप अपना जन्मदिन और भी ज्यादा खुशनुमा कैसे बना सकते हैं और वो बना सकते हैं ऐसे कि
0: कैसे?
1: किसी ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ किसी ऐसे सितारे के साथ आज आप अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं जिसका नाम सुनकर वाकई में आपको बहुत खुशी होने वाली है
0: जी ये जो गाना आप सुन रहे थे ना गुड बाय मूवी का इसमें बहुत ही प्यारी और खूबसूरत एक्टिंग की थी नीना गुप्ता जी ने और इसके अलावा हमने तो देखा है भाई टीवी की दुनिया से जब हम दूरदर्शन पे टीवी सीरियल्स देखा करते थे एक बहुत ही खूबसूरत वो दौर था उस जमाने से हम नीना गुप्ता जी को देखते आ रहे हैं और आज भैया वो इस उम्र में सबके लिए एक बहुत बड़ा
1: रोल
0: मॉडल बन चुकी है इतनी फिट रहती है और क्या जबरदस्त एक्टिंग करती है भाई
1: तो आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आज आप नीना गुप्ता जी के साथ अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं कैसा अनुभव हो रहा है आपको हमें बताइए
0: बिल्कुल बताइए क्योंकि भाई नीना गुप्ता जी को हम हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से और साथ ही साथ एक और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री है नाम पता है आपको
1: जी
0: बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं और अगर उनकी प्रतिभा की बात करने से पहले उनकी उनकी माँ की बात करें तो वो तो बहुत लोगों की फेवरेट रही अभिनेत्री माला सिन्हा जी
1: जी हाँ दोस्तों माला सिन्हा जी का भी आज
0: माला सिन्हा जी की बेटी
1: जी का आज बर्थडे है यानी कि प्रतिभा सिन्हा की हम बात कर रहे हैं और ये माला सिन्हा की बहुत ही प्यारी सी सुपुत्री रही हैं और अपने सहज अभिनय से हिंदी फिल्मों में अपनी अलग पहचान इन्होंने बनाई और इनके जन्मदिन पर हम इनके उत्तम स्वास्थ्य की सुखद और सफल जीवन की मनोकामना करते हैं
0: बिल्कुल बहुत छोटा सा इनका सफर रहा बॉलीवुड में लेकिन यादगार सफर रहा और अगर यादगार सफर की बात करें तो जो गाना आपके रेडियो सेट पर अब पहुंच रहा है तो इस गाने में आमिर खान और करिश्मा कपूर के साथ साथ वो नजर आई थी डांस करती हुई जो बंजारों का ग्रुप था ना उसमें प्रतिभा सिन्हा थी
1: क्या बात
0: डांस कर रही थी कल्पना अय्यर के साथ तो भाई हम प्रतिभा सिन्हा को भी हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और आप सबको भी डबल मुबारकबाद ढेर सारी मुबारकबाद और कुछ बाकी रहा
1: जी हाँ दोस्तों और भी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है जिनकी आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं अल्लूरी सीताराम राजू जी की जी हाँ दोस्तों एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर संघर्ष किया उनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 1897 को आंध्र प्रदेश में हुआ इन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व करते हुए गोरिल्ला युद्ध तकनीकों का उपयोग किया था और ब्रिटिशों ने 1924 में उन्हें पकड़कर वीरता से भरे हुए इस युवा क्रांतिकारी को मार डाला था वो आज भी साहस का प्रतीक हैं ऐसे महान क्रांतिकारी को हम नमन करते हैं उनकी जन्म जयंती पर
0: बिल्कुल उनकी अद्भुत वीरता को हम सल्यूट करते हैं और हमेशा ऐसे वीर सपूत भारत माता के कहते हैं ना कि अमर रहते हैं वो कभी इस दुनिया से नहीं जाते वो अपने जीवन चक्र से हमेशा हम सबको प्रेरित करते रहते हैं और इसके अतिरिक्त तो और भी कुछ महान नाम हैं उनका हम जिक्र

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप 100.7 FM रेनबो पर, और कुछ ऐसे नाम हैं जो आज के दिन से जुड़े हुए हैं, महान व्यक्तित्व, उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं।
3: जी दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा भारतीय प्रमुख भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी रहे। इनका जन्म भी आज के दिन यानी कि 1898 को पंजाब में हुआ था, और ये दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे 1964 और 1966 में, और इन्हें 1997 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।
2: जी,
3: और दोस्तों आज ही के दिन अगर बात करें तो भरत व्यास, जो कि हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार थे, इनका आज के दिन निधन हुआ था। इनकी आज पुण्यतिथि है, 4 जुलाई 1982 को इनका निधन हुआ, और इन्होंने कई ऐसे गीत गाए, गीत लिखे जो कि वाकई में बहुत फेमस हुए, जय संतोषी माँ, बूझ मेरे मन के दीप और ऐ मालिक बंदे तेरे हम, हाँ इस तरह के कालजयी गीत इनके द्वारा लिखे गए, और आज भी गीतों के माध्यम से इन्हें हम याद करते हैं।
2: जी, तो नमन करते हैं इन सभी महान शख्सियतों को। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स हैं। रतन, अरुण कुमार जी का मेल आया है आज के मुद्दे पर, बारिश के मौसम में होने वाली समस्याएं और जो सावधानियां, जो तैयारियां इनकी तरफ से होती हैं, वो ये लिखते हैं कि साफ और उबला हुआ पानी पीना, मच्छरों से बचाव करना के उपाय करना, घर से निकलते समय छाता या रेनकोट साथ रखना, स्वच्छ और ताज़ा भोजन का सेवन करना, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो इन सभी सावधानियों के साथ बारिश के फुहारों, मिट्टी की खुशबू और हरियाली का आनंद लें, मौसम और खूबसूरत बन जाता है। थैंक यू सो मच। और इन्होंने हमारे प्रोग्राम और प्लेलिस्ट की तारीफ की है।
3: क्या बात, रतन सिंह जी की मेल आई है और रतन ही इसको पढ़ने वाले हैं। अंजू जी और रतन जी को ये नमस्ते बोल रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कार्यक्रम ये मैनपुरी जिले से ही सुन रहे हैं और इन्हें गाने अच्छे लग रहे हैं, साथ में इनको आवाजें अच्छी लग रही हैं और रेनबो के सभी प्रोग्राम इन्हें पसंद आते हैं।
2: जी, और अरुण कुमार जी के विषय में बता दें कि इनके साथ अंजलि, अक्षता, आराध्या सुन रही है, प्रेमगंज बांगरमऊ उन्नाव से के रहने वाले हैं, जानकीपुरम लखनऊ में हमें ये पूरा परिवार सुन रहा है प्रोग्राम को, बहुत बहुत

0: शुक्रिया प्रमुख कुमार जी। लिखते हैं, मॉनसून से पहले हम अपने घर की छत, नालियों, जल निकासी की व्यवस्था की जांच कर लेते हैं ताकि पानी कहीं जमा न हो। बिजली के खुले तारों और कमजोर पेड़ों से सावधानी बरतनी चाहिए। सभी को पीने के लिए स्वच्छ पानी का उपयोग करें, भोजन को ढककर रखें। बरसात में मच्छरों और संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने
1: जी। जावेद पटेल साहब की मेल आई है, गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं सोलापुर महाराष्ट्र से, थैंक यू सो मच। मोहम्मद आसिफ की भी मेल हम तक पहुंची है, तेलंगाना से। दीदी आपको ये सुन रहे हैं और कह रहे हैं प्रोग्राम करने का अंदाज लाजवाब लग रहा है, थैंक यू सो मच।
0: अच्छा सोनू जी ने कहा कि बारिश और हमारी तैयारी वैसे चाहे जितनी कर लो कहीं ना कहीं चीजें फीकी पड़ जाती हैं। जैसे अपने आसपास स्वच्छता बना ली है इन्होंने, घर के भी कुछ कार्य बारिश से बचाव के लिए कर लिए हैं, बस खेती के लिए तैयारी है, बारिश का इंतजार है। बिल्कुल हम पूरी उम्मीद करेंगे कि हमारे किसानों के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे और बारिश जैसी उन्हें उम्मीद है वैसी हो।
1: गुलफ्सा सिद्दीकी और मोइनुद्दीन अंसारी ने हमें गुड मॉर्निंग भेजा है, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वारिस अली साहब जो है हमें मेल लिख रहे हैं और कह रहे हैं लोगों को बारिश का मौसम रोमांटिक लगता होगा, यहाँ तो घर में उड़ने वाले कीड़े परेशान करते हैं। मुद्दे पर ही लिखते हैं कि बरसात के मौसम में सबसे पहले हमारे यहाँ छतों और नालियों में साफ सफाई होती है ताकि छत पर पानी ना इकट्ठा हो सके। वायरिंग की भी चेक कराता हूँ, रेनकोट और छाते का भी इंतजाम कर लेता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, फर्स्ट एड बॉक्स का भी इंतजाम होना चाहिए, जिससे फीवर, पेट दर्द और एंटीबायोटिक मेडिसिन होनी चाहिए जिसमें। और GML इन्हें बहुत पसंद आ रहा है, नगमे इन्हें पसंद आ रहे हैं सुबह 7 बजे से ही, थैंक यू सो मच।
0: बिल्कुल, एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा नहीं लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल, ये बहुत
0: अच्छा।
1: मुनेश
0: कुमार राज जी ने कहा है कि आज के छोटे मोटे मुद्दे पर बड़ी बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, क्या लिखते हैं भाई? बारिश का तो हम सभी लोग हर वर्ष इंतजार करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश के पानी का संरक्षण या जल निकासी किस ढंग से करें? भाई देखिए, इसीलिए तो ये मुद्दा हम लेकर आए हैं और इसीलिए हम जानना चाहते हैं आपका, आपकी बात। और ये बात हम आगे तो अपना जो मुद्दा वाइंड अप करते हैं, तो जो हम अपनी तरफ से कहते हैं तो कहते हैं, आपने ये जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम इसकी तरफ सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि बारिश से बचने के लिए जो परेशानियां हैं उनसे बचने के लिए तैयारी करें, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी आप तैयारी करें। बारिश के जल को, वर्षा के जल को संचित करें, संरक्षित करें, और जो धरती के नीचे का जल है, भूजल स्तर है, उसको बढ़ाने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो करें। तो आपने बहुत अच्छी बात
1: की। तेज बहादुर यादव जी की भी मेल हम तक पहुंची है, मानसुख दस्तक देख चुका है, अपने साथ बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी अपने साथ लाता है। हम अपने घर के आसपास साफ सफाई का बहुत ध्यान देना चाहिए हमें, कचरा कूड़ा इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। छत, अपनी छत पर जो पनारा लगे हैं उसमें कभी भी कूड़ा कचरा नहीं भरने देना चाहिए और छत पर साफ सफाई रखनी चाहिए, जल भराव नहीं होने देना चाहिए। रतन सर जी, मुझे सुबह से ही एक बात पूछी थी कि मैं गुरुग्राम हरियाणा में क्या काम करता हूं, तो सर जी मैं पिछले सप्ताह से अंजू दीदी को बताया था कि आपको भी बता देता हूं, यहां पर मेरी छोटी सी टी स्टॉल है और उसमें ये अपना बढ़िया खाने पाने की जो चीज़ें हैं वो रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद
0: जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। और कृष्णकांत जी का कैसरगंज बहराइच से मेल आया है, मॉनसून के आगमन पर गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम में आज धमाकेदार गाने प्ले हो रहे हैं। भाई प्ले लिस्ट में तो बहुत सारे बारिश के गाने भी थे लेकिन चेंज करने पड़े, क्या बताएं, धूप निकली हुई है बाहर। अच्छा, इन्होंने धन्यवाद कहा हमें। और आगे लिखते हैं, मॉनसून की तैयारी 15 जून से ही हो रही है, घर की छतों की साफ सुथरा किया गया है और सभी बरसात के पानी के निकास वाले पाइप नालियों की भी सफाई कर ली गई ताकि जल भराव की समस्या ना हो और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इंतजाम किया गया है। बहुत बढ़िया, देखते हैं कि मॉनसून में के मौसम में चाय पकौड़े का अलग ही आनंद है, इसलिए फुल तैयारी के साथ मॉनसून का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ब्रजेश सिंह जी की भी मेल हम तक पहुंची है, केसरगंज बहराइच से, और कह रहे हैं बारिश के मौसम में लाइट का सहारा कम लेते हैं, सौर ऊर्जा लगा रखे हैं, बैटरी उससे चार्ज होती है और लाइट आए चाहे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बरसात का इंतजार बेसब्री से कर रहा हूं क्योंकि हमारी सबकी फसल पिछड़ रही है।
0: बिल्कुल धान रोपने की का समय आ गया है। और सुनील प्रांजल जी विकास नगर लखनऊ से ये हमें लिख रहे हैं, मॉनसून की तैयारी शहरों में करने की कोई आवश्यकता नहीं है, शहरों में लोग फ्लैट में रहते हैं, उनकी अपनी छत भी नहीं है, छत साफ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, स्वयं के आने जाने के लिए रेनकोट और एक छाता रखने की आवश्यकता है। तैयारी मॉनसून की गाँव में होती है, खेत में काम करने होते हैं, घर के काम करने होते हैं, छत की साफ सफाई मरम्मत करनी होती है, किस खेत में क्या बोया जाना है, कहाँ से बीज आएगा, ये सारी चीजें इन्होंने। लेकिन मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी रतन यहाँ पर, कि अगर तेज बारिश शुरू हो जाए तो शहरों में भी जो जनजीवन है ना वो अस्त व्यस्त हो जाता है। आप अपने फ्लैट में ही तो नहीं बंद रहेंगे, घर से बाहर निकलना ही है जरूरी कामों के लिए। कई बार जल भराव होता है, खास तौर पर जो रास्ते अननोन होते हैं वहां से निकलना नहीं, कहीं पे कोई गड्ढा है अगर तो दुर्घटना हो सकती है, वो आपको जल भराव की वजह से दिखेगा नहीं। कई बार मेन होल्स लोग पानी निकलने के लिए हल्का सा उसमें ढक्कन हटा देते हैं, उससे वो भी दुर्घटना का कारण बनता है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नगर निगम, स्थानीय निकाय, पार्षद, इनसे मदद मांग सकते हैं, उनके नंबर्स आपके पास होने

0: चाहिए और सब एक्टिवली काम करते हैं।
1: और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि आप अगर सारी चीजें गवर्नमेंट पे ही डाल देंगे तो शायद चीजें पूरी नहीं हो सकती, इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझनी भी बहुत जरूरी है। तो आप अपने स्तर पे भी जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। निधि चौरसिया कह रही है कि हमने अपने मैक्सिमम स्तर पे कर लिया है, मानसून की तैयारी पहले से मैंने कर रखी, वो कर ये रखी है कि अपने हस्बैंड के बैग में मैंने रेनकोट रख दिया है।
0: वाह, ये बहुत बढ़िया वाला काम किया है आपने। अच्छा, रॉयल अमित यादव ने लिखा है श्रेया यदुवंशी हैं और इन्होंने आज के मुद्दे पर तो मतलब प्रोग्राम की तारीफ की है और गानों की तारीफ की है, गंगागंज रोड।

0: रख दिया है।
1: वाह, ये बहुत बढ़िया वाला काम किया है आपने। अच्छा, रॉयल अमित यादव ने लिखा है, श्रेया यदुवंशी हैं और इन्होंने आज के मुद्दे पर तो मतलब प्रोग्राम की तारीफ की है और गानों की तारीफ की है। गंगागंज रोड भानमऊ विलेज नकटुआ से लिखा है और मुद्दे पर कोई बात नहीं कही है।
0: सोनांजलि सिमरन सोनांजलि भी लिख रही है कि घर की सभी वायरिंग और स्विच बोर्ड चेक कर लेते हैं, खुले तारों को अच्छी तरह से टेप कर देते हैं, अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा होने नहीं देते ताकि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे मच्छर ना पनप सके। ज्यादातर तला भुना या खुला खाना खाने से बचते और अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे और हम बीमारियों से बचे रहें।
1: जगमोहन मिश्रा जी ने मॉनसून पर अलनीनो की मार पड़ने वाली है, इसलिए जितना भी हो सके बरसात के पानी को इकट्ठा करिए, बचाइए। सोसाइटी में, पार्कों में, खेतों में शॉकिंग पिट्स बनवाइए और इससे अंडर वाटर लेवल को मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रवीण जी कह रहे हैं कि घर से निकलना नहीं होता लेकिन निकलना है तो पड़ेगा तो छाता है हमारे पास।
1: और देखिए, चाहे गांव के लोग हों चाहे शहर के, मॉनसून के साथ साथ देखिए वन महोत्सव चल ही रहा है, वन महोत्सव सप्ताह। एक बात और है, पेड़ लगाने के लिए बहुत शानदार मौसम है। आम, जामुन, ये जितने भी फल आप खाते हैं ना, तो इधर उधर ना फेंकिए, उनको लेकर रखिए, इकट्ठा करिए और जब आप जाएं तो उचित स्थानों, तालाब हो, सड़कों के किनारे जहां पर पेड़ पनप सके, ऐसी जगहें खाली मिले तो वहां डालिए।
0: ऐसी कच्ची जगहों पर आप इन गुठलियों को डाल सकते हैं
1: और इसके साथ साथ वृक्षारोपण करिए, खूब करिए इस मौसम में।
0: बिल्कुल करिए और ताकि ये जो
1: हरियाली बनी रहे और पर्यावरण बचे, तभी हम अपनी परेशानियों से निजात पाएंगे। और सुधांशु जी ने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही है, अशोक वर्मा जी, जावेद अख्तर जी का भी मेल आया।
0: सारी बातों के बीच में अंजू एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब लौटेंगे अच्छा। तो कुछ और मेल्स भी हम जरूर लेंगे, तो एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं।
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: भाई 9:57 का वक्त हो गया और हमारे पास मुझे लगता है रतन अब वक्त नहीं है। मोनू जी ने भी बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं, प्रोग्राम की तारीफ आप सबने लिखकर भेजी है। अरुण कुमार कुशवाहा जी का घमोइया हरदोई से भी मेल आया है, इन्होंने देर से हमें मेल किया, लेकिन भाई देखिए कुल मिलाकर आप सब इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और अपनी तैयारियां कर रहे हैं मानसून के आने की और उसे इंजॉय करने की। लेकिन हम बस इतना कहेंगे कि कहीं पर भी आप रहें, सुरक्षित रहें और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बच्चों का ध्यान रखें, कीड़े मकौड़े, और खासतौर पर एक बात, जब हेलमेट वगैरह लगाएं या शूज पहने जो बाहर आपके रहते हैं पोर्च में या लॉन में, वो जरूर झाड़ वाड़ के और कपड़े भी झाड़ के, है ना, समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूं।
0: बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि जूतों में अक्सर कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े या सांप बिच्छू आ जाते हैं बैठ के बारिश के मौसम में, कि हम बिना देखे जल्दबाजी में उन्हें पहन लेते हैं,
1: हेलमेट में
0: बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो प्लीज ऐसा ना करें, हर चीज चेक करके पहने और सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है चाहे कोई भी मौसम हो, इसलिए बारिश के मौसम में सावधानी के साथ अपने इस मौसम को एंजॉय कीजिए। और 9:58 का समय हो चुका है, ये समय इशारा कर रहा है कि बस हमें गुड मॉर्निंग लखनऊ से अब यहाँ से जाना होगा। अगले कुछ घंटे आपके साथ रहने वाली हैं अंजू और उनके साथ एक और अच्छी सी फ्रेंड आपको ज्वाइन करेंगी, बस आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन
1: लखनऊ की। और रतन को हम बाय कहते हैं और आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि बरसात की हर बूंद यही पैगाम सुनाती है कि तैयारी ही हर मुश्किल को मुश्किल से राह आसान बनाती है। तो तैयारी जबरदस्त रखिए और मौसम कोई भी हो उसे एंजॉय करिए। अपना सतरंगी चैनल यानी 100.7 FM रेनबो एंजॉय करते रहिए, क्योंकि आपके हर मौसम को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी यहाँ पर बखूबी निभाई जाती है। गुड मॉर्निंग लखनऊ में इतना ही, टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं अगले कार्यक्रम सुगंध माटी की में।

और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लखनऊ का ये उनका पहला दौरा होगा। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक लगभग 42 भव्य स्वागत मंच बनाए गए हैं, जहां पार्टी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उनका स्वागत करेंगे। श्री नवीन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड कल राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए संयुक्त उपक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से विश्व स्तरीय नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना विकसित की जाएगी, जो प्रदेश की बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं को टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूलन और भविष्य की जरूरतों के अनुसार समाधान उपलब्ध कराएगी। विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रचार प्रसार के लिए अमरोहा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अमरोहा के मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और मजदूरी के रूप में न्यूनतम 300 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के उन गरीब परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, जो पारंपरिक रोजगार के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं। इच्छुक ग्रामीण परिवार अपने निकटतम ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय के से संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं। जौनपुर में अवैध और मानक विहीन दवाओं की बिक्री के खिलाफ कल औषधि नियंत्रण विभाग ने विशेष अभियान चलाया। कार्रवाई के लिए 4 जनपदों में औषधि निरीक्षकों की एक विशेष संयुक्त टीम ने 5 दुकानों से 11 संदिग्ध दवाओं के नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 107 FM रेनबो, जिस पर अगला प्रोग्राम है सुगंध माटी की।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

राम राम प्रणाम भैया बहनी का हाल चाल बा। अरे भैया हमरे स्टूडियो की घड़ी में बज गवा है 10:04 और आज का दिन आए शनिवार। लेकर आए गए ही हम कार्यक्रम जेकर नाम आए जेकर राहत है आप सबका इंतजार और नाम है कार्यक्रम के सुगंध माटी की और अंजू शुक्ला हमार। और भैया हमरे साथे यहाँ एक बहुत है सुंदर मुंदर बहुत है होनहार कलाकार जिनके बोली भाषा और बतकही होत है बहुत है मजेदार। हाँ और नाम है उनके बा भैया भूलमती और ए भौजी यही हमार और तुहार जिनके साथे आज भैया कार्यक्रम हुई बहुत मजेदार धमाकेदार। कहे से

0: भैया बतकही इनके रहते बहुते नीक और हम करबे निक निक गौनई के बहुछार। तो चला पहले कीन जाए भौजी के स्वागत। राम राम भौजी, नमस्कार।
1: राम राम, और श्रोता पंच सब स्वीकार करे हमारा नमस्कार।
0: तो भूरमती भौजी ई बतावा सबसे पहले कि रहू कहाँ आते दिन
2: है? अरे दादा रे, गरम देख रहे हो कत्ता पड़ रहा।
0: तो हमरे लिए नहीं पड़ रहा, बतावा
2: हम तुम्हारे लिए। हम का जाने तुम्हारे घर में बर्फ गिर रही का गिर रही, हम का जाने।
0: और भैया भौजी, जब श्रोता पंचन से मिले होता तो चाहे बर्फ गिरे, चाहे बौछार आवे, चाहे तूफान आवे, आवे के परत है।
2: अरे दादा, अति गर्मी रहे, आता पनीसा निकला है कि कहां बताए हम
0: पनीसा।
2: अरे निकला तो ना है।
0: अच्छा, जो टप टप चुआ।
2: अरे दादा, उमस अति होती है कि हम तुमका का बताई, मर तर करी दे दे दुई रोटी बनावा जाने मुश्किल है।
0: बात तो सही कह,
2: लागत है भात पका दे पका पकाए खाई रोटी न से कब कहो कहो।
0: घी लगावे की जरूरत ना रे, चिप चिप चिप चिप पसीना। ए बाबूजी, देखा देखा नीक नीक बात करे कहा है। और देखा आज आई है तो पहले ही बताओ हमरे लिए का लाई है।
2: आज हम पिटरिया लाइन तुम्हारे लिए
0: ना। का का है पिटरिया?
2: पिटरिया मा एक टिचकुला धरने।
0: अरे भैया टिचकुला। ए बाबूजी, टिचकुला तो हम जरूर सुनबे, अपने श्रोता पंचन का भी सुनाऊबे।
2: सुनाओ।
0: और जौन टिचकुला आप सुनावा थी ना, ओका सोच सोच के महीना हंसत रही थे।
2: हम देखो सुनाई पहले हंस रही थे।
0: अरे हम अहूं का हंसी आवतिया, और देखा श्रोता पंचो हंसत हा। वा देखा की का बत्ती सी काढ़ के हंसत हा। भैया देखा बहनी, भैया श्रोता पंच बस यही तरह हंसत रहा और सुनत रहा कार्यक्रम सुगंध माटी की। काहे से कि आज है तैयारी फुल धमाकेदार, और आप सब रही हैं तबे ही प्रोग्राम बने मजेदार।
2: बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ भैया नौकरी चाकरी जरूरी है तो परदेश तो जाए इनके परे का भौजी
1: काहे ना भाई
0: चाहे बरसात हो चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो
1: हाँ बिल्कुल है बिल्कुल हाँ नहीं गाना हमका याद आएगा
0: कौन सा
1: अरे तेरी दो टकिया दी नौकरी दी मेरे लाखों का सावन जाए
0: सही क्या हो
1: सावन आएगा
0: हम तो अक्सर गाए थे सावन में
1: आसार लगेगा मुला पानी की बूंदे ना आएगी
0: ये बात तो सही कहे हो जी देखा ऐसे पहले वाले कार्यक्रमों में हम खूब गिन गिन के चुन चुन के बरसात वाले गाना लेके आए रहे
1: बार घाम ही है खूब
0: वही तो हम काला चश्मा बजाए पड़ा हमका
1: सही कियो भैया सब जने छतरी कर लियो अंदर चश्मा निकाल ले धूप के बाहर
0: टोपी लगाए वैसे छतरी छतरी दोनों काम दे घामों से बचाए
1: हो यह बात तो है मतलब घाम में कौनो लगात ना ये सब मुड़ी माँ वही चुन्नी बांध लेते हैं और साफा बांध लेते हैं जो छतरी सब पानी में काम आवत ही
0: हाँ ये बात तो सही
1: है जौन पानी बरसा नहीं वही के खातिर सब तैयारी हमार होई गई
0: हमारे सबके भी तैयारी होई गई भौजी लेकिन एक बात बताई भौजी तैयारी चाहे जितनी कर लियो हैं और जब पानी झमा झम बरसे लागत है तो जी वैसे कहा था भैया कूद जाई अंगना में और खूब मन भर के पहले तो भीग ले हैं और भीज के जो ना छम छम कह के जब नाच लई तो जो ना तब मन भर जात है तब लागत है कि अब भाई बरसा
1: अब भाई बरसा तो है तो आनंद है बरसा के छपर छपर जब तक न कर ले जत्ती छत में नारी आरी का खोले डाले हो सब पानी निकल ही जाए कूड़ा करकट में ना भरा हो एक बहुत ध्यान
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया लेकिन एक बात बताते हम सभी अपने लड़कियों की बात बताई तो का तो जो उन्हें नाली धई देते रहे पाथर और मतलब उसका बंद कई देते रहे और अंगना कई पूरा भर लेते रहे
1: छपर छपर करे खातिर
0: छपर छपर करे तारी खातिर और जो उन्हें कागज के बनवत रहे नाव नाव चलत रही और बैठाए देते रहे अपन गुड्डा गुड़िया केहू केहू के तो डूब जात रहे गुड्डा गुड़िया
1: हम देखत रहे की कत्ती केकर नाव कत्ती दूर जाए केकर डूब गए तो बहुत ताली बजात रहे के लिए तो अरे डूब गए हमार जाए रही जाए रही
0: अरे ए बहुजी आपका याद है जो एक ठीक जो ना टीन के मिलता रहा स्टीमर जो ना चलाए देते रहे कपूर जलत रहा
1: धुआं निकलत रहे वही घूमत रहे चक्कर काटत रहे हम तो बल्टिया में जला देते
0: हाँ बल्टी बल्टी में पानी भर के वैसे जला जाते रहे
1: हम तो कबू कबू चौके से मम्मी से बड़ा भगा
0: अरे का बताई भौजी फूलमती भौजी लड़कियन हमरे सबके लड़कैया के तो बात है अलग रही बचपन के बहुत आनंद आवत रहा
1: सुनो एक बात तुमको बताई जब नान नान रहते हैं बच्चा तो यही अम्मा और दादी एक सुनात रहे तुमका याद है खंती मंती
0: खंती मंती कैसे
1: अरे जैसे छोट बच्चा हो डेढ़ दो साल के जेकर तुमका बहलाए फुसलाए का है चम्मा चौके में रोटी बना रहे खाना बना रहे ना बच्चा पाई पाई पाई पाई करे तो दादी बहलावत खिलावत है दादी बिठाए लेन लेटी दादी दादियों पौड़ी

0: अब को उठी तो घुटना में टिकात रही।
1: अच्छा घंटा मंता
0: आज तो
1: घंटा मंता का उड़ी पावे
0: या को हमका याद आएगा हम बताएं हम सुनाएं तुम
1: का सुनाओ सुनाओ
0: खंती मंती कौड़ी पाई गंगा बहाई गंगा ते मैं बालू लीना बालू ले मैं बुर्जी कदीना बुर्जी हमका लावा दीना लावा लावा बीन चवाबा टुर्री ले घसियारे कदीना घसियारा हमका घास दीना और घास ले मैं गैया खवाई गैया हमका दूध दीना दूध ले मैं खीर बनाई और किसने खाई तो बच्चा बोले अम्मा खाएन बापा खाएन भैया खाएन दीदी खाएन और यही कर करके बच्चा का खवायो देते रहे कि मुंह में कौरा मुंह बच्चा मुंह खोले और कौरा मुंह में डाल दे और यह हमारे खिलाए खिलाए। अब आजकल जाने
1: बहुत वैसे मजेदार सुनायो हमारे पुरान याद खूब ताजा। अरे आप कहे डेढ़ दो साल के यहाँ दस दस साल के लड़के ऐसे करते है अरे हमका घंटा मंता कराओ
0: घंटा
1: कराओ
0: अरे तारा तो घुटना ना फूट जाए।
1: अरे बहुत मजबूत
0: घुटना
1: लड़कियन की खुशी देख के घुटना के दर्द सब चला जाता रहा दादा दादी के। हाँ वैसे बहुत मजेदार।
0: अब अमूला जानियो का अभी खेल कूद ही सब खत्म हो गया बैलिया हाथ में दई दई सब अम्मा खवावा कर
1: का बताई।
0: अरे दादा
1: जला जाए दई दुखड़ा तो भैया बहुते जने के है
0: गड़बड़ बनाते
1: मोबाइल मोबाइल ना दे जा गाऊ नहीं सुना एफएम रेनबो रेडियो बहुत बढ़िया है
0: सुनाए दे सुनाए दे।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: दादी झुलावे पलना, कजरा लगावे बुआ। आज ऐसे घंटा मंता सुनायो ना वे घंटी मंती, बस वही तरह भैया देखा नान भर एक लड़किया जो घरे में हो थे ना, तो सब के खिलौना हो जाते हैं।
3: अच्छा तो है, एकदम लगा थे कि जैसे माने जाने हो, एकदम आनंद वाला हो जाते हैं, एकदम रौनक जैसे लागत है कि घर में बच्चा खेल रहे हैं, टाई टूई बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, खवाओ पियाओ, अम्मा पीछे पीछे लगी ना, चलो नहा लो, चलो खा लो, रौनक
2: बहुत, मतलब घर के हर मनाई जत्ता मनाई हो तो सब व्यस्त रहा, सब की ड्यूटी फिक्स रहा,
3: जाने में एक खिलौना आएगा
2: का।
3: सब जने पाछे पाछे लगे
2: लेकिन मजा बहुत आवत
3: है, मजा तो है, कहो बुआ हो, चाचा हो, कहो मौसी हो, मामा, सबके खिलवाड़ है।
2: हां लेकिन ए भौजी, जैसे शहर में जौन है कुल एकाकी परिवार होई गवा है,
3: अरे
2: अकेला है, और पापा को जाए कहा ड्यूटी पर, और मम्मियों को जाए कहा
3: है, बड़ा मुश्किल है।
2: अब
3: जिनके घर में दादी बाबा है, नानी नाना है, तो कहो बहुत बड़ी नेमत है,
2: बहुत
3: अजाने के ना है, और कत्ती मुश्किल होते हैं, लड़का का कहाँ छोड़े, कहो को घर में छोड़ के जावती है कि भैया वो देखा आवे बिटिया को, तो बच्चा को, तो वो दफ्तर जावे, वो काम करे, वो शाम तक रहे, जब तक अम्मा पापा आए ना जाए तब तक वही ना जावे, देखा हुआ बैठा आते हैं,
2: देखा हुआ बैठा हुआ था, पैसा दे दे के बुलावा जाते, और नहीं तो जौना गाँव देश से, जौना घर से, मम्मी का पापा का, जौना दादी बुलावा जाते, घर एक मना
3: जाती है,
2: घर परिवार साथ रहे बहुत फायदा होत रहा,
3: बोला अब कहा करे, सबके नौकरी चाकरी बाहर है, तो बात
2: और दोनों परानी का कमाब जरूरी होएगा,
3: यह बात है, यह बात ही जरूरी। अब गांव आम देखो कैसे सब जने मिली जुली के रहते, गाँव दादा खटी हम बैठे हैं, अम्मा कौनो चाउर और पकाए रहे, बिटिया लड़का खेल रहे, अब बुआ बैठी चनो कौनो अचारे डाल रहे, और जब जाने खेत एती जावते पूरा परिवार साथे जावते, धान वान जब रोपाई, अब टाइम देखो अब पानी बरसे, पानी
2: ऐसे मौका पर परिवार के बहुत जरूरत पड़त,
3: बरखा गिरे तो देखो ध्यान रोपा जाए साथे में सबके, वो गौनो गात है,
2: बहुत बढ़िया बढ़िया
3: खूब बढ़िया। अब लेकिन जाके वो हमका लागत है बरसा बहुत कम हुई गई,
2: बहुत कम हुई,
3: बोला रास्ता देखे वो बादर आए आए नहीं आए, बदरी छाई बदरी चली गई, उमस हुई गई, अब भगवानो लागत है दुई छींटा मारती है, जब कभी गिरे तो सुबह उठा तो देखो हाँ तनिक गिरू है, लागत है छींटा पड़े न, अब वही के घाम में निकल,
2: वही तो खाली ट्रेलर दिखाया दिखाया के चला जाते, पता नहीं फुल पिक्चर कब दिखे,
3: अरे कब कहो कहो तो जाने वो अत्ता बरस कि रुके नहीं रहा है, वो मुंबई मुंबई में तो हमका कही थी कि बहुत है बरस रहा है, यहाँ एकदम सूखा पड़ा।
2: अब भौजी देखा भगवान से यह मांगा कि जो है बरखा कायदे से हो जाए, हमरे किसान बनाई जो भाई बंधु हैं उनके सबके चेहरा पे मुस्कान,
3: सब सब खिली जाए, मन गीला हो जाए, तन गीला हो जाए, आनंद आ जाए,
2: आनंद आ जाए, और धान ओन के रुपाई होए तो बढ़िया फुल मजा से होए। हाँ लेकिन हमा जो ना तू तू मैं भी होते जान तू कैसे
3: कैसे,
2: अबे सुना देखा सुनायो थे, सुना सुना सुना

0: देखा नैहरे जाए धमकी देती हैं धान और ना बैठी हैं।
1: बहुत गलत बात है, ना बैठी तो खाई बोका।
0: हाँ,
1: जैसे जैसे शहर में सब जनी मिल के दुई दुई जने कमावत हैं, लावती हैं, खरीद के मोले ले आवती हैं। और गांव में तो देखो सुविधा है कि अपन खेत है, अपन जमीन है, अपन रोपो, अपन खाओ, सबके खिलाओ,
0: शुद्ध खाओ,
1: शुद्ध खाओ और सबके खिलाओ। सार भरे के धान धर लेते हो तो बुरिया भर भर के वही ओसारे में धर लेती।
0: और भैया उन्हीं सबके भरोसे तो हम सब शहर वाले भी तो
1: सब जने खाए तो हाँ? भैया ये तो हाथ बटाए का पर
0: मेकअप का धमकी देती हैं बिगड़ जाए हाँ। और फिर नहीं हरक धमकी देती हैं।
1: धमकी है दे वही ठीक है, जाए ना भैया
0: हाँ, ये बात तो सही
1: है। बेर बेर ना जाए, कबो कबो चली जावा करे, जब काम के टाइम हो, जब रुपाई के टाइम हो, धान वान के तब ना भागे भैया।
0: अब बल्कि नैहरन वाले को बुला लो, भाई बहन को बुला लो
1: भैया, मदद करो,
0: मदद करो, हाथ बटाओ।
1: ये तो बात है,
0: वैसे छोटे छोटे लड़कियां बच्चे जो भाई बहन रहा था ना, बहुत दौड़ दौड़ सब काम करवा रहे थे, मजा
1: बहुत बढ़िया। खेते में रोटी वोटी मंगा लेन, लहसुन की मरचाय की चटनी मंगा लेन, अनिया तेरे बैठ बैठ खाओ अपन, ठंडा जल पियो और काम में लग जाओ।
0: बहुत बढ़िया,
1: ये के आनंद बहुत है हम त्याखे ने।
0: अरे भौजी, ई सौभाग्य तो हम मिलत है, हम देखी आई थे, गांव देश घूमी आई थे।
1: जाड़े हुई जाए तो मटर छील छील खाओ, घाम में बैठो बढ़िया।
0: का मटर छील छील मतलब जितना छीली जाते कढ़ाई में घुघरी छौके से पहले जो है, अरे आधी तो कम हो जाती, पेट में चली जाती।
1: वही मीठी मीठी कच्ची कच्ची खाए में जो आनंद आते है कि दुई चार छीलो दुई मुंह में डाले।
0: लेकिन ए भौजी, ठंडी मौसम तो आए मटर के मजा लीन जाए, लेकिन ये जो बारिश का मौसम आए अभी, जैसे उम्मीद के अनुसार जैसे सब सोचे रहे कि परसे पानी अजूने में आए जात रहा बतावा मानसून। अबे ताई देखा जुलाई
1: आइए जाने, थोड़ी सबर करो। अब जाने हमका लागत ही कि सब जगह जो है ये मौसम का सिस्टम जो है
0: बिगड़ेगा।

0: बहुत बिगड़ी है।
1: अब भैया ये हमका यूं लागत है कि पेड़ पौधा लगाओ, हरियाली करो ताकि थोड़ा सा जो धरती माता के शांति मिले।
0: और देखा वन महोत्सव चलता है, वन महोत्सव सप्ताह चलता है पूरा। अब मानसून के मौसम में ये मौसम बहुत अनुकूल रहा थे वृक्षारोपण,
1: यही तो टेम भाई, यही मैं पौधा लगाओ वही का, गैया बकरी से बचाओ, साल दो साल बस देख लिया बिरवा ऊपर निकल गए 6 फीट से ऊपर खत्म, लहलाए लाग हरा हरा, हम जाने लगाए 2-3 बिरवा खूब कदम के बिरवा लगा।
0: अरे खूब फूलदार फलदार और छायादार वृक्ष लगाओ और तो देखो जो उन्हें अपना मन प्रसन्न हो, उनके जैसे जैसे वह बढ़ी है वैसे वैसे अपने आप को लगे अरे वाह भैया
1: जब फले फूले तो देखो वही के नीचे गैया बैठी, वही के नीचे मनई बैठे बात कर रहे, इतना आनंद आवत है।
0: अरे भौजी हम घर अपने घर समन्वय नीम के पेड़ जौन सुंदर पेड़ लगाए, जौन रकम रकम के चिड़िया पंछी आवत है की का बताई, खूब सुंदर चहचहात है घोसला बनाया, कितना नीक लागत ना। हाँ बहुत निक लागत है। तो देखा भैया नैहर जाए के धमकी दे यहाँ तो जो ना वह कहती से काव कहा जाता है, सुनाई
1: सुनाओ
0: सुना सुना सुना, सुना।

0: बताओ जी, हाँ घोड़े गिरत हाँ नैहर न जायो, जायो तो जमुना घास छोले मतलब कोनो मिलाए के कोनो काम करे न जायो, जायो तो डाणे नहीं दरवाजा अपना खड़ी हुई और दरवाजा अब खड़ी हुई तो केहू से नजना ना मिला
1: देखो देखो आई से झरसुआ हो दिन अरे का बता बहुत इनके बर्दाश्त ना है होती
0: झरसुआ है हे भौजी हे भौजी इनसे क्या फील करता है
1: काहे भाई नैहर काहे न अरे कबहु कबहु तो नैहर जाइए कोनो मेल मुलाकात करिए कि नहीं करिए
0: आओ का
1: मुल्ला सब जगह नजर रखे रहे
0: सब जगह अरे मिनट मिनट पे फोन आओ तो देखा नहीं ए भौजी वैसे जो ना ये मजा बहुत आवत है ये मतलब जब नैहरे चली गई मैडम है ओकरे बाद जो ना टेढ़ मेढ़ रोटी बेल है तो जान तब कीमत जाए पता चला थे कि
1: तब तब तब तब रोज हो गुहार लगाई है का वही हो कत्ते दिन और रही हो है अरे आए जाती हो तो हमारी तो सास जो रहे जैसे मई के जाओ वही के एक दो दिन बीते बिटिया याद आई रही तुम्हार बिटिया कब अब हम जाने थे रोटी थोपे पड़ रही तुम का तो तुमका हमारी याद आ रही
0: सही
1: वो बुलावत रहन अब चली आओ अब फिर चली जान अब फिर कब आऊं कब होती है
0: हां लड़कियां बच्चे का स्कूल खोल गया देखा जुलाई बाद अब तो आइन गई अब तो लौटी नहीं आई
1: हां दो या दिन तीन दिन में अब बिटिया चली आ अभी आए जा तो बूझ नहीं रहे हमारी बात चलिए आओ चल और इतनी गुहार लगावे मुला हम अपन बोरिया बिस्तर बांध के चले आना फिर खत्म हुई गा मई का
0: वही तो और जब मई के चली जाए तो बहुत प्यार ममता उमड़त है उमड़त घुमड़त
1: बहुत बहुत
0: अजर रहा सामने तो जब ना कौनो कदर ना
1: यह तो होती
0: वैसे ये बात है जौन चीज जौन ना चली जात है नजर से दूर ओके कीमत तब पता चलता
1: है ये तो ये तो
0: और यही तरह जौन है अब बात करत करत ही खेती बाड़ी के हम सब है किसान बंधु

0: के बात करते ही, तो जब खेती किसानी खूब लहलहात रहा और जो ना खूब दादा पर दादा पूरा परिवार राहत रहा और कौनों शहर वहर के मोह माया रहा बे नहीं की
1: हाँ, तब सब जाने वही
0: सब गांव में राहत रहे, तब जो ना कितना सुंदर माहौल राहत रहा है। लेकिन अब वो ना माहौल है ना वैस मनाई बड़े बुजुर्ग बच्चा हाँ गांव देश में ना लड़कियां बच्चा गांव में रहा चाहते सब जहर भागत हैं। तो अब ओके कीमत पता चला था कि गांव घर के और खेती आपन होए तो कौन मतलब महत्वपूर्ण रहा।
1: बहुत बड़ी हिम्मत है भाई, खेत जमीन होए मुला इतना अन्न पैदा होए कि साल भरे इंसान रख रख के खाए तो कम से कम रोटी पानी के तो इंतजाम रहे।
0: नहीं और फसल जो है बेचो देते सरकारों इंतजाम हाँ, करते फसल हाँ, बेचे किसानों हाँ, के लिए
1: सब रहा
0: ओके, इतनी बढ़िया आमदनी होते कि पूरा हाँ, परिवार ऐसे आगे बढ़त रहा थे। तो नौकरी चाकरी की जरूरत हाँ, नहीं रहा था,
1: साल भरे के अपना धल लो बाकी बेच दो
0: हाँ,
1: खाओ भैया सब जने खाओ सबका बेचे सरकारों खरीद ले सब जने खाए भैया हम तो खाते अब खेत जाऊ रहा है बटैया अब चले गए।
0: अरे ना पूछो
1: लेकिन जाने हो है तो कमुला जमीन तो है खेती तो हो रही मुला बंजर ना छोड़ो हाँ कुछ नहीं तो बाग लगा दियो अमरूद लगा दियो आम लगा दियो भैया कुछ ना कुछ रोपे रहो।
0: और बहुत ऐसे मनाई रहा थे गाँव देश में जिनके लगे नहीं जमीन है लेकिन वह काम बहुत बढ़िया कर रहे
1: थे
0: किसानी सब खुल जाना थे उनका सबका रोजगारों मिल जाते मतलब कुल मिला के खेती अगर तोहरे लगे आ है तो भैया बहुत भाग्यशाली है ओका छोड़ा ना ओका भले बटैया अब दे दिया है आपन खुल जो मौज करा चाह तो मौज करा
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और यही तरक मनई यहाँ देखा हमरे सामने
1: के
0: हाँ यह बात है।

0: अन्नपानी बस।
1: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
1: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
2: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
3: ए भौजी, दाल भात चोखा चटनी का कमी ना न गाँव में, लेकिन धान मतलब न बोई है, खेती न कर रही है, बटैया बदई दई है, अपना बढ़िया पहनिए और ये खाई है और आराम करी है, बतावा
4: ना भाई। देखियो हम का नीक ना लागत यू बतिया भाई, मेहनत तो करेगा पड़ी है ना
3: सबका।
4: अरे दाल भात जिंदगी थोड़े चलते, दाल भात के आगे कभी रोटी खाए का होए, कभी कुछ बढ़िया खाए, कोफ्ता खाए का होए,
3: आप लौकी वो ले जा,
4: हाँ भैया खीर ईर खाए का, तो भैया थोड़ी मेहनत तो करेगा। बोला केवल दाल भात, चलो कबाऊ कबाऊ ठीक है चटनी सर।
3: बोला जिंदगी ना कटे भैया, लड़कियां बच्चा के लिए और पीढ़ी के लिए
4: सबके लिए स्वाचे का पड़ी है आगे।
3: और जैसे तो है बप्पा बाबा बना के गए, हाँ वैसे तुहू को तो बनवे का है कि ना
4: अपने बच्चन का पढ़ाइयो लिखाइयो, बच्चन कल का बड़े हुई जाइए, कहिए हमका पढ़े का है, हमका बाहर जाए का है, तो कहा करिए भैया।
3: तो भैया इस मनई के जो आज के युवा पीढ़ी है जो खेती खलिहानी से बहुत दूर हो जाती है, ओका जो ना का कहबू फूलमती भौजी।
4: हम तो यू कहब कि भैया दूर ना जाओ, देश जाओ, परदेश जाओ, कहूँ जाओ, लौट लौट अपन घरे आओ, अपन अंगना में आओ, अपन काम करो फिर निकल जाओ
3: और कमाए धमाए के लिए चाहे जहाँ शहर में बसो, लेकिन जैसे छुट्टी पाओ दो चार दिन के लिए अपने गांव घर हो ही आओ।
4: भाई देखो पेड़ का फले फूले में जड़ का सींचा जाती है, तो वो जड़ तुम्हारी जो है गांव में है वही कहीं ना भूलो।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: जड़ का हरा भरा रखियो भैया,
3: जे जे जड़ से जो है हट जाते दूर, वो नीचवा से खोखला हो जाते
4: जड़ से, भैया जुड़े रहो जमीन से, जुड़े
3: रहो। अच्छा ए भौजी जानती है ये जौन जौन बड़ा बड़ा कंप्यूटर रखा है ना, यह कहती वह कहती है तीन चाठी ओहमा जौन है, बहुत सारे हमारे श्रोता पंचन घुस घुस के मेल करता है।
4: देखो हम एक बार फिर तुमसे पूछब, तुम बताए न रहे हम यू कही थे की जो मेल आवत है वो मेल है की फीमेल है।
3: ए भौजी अब तू का जो है मेल आवत ही है कही दी हो है, तो जो है मेल हो गए, आवत आवत यह है तो फीमेल हो गए, आवत आहा तो मेल हो,
4: मतलब आ रहा है तो मेल, आ गई है तो फीमेल
3: फीमेल। अब बस मामला यह है कि हमारे श्रोता पंचन के है, तो जो उन्हें बहुत प्रेम से पढ़े चाहे बोले चाहे, और बाकी तो चाहे आप मेल समझा चाहे फीमेल समझा, काहे से कि श्रोता पंचन में मेल हो बहुत जने यहाँ अपनी मेल हो
4: और सब जने मिल के मेल भेज रहे हैं,
3: मेल भेज रहे। बस मकसद यह रहा चाहे कि मेल जोल बना रहा है,
4: मेल भेजो और मेल बना रहा है,
3: बना रहा है,
4: यूनिक बात कहे।
3: बस अब जे देखा ई जो है एस एस ऐसे करियो और जो है एस खट से ऐसे खुल जाए तो
4: खोलियो खोलियो
3: है। देखा जैसे अब पहले बता देते ही
4: कुंडी खोलते,
3: हाँ कुंडी को देखा सबसे पहले ई विकास भैया का वहा है, क्या लिखे हैं देखा पढ़ा,
4: यू कह रहे हैं कि हेलो मैम चरण स्पर्श, मैं विकास गांव तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से कार्यक्रम सुन रहा हूँ, कार्यक्रम बहुत है लाजवाब और झक्कास चल रहा है, सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छा है और मैं इनके मित्रों हैं ब्रिजेश सिंह दीपू बहराइच से, वह कहने तो बहुत बढ़िया भैया धन्यवाद और तुमका बहुत भैया खुश रहो भैया।
3: हाँ, जानती है एक कहती जो है शेख अल्लाह बख्श भैया मेला तेलंगाना निजामाबाद से सुनता है, जानती है शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख शेख रहीमुन्ना भैया सब जने सुनता है, बस इनका सबका अच्छा लागत है, नीक लागत है,
4: बहुत बढ़िया।
3: और सोनू परवाना भाई ना कहती है कि अंजू बहन जी के बैकग्राउंड म्यूजिक ही बताया दी इसके प्रोग्राम के, बारिश एकदम झमझमाउआ हो,
4: क्या बात क्या बात भैया।
3: और के भेजता है
4: अयू वारिस अली खान है, यू देखो कहीं ना कि एक बात और बाजार से कटे हुए फल ना खाएं, बहुत सही बात है भैया, फल वल ऐसे कटे वटे ना खाओ, जो फल खाएगा अपन घर ले आओ, नीके तनी के धोए के काट के तुरंत खाओ, घरों में काट का ना धरियो।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत देर तक फ्रिज व्रिज में धरा जो ना काम नहीं,
4: अरे देखो बेस्वाद तो हुए जाते और जाने पुराने हुए जाते, कीड़ मकोड़ लग जाए जो तुमका दिखाए ना है, इन्फेक्शन हुई जाइए।
3: हाँ बिल्कुल, और
4: बच के रहो
3: भैया, बीमारी पेट दर्द उल्टी दस्त सब कुछ शुरू हो जाती
4: है, यह हम एकदम बच के रहो भैया, यह इतने टाइम जो है थोड़ा हल्का खाना खाओ, सुपाच्य भोजन जैसे खिचड़ी दलिया ये मैं थोड़ा हल्का रखो।
3: देखा जने फोटो भेजे हैं भौजी, वाह देखा,
4: अरे दादा रे यू खटियाटिया बैठे ने सब जने है और यू आम के बाग है हमका लागत, और कह रहे बहुत धमाकेदार पार्टी की

0: कंद प्रोग्राम लगता है
1: माटी की सुगंध.
0: हाँ माटी की सुगंध. और यू कह रहे हैं मोइनुद्दीन कोडरी खैराबाद सीतापुर से सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया का बात है
1: भैया, फोटो तो भेज दे. अंगद यादव भैया नमस्ते करे यहाँ शिवराम निजामाबाद आजमगढ़ से. अच्छा, सुगंध माटी प्रोग्राम के इंतजार रहा, मजा आ जाता है प्रोग्राम सुन के. वाह भैया वाह,
0: क्या बात.
1: एक बात बताई भैया भौजी, ये जो शनिचर वाला प्रोग्राम है ना, एमा खास तौर पे अवधि माटी की खुशबू आवत है खाली. हाँ
0: अरे सुगंध तो होती है भाई.
1: और बुध का जो आवत है तो हमा कुल भोजपुरी हरियाणवी पंजाबी, मतलब बुधवार और शनिवार 10 से लेके 11 बजे तक सुगंध माटी कार्यक्रम एफएम रेनबो पर हमारे श्रोता पंचे सुन सकते हैं.
0: हाँ,
1: ओके मेल भेजे.
0: और ये देखो भैया मोनू सेठ ये लिखी ने फूलमती भौजी बहुत हंसत और हंसावती है. तो भैया हमका तो हंसी आए जाती है. और टिचकुला जरूर सुनावा भौजी, दिन भर हंसी बरकरार रही जरूर हम सुना.
1: अबे टिचकुला जात जात अबे बाकी है.
0: अरे पिटरिया में, पिटरिया तो हमका यहन खाली करेगा पड़ी.
1: अरे पिटरिया में तो जौन जौन सामग्री है के का बताई हम ना बताऊ सबसे
0: बताओ.
1: और जानती है कहा थे मोनू भैया की अंजू बहन जी साथ भौजी का राम राम नमस्ते हमारे नानी जी की तरफ से भी.
0: अरे नानी के पर नाम भेजे हम.
1: हाँ और कहा थे कि माटिक सुगंध यानी खुशबू शनिचर बैठकी में प्रोग्राम सुनने खातिर सबका बहुत इंतजार रहा था. खेतन में जब धान लागत है ना तो मेड़ पर रेडियो बजा करत है.
0: क्या बात.
1: और आप सबके द्वारा बजाई गई गौनई साथ गुनगुनावा करत है और सबके बहुत तारीफ होते. आज बाग जाए रहे नानी जी का जामुन खियाए. कहा
0: क्या बात है भैया, हमारी तरफ से दुई जामुन जरूर खा लियो.
1: और अशोक कुमार भैया भी मितौली लखीमपुर खीरी में रायपुर उदारम सुनता हम. इनके साथ बलिस्टर चाचा जयराज प्रदीप राज आशीष राज अंजू राज जसवंत राज सब जने सवेरन से सुनता ये कार्यक्रम की तारीफ करें. हाँ भैया
0: बहुत नीक है भैया सुनत रहो.
1: हाँ और संजय मार्कंडे भैया हरे सुनता है. और जो नहा कहा थे कि अच्छा ये लल्ला लल्ला लोरी दूध में कटोरी दूध में बतासा मुन्नी कर तमाशा लिख के भेज दे.
0: अच्छा जो हम खंती मंती हम सुनाए जवाब दिए ने हमका
1: उनका याद आएगा. वाह और बड़ा बमचौक खंडवा मध्य प्रदेश से सुनता है सब जने.
0: अरे दादा हाँ. अति दूर से.
1: का, देखा प्रमुख कुमार भैया का लिखे हैं भौजी
0: का करने का.
1: देखा वा, वा, वा, वा,
0: अच्छा यू, हाँ. यू कहने लुधियाना हाँ. पंजाब थे और हाँ यू रहे वाले बलरामपुरी के. प्यारी अंजू दीदिया फूलमती के भौजी के परनाम भेजे ने कहने ने काफी दिन बाद आप लोगन की आवाज सुने नम. अरे एक्सीडेंट हो गया था. अरे दादा रे. अरे भैया नीक रहो भैया, अपन ख्याल रखो. अब नीक हो गए. बहुत बढ़िया भैया नीक हो गए. हम आओ नीक हो गए तुम्हारी बात सुन के. और कहने आपकी प्रस्तुति झक्कास लगती तुमका कह रहे भैया अंजू. हर शब्द में अपनापन हर आवाज में मिठास जगती है. जब आप माइक संभालती है महफिल मुस्कुरा उठती है. आपकी प्यारी सी शैली हर दिल को छू जाती है भैया. यू तो बात हमारा दिल छू ही जाते हैं. हंसी उमंग और जोश का सुंदर संगम है. आपकी पहचान सुनने वाले कहते हैं वाह क्या कमाल है आपकी उड़ान.
1: भैया कवि हो गए हाँ सब.
0: कभी अब तुम कविता सुनाए प्रोग्राम के शुरू में तो सब कवि हुई गए.
1: अरे भौजी बहुत है बढ़िया बढ़िया कविता हमारे श्रोता पंचा लिख के भेजे थे अब. हाँ
0: क्या बात.
1: एक बात बताई कविता से हमका एक जनी की सास याद आ गई.
0: कहा
1: एक जनी रही देवरान जेठान गीता और सीता. हाँ, हाँ, दोनों जनी में लड़ाई हो हाँ, तो जो उन्हें कबो कबो जो सास है वो गीता देवरान के तरफ से बोल दें हाँ, कबो कबो सीता मैया यानी जेठान की तरफ से बोल दें हाँ, तो आई दोनों जनी हमरे पास बारी बारी से अपने अपने अपने सास के बुराई करे लागी है कि देखा इसे बोले थे. हम अपने मन में सोचे रहे हैं भैया ए भौजी जो सुने है ना बिन पेनी के लोटा. हमका देखा ये जो अम्मा है तो है इनका जो मतलब एक जनिक साथ है जो सही है उसका साथ दियो जो गलत है उसका विरोध करो.
0: हाँ, सही बात है.
1: बिन पेनी के लोटा है जो है
0: कब वही सी कब वही
1: हां एमो रे
0: जान के रहा थी. जन तुम बिन पेनी के लोटा कह रही हो हमारी अम्मा जानो का करते हैं कहीं ते थारी के बैंगन जन थरिया के बैंगन गोल बैंगन होते ना थरिया में धर दियो तो तुमका जीव ना जान पड़ी कौन दे समझा रहे
1: बस वही.

0: अब देखा तो इनके सास जाऊं यहां काहे बताई बताओ का बताई
1: भाई ना यूं झोटा झोटी हम का जी नाई लागत भैया ये हम का लागत लोटा से झोटा जोड़ दी ने
0: हां वो गाना बनवे कविता बनवावे एक चक्कर तुक बंदी कही जानी
1: अति झोटम झोटी ना भैया कमन देखो बात होते तकरारे होते मिलजुल के फिर दो जने सुबह मुंह फुलावते रात में मिल के शाम के रोटी सब साथ खावते चाय पीते बात हुई गई खाना भी हजम
0: बिल्कुल का बात कहो भौजी और देवरान जेठान तो बहन बहन ही होती है
1: मिलजुल के भैया
0: अच्छा ए भौजी टिशकुला सुना दे देखा घड़ी में बज गया 10:53
1: देखो देखो तुम गीत संगीत सुना रहे तो यह हमारे हमका टिचकुला याद आएगा जाने एक जगह प्रोग्राम रहे जन प्रोग्राम होती है तो मंच अंच सजावा जाती है लेट बत्ती लगी कुर्सी उर्सी लगावा जाते सुंदर सजावा रहे बड़ा बड़ा मैदान रहे 500 कुर्सी धरी
0: अच्छा
1: भैया वो तंबू कनात लगावागा कि भैया न धूप रहे न पानी गिरे और मंच सजावागा ऊंचा मंच मार तखा तखा तगाए कि भैया गीत संगीत के बहुत बढ़िया प्रोग्राम है भैया गीतकार आवे गौनई करे खातिर अब वो देखे कि ये मंच के आगे जो कुर्सी लगी तो उन भरी ना है वो थोड़े दिन तो देखो रास्ता देखें इंतजार करें फिर वही देखें कि आगे की कुर्सी जो है आगे की जो लेन रहे वही में 8-10 कुर्सी भरी रहे तो लोग बैठ गए वो कभी सोचिन के भैया 8-10 तो बैठे चलो बाकी आई है तो आई है हम शुरू कर तो ही गए भैया मंच गए अपन माई का एक संभालिन साज अपना सब निकालिन ढोलक तबला सब एक के बाद कहें कि भैया सबका नमस्कार अब देखो हम जो है गीत गाने शुरू करें भैया अब सब जने ना आए तो कौनो बात नहीं आप जो 8-10 श्रोता हमरे आए हो बहुत खास हमरे खातिर हो तुमरे खातिर हम गाना सुना तो जो उनमें से एक जना बोला भैया कत्ती देर करियो कत्ती देर के कार्यक्रम है भैया हम का टेंट बत्ती ले जाए का ये मारे हम बैठी ने अब तुम जाओ तो हम भैया माई का ले जाए
0: अरे भैया दैया इस जो ना कौनो कलाकार के साथ है नहीं चाहिए भाई बता दे तही
1: भाई गलत बात
0: है गलत बात है भाई देखा कौनो कार्यक्रम यह तरह हो तो गीत संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम की वजह से तो भैया अपन संस्कृति है देखा भौजी ये जो उन कार्यक्रम है वहाँ लोक गीत बजत है कितना सुंदर लागत है
1: बहुत बढ़िया लागत है अब देखो श्रोता अगर हमारे चिट्ठी ना भेजे मेल ना भेजे तो हमका बहुत सुना सुना लगे अब देखो फिर कितनी मेल ही आई
0: इसे पता ना लगे कि क्यों सुन सुनबो
1: अब हम जान नहीं रहे कि देखो अत्ते जने सुन रहे हैं अत्ते जने तारीफ कर रहे हैं अपन बात ही बता रहे हैं तो लागत तो है कि हम कुछ कह रहे हैं तो कौन सुनने वाला है
0: ओका और देखा कितनी मेल आई है जोन जोन पढ़ पाई एक मिनट के अंदर पढ़ ली बाकी जो है हम सब अगले प्रोग्राम में पढ़े
1: तो हम बताए हम पढ़ दे देखो
0: हाँ पढ़ा भौजी तो
1: यू देखो यू भेजी ने कृष्णकांत सिंह कैसरगंज बहराइच से ये नमस्कार भेजी ने कहीं ने प्रोग्राम सुन के बहुत आनंद आ रहा है मन खुशी से झूम उठता है आप दोनों की चटपटी प्रोग्राम बातें जो है प्रोग्राम को सुगंधित कर दे रही है और ये हमारा फेवरेट प्रोग्राम है जिसका हम इंतजार करते हैं भैया बहुत बढ़िया है
0: बहुत बढ़िया
1: कौन एक लागे थे भैया आप सब जने इंतजार कर रहे थे और यो देखो कौन है
0: यू
1: रामशंकर जी हैं।

0: और कहा था
1: गुड मॉर्निंग भेजी ने ये चंदा डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से,
0: अच्छा,
1: और कहीं ना कि आप दोनों का कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और आज काफी दिन बाद ही कार्यक्रम सुन रहा हूँ।
0: हाँ।
1: और ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में अगर पहेलियां भी पूछी जाएं तो कार्यक्रम में चार चांद लगता है भैया। चलो
0: तो है सुझाव नोट कर लेंगे, अगली दाई उबे तो पहेली लेके आवे
1: कि हम पोटली में पहेली रखो
0: भैया। जानती है भौजी, पिंकी बहिनी जो अमीना बात से लिखा थी, फूलमती भौजी का राम राम भेजे हैं।
1: अच्छा, राम राम पिंकी।
0: कहा थी भौजी पहले ये बताओ, हम नंदन का याद नहीं आवत का, नंद यही तोहार। हाँ, कहा थी कहाँ गायब रहे हो?
1: अरे
0: चल अब बताऊंगी। और कहा थी इतने दिन के बाद गायब ना रहा करो इतने दिन के लिए। और एक जानतिया का लिख के भेजे, हाँ प्रोग्राम अच्छा लगा था। कहा थी जेठवा कहे सहम ही राजा, तू चली चली सबका सताए, पंखा कूलर बर्फ पिघल गई न तबहू पसीना रुके न पाए। इतने में बदरिया मुस्काए, सावन बाबा ढोल बजाए, रिमझिम रिमझिम पानी बरसल, धरती हरियर चुरन चुनरिया उड़ाए। फूलमती भौजी बोलिन हंस के, गर्मी अब तुहार छुट्टी भई। अल्लू कहे हम जात हई भौजी, बरखा हमका हराए देश।

0: कहा थी जेठवा कहे सहम ही राजा, तू चल चल सबका सताए, पंखा कूलर बर्फ पिघिल गई न तबहू पसीना रुके न पाए। अतने में बदरिया मुस्काए, सावन बाबा ढोल बजाए, रिमझिम रिमझिम पानी बरसल, धरती हरियर चुरन चुनरिया उड़ाए। फूलमती भौजी बोलिन हंस के गर्मी अब तुहार छुट्टी भई। अल्लू कहे हम जात हई भौजी, बरखा हमका हराए देश।
1: अरे गजब।
0: अंजू मैडम मुस्काए कहीं देखो माटी महक उठी आज। भौजी कहीं पकौड़ी तलो, चाय बिना का सावन का काजा है काज, का सावन काज। सुगंध माटी महके चारों ओर, हंसी गूंजे हर एक द्वार। फूलमती भौजी अंजू मैडम संग, रंग जमाए दिन अपार। और बरसे पानी खिले मुस्कान, सबका मन होए गुलजार। ऐसन सावन हर बरसी आवे, रहे खुशियन के भंडार।
1: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
0: समोसा भेजे हरी मिर्ची की चटनी।
1: दही अरे हमारे तो जाने मुंह से लार टपके।
0: भौजी तू हरे तो जाए के टाइम आवत है, हमका तो देखा वही यही बैठे।
1: बहनी तुम इंतजार करो थोड़ी देर, हम पकौड़ी बना रहे हैं, तुम जल्दी आई आओ।
0: अच्छा ठीक है,
1: जल्दी आए, हम पकौड़ी बनाए।
0: देखा 11-12 वाला प्रोग्राम कही के उही में प्रोग्राम में इस सब पढ़बे आपके लिए। जो मेल आवा नजीम रैन, विजय पाल यादव, गीता बहिनी, कोमल तिवारी, कुलदीप गुप्ता, आशा पांडे बहिनी है, राजकमल यादव, मोहम्मद आसिफ, अरुण कुमार, बाबू अंसारी, ब्रिजेश सिंह, दीपू, मुनेश कुमार राज, गुलफशाह सिद्दीकी, वकील अहमद, सत्यम पाल, शैलेश कुमार, सबके ई मेल जो अगला कार्यक्रम है उहमा हम शामिल करबे। जानती है बहू जी।
1: हाँ
0: हाँ,
1: जरूर करो।
0: अब पहले श्रोता पंजन का राम राम कहा, कब आऊं फिर ये बताया जा।
1: बहुत जल्दी आओ, बहुत जल्दी आप, जब तुम बुलाओ तब आप। अब भैया हम कहते तुम कढ़ैया चढ़ाओ, पकड़ी अकड़ी तलो, हम बहुत जल्दी आप।
0: तो भैया फूलमती भौजी के रहे हम सबका अगली बार का इंतजार। और आज के कार्यक्रम सुगंध माटी के में से हम दोनों जनी लेते ही आपसे अनुमति, तो राम राम
1: नमस्कार सबके, राम राम।

उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा का आज अंतिम दिन है। कल दूसरे दिन की परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों पालियों में कुल 8,07,709 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से करीब 93% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया। परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में मुक्त व्यापार समझौते के बेहतर उपयोग, लॉजिस्टिक्स लागत को घटाने, देश के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत बनाने और के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में चर्चा के दौरान श्री नंदी ने प्रदेश में NABL सर्टिफाइड टेस्टिंग लैब्स की संख्या बढ़ाने की मांग की। उन्होंने निर्यातकों को राहत देने के लिए बढ़े फ्रेट चार्जेस में राहत देने और इनलैंड कंटेनर डिपो माधो सिंह भदोही को दोबारा संचालित करने का प्रस्ताव भी रखा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह आज लखनऊ के जनभवन में आम महोत्सव के तहत आयोजित आम उत्पादकों, निर्यातकों और खरीदारों के लिए क्रेता विक्रेता सम्मेलन और तकनीकी सत्र में शामिल होंगे। 3 से 5 जुलाई तक होने वाला ये आम महोत्सव इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के साथ ही जनभवन में भी लगाया गया है। इस महोत्सव में 800 प्रजातियों के आम प्रदर्शित किए गए हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये प्रदर्शनी आम जन के लिए सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक निःशुल्क खुली रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी सुनने वालों का 100.7 FM रेनबो पर। 11:04 का वक्त हो गया और फेवरेट प्रोग्राम आप सभी का लेकर आ गई हूँ मैं आरजे अंजू शुक्ला। प्रोग्राम का नाम है संदेश आपके गीत हमारे, और इस प्रोग्राम में आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपने एक अच्छा सा मैसेज जो जन जागरूकता के लिए हो, जनहित के लिए हो, वो आपने भेजिए हमें मेल में या फ़ोन कॉल के जरिए और मैं उसे ऑन एयर करूँगी। आपको फ़ोन नंबर बता देते हैं 0522 2238 845 या फिर 0522 2238 852, और हमारी मेल आईडी वही आपकी बहुत प्यारी सी पुरानी सी fmakashwanilakhnow@gmail.com। तो हमें है आपके ईमेल्स और फोन कॉल्स का इंतजार, और मेरे पास है गानों की बौछार, तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

भाई बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फ्रॉम द फिल्म कुर्बान आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है और कहां पहुंच रहा है 100.7 एफएम रेनबो के माध्यम से पहुंच रहा है, प्रसार भारती की न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप हमें सुन रहे हैं या लाइव रेडियो के जरिए भी कहीं पर भी कहीं से भी आप हमसे जुड़े हैं। आपको बता दें प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, मैं हूं आरजे अंजू शुक्ला और वक्त हो गया है 11:11। हमारे साथ कुछ श्रोता फोन लाइन पर प्रतीक्षा करें लेकिन बस 10 सेकंड और

0: रिपीट करिएगा, हाँ बस होल्ड रखिएगा।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: लीजिए हम आ गए वापस और अब हम बात कर लेते हैं हमारे साथ फोन पर जो है उनसे, और ये कौन है सुन लेते हैं। हेलो,
3: हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
3: मैं मुनेश कुमार राज बोल रहा हूँ, भानपुर हररुआ जिला लखीमपुर खीरी यूपी से। मैं,
0: अरे मुनेश जी आप ईमेल से निकल के वहाँ फोन में पहुँच गए, वाह वाह वाह, स्वागत है आपका, स्वागत है जी। बताएं,
3: इतना ज्यादा प्यार है हमको एफएम से कि हमने अपनी खाने की थाली छोड़ दी कुछ बातों को लेके कहने के लिए।
0: अच्छा, मतलब इस समय आपका लंच चल रहा था।
3: बिल्कुल मैम, अभी हम छोड़ के आए थे बिल्कुल।
0: अच्छा क्या बात है, बड़े समय से आपका लंच हो जाता है, तो मतलब इसके बाद अपनी बात कहने के बाद आप अपना खाना कंटिन्यू रखिएगा, बताएं क्या कहना चाहते हैं।
3: मैम हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ हमारे श्रोता भाई हैं, वो उसे कुछ कहना है कि अगर वो कॉल करें ठीक है तो ज्यादा समय ना लें बात करने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: फालतू की बातें उससे कोई नतीजा नहीं, जो मोस्ट बात हो, जो मुद्दे पे कुछ कहना है।
0: बिल्कुल, छोटी छोटी बातें करके, और सबसे और बड़ी बात ये भी है कि जिन श्रोताओं का फोन हर रोज लगता है और अलग अलग प्रोग्राम्स में लगता है, या मतलब एक कम से कम हफ्ते 10 दिन का तो समय लिया करें ताकि और भी नए नए श्रोता हमसे जुड़ सकें। जी,
3: और मैम ये कहना है कि जैसे कि लोग ईमेल करते हैं तो उसमें ज्यादा नहीं, बस दो नाम डालें, इससे ज्यादा ना डालें।
0: जरूरत ही क्या है भाई, आपके सभी दोस्त आपको सुन रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं जिनका नाम नहीं डाला है वो भी तो आपको सुन रहे हैं ना, वो भी आपके दोस्त हैं, किसी का नाम डालने की जरूरत ही नहीं है। जी सिर्फ अपना नाम लिखिए।
3: जैसे कि ये है कि जैसे हम प्यार करते हैं, सभी लोग प्यार करते हैं, ज्यादा नहीं अगर
0: लेकिन ये प्यार जानते हैं ना मुनेश जी, कभी कभी हम आरजेस के लिए बड़ा महंगा साबित होने लगता है। जैसे कि आज हमारे पास मुनेश जी, अब आपकी भी बात लंबी हो रही है भाई, तो देखिए आज भी हमारे पास समय कम है, 11:30 बजे से हमें आपको स्टम्प्ड आप तक पहुंचाना है प्रोग्राम जो वीकली जाता है, तो इसलिए अब बस इतनी सी बात। कोई और मैसेज जो जनहित के लिए आप देना चाहते हो?
3: मैम बस यही कहना है कि बारिश में थोड़ा सा ध्यान रखें, और खासकर ये ध्यान रखें कि बच्चे जो है ज्यादा जब बारिश होने लगती है तो भीगने लगते हैं, तो उनको थोड़ा
0: बिल्कुल बिल्कुल
3: आदमियों को ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सभी को ध्यान रखें। थैंक यू सो मच मुनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये थे मुनेश कुमार राज, भानपुर हरुआ लखीमपुर खीरी से। देखिए जो नियमित श्रोता है ना, जो ईमेल्स भी भेजते हैं, फोन्स भी करते रहते हैं, तो उनके तो नाम पता भी हम लोगों को रटा हुआ है। दूसरी लाइन पर चेक करते हैं क्या कोई है। हेलो,
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं?
4: साहिबा अंसारी, मेहरागंज लखीमपुर खीरी से बोल रही हूँ।
0: जी कैसी हैं साहिबा और क्या कहना चाहती हैं, जल्दी से बताएं।
4: हम तो बहुत अच्छे, अपना बताइए।
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जल्दी से बिना समय गवाए हमें जल्दी से अपना मैसेज दीजिए।
4: हमारा संदेश ये है मैम, पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें, और मैम जैसे बाजार जाए तो अपना थैला ले करके जाए।
0: बिल्कुल,
4: पॉलिथीन इस्तेमाल भी करें, उसके बाद में ये ना करें कि उसको रोड पे फेंक दे गाय वगैरह खाए।
0: बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज। हाँ जी,
4: जो लोग दूसरे की शिकायत करते हैं वो शिकायत पे ना करें, करें अपना अपना काम क्या करें।
0: अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात कर ली हमने। और देखिए हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स हैं जो पिछले प्रोग्राम्स में भी आप आए थे और उन्हें हम शामिल नहीं कर पाए थे, और आज चूंकि इस प्रोग्राम का टाइम कम है तो चलिए कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी से हम ईमेल्स शामिल करें। और जिन लिसनर्स ने हमें मेल किया था सुगंध माटी की प्रोग्राम के लिए, और हमारी फूलमती भौजी भी हमें सुनते हुए जाएंगी तो ज़रूर वो सुनेंगी, उन तक भी बात पहुंच जाएगी, तो हम शामिल करते हैं मेल। नीलू शर्मा ने हमें मेल किया रूपपुर चंदेला से, अंजू जी और फूलमती भौजी को हमारा राम राम। अंजू जी के साथ फूलमती भौजी जब प्रोग्राम में आती हैं तो प्रोग्राम का मज़ा दोगुना हो जाता है। और पूजा दीदी को भी मैसेज करके बता दिया था, अच्छा क्या बात है। पीहू, स्नेहा, सोनी, रोशनी, बबीता, गुलाब दीदी, कौसर, पूर्णिमा, सभी लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, सबको हमारी तरफ से नमस्कार। और कह रही हैं कि माटी के सुगंध प्रोग्राम सुनते हैं तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, कार्यक्रम का अंदाज प्रेजेंट करने का लाजवाब। बहुत बहुत शुक्रिया नीलू। और सत्यमपाल जी ग्राम रफातपुर जिला मुरादाबाद से, कार्यक्रम मस्त लग रहा है, प्रस्तुति अच्छी लग रही है, और जो पहला गीत चलाया था उसका नाम क्या था? अच्छा ठीक है, अच्छा अगली बार से हम आपको लोगों को कलाकारों के नाम भी बताया करेंगे कि किन किन कलाकारों ने ये गीत गाया है। वकील अहमद जी ने लिखा है कि गुड मॉर्निंग, दोनों की आवाज़ अच्छी है, सुगंध माटी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, गौ नहीं अच्छी बज रही है, बारिश का इंतजार है धान लगाने के लिए, हमारे धूप बहुत तेज़ हो रही है। वकील अहमद जी ने हमें ज़िला सीतापुर से मैसेज किया था, बहुत बहुत शुक्रिया। और गुलफशर सिद्दीकी ने भी नमस्ते भेजा था हमें संडीला से, कार्यक्रम की तारीफ आपने भी की है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी इनको याद आ गया था, काश ये मेल हम उस प्रोग्राम में शामिल कर पाते। देखिए कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, हम बहुत सारी

तैयारियां करके आते हैं। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरे पिटारे में जो जो चीजें होती है ना, आधा झोला तो हम वापस लेके जाना पड़ता है, बस हम आधा ही आप तक प्रस्तुत कर पाते हैं, पहुंचा पाते हैं, क्योंकि जब समय बहुत तेजी से भागता है, पता नहीं हमारे स्टूडियो की घड़ी ज्यादा तेज चलती है या क्या ही कहें, पता ही नहीं चलता है, मतलब कुल मिला के प्रोग्राम कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। और गुलफ्शा ने अकड़ बकड़ बम्बे वो किया दिलाई, वाह। अच्छा, मुनेश कुमार जी से अभी अभी हमारी बात भी हुई है और पिछले प्रोग्राम की इन्होंने तारीफ भी की। पिछले प्रोग्राम में ये जो मेल आया था, घंटी मंटी जो सुनवाई, बहुत अच्छा लगा घंटी मंटी। और इन्होंने अंदाज़ की भी तारीफ की, बोलने की एकदम देसी अंदाज़ में गाँव घर की बात हम लोग करते हैं तो इनका मन गदगद हो जाता है। और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने लिखी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और वकील अहमद जी का मेल मैं शामिल कर चुकी हूँ और नेक्स्ट मेल था विजय सिंह दीपू का, और ये भी बहुत अच्छी अच्छी बात कह रहे हैं। धान रुपाई का गीत उनको अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आशा पांडे जी का भी मेल आया, राधे राधे आपको भी। इस बार का सुगंध माटी का प्रोग्राम अमरावती से नहीं, विंध्याचल उत्तर प्रदेश से सुन रही हूँ, क्या बात है, वाह। विंध्याचल आए थे दर्शन करने, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और गाड़ी में बैठ के आप लोगों का प्रोग्राम सुन रही है। तो आशा जी, जय माता दी, हमारी तरफ से भी हाजिरी लगा दीजिएगा माता जी के दरबार में। और मोहम्मद आसिफ जी का भी मेल पढ़ लेते हैं, और इन्होंने लिखा है कि काले बादलों को देख खिले किसानों के चेहरे, बारिश की बूंदों से सज गए गाँव के सवेरे। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं और प्रोग्राम की तारीफ आपने भी की है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तारीफें आप लोग लिख कर भेज देते हैं। देखिए, जब मेहनत करके प्रोग्राम करो और आपको पसंद आए तो बस समझ लीजिए कि हमारी मेहनत सफल हो गई, साकार हो गई। बाबू अंसारी जी देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं और रेडियो की फोटो इन्होंने भेज दी है। मुझे लगता है ये गाड़ी में सुन रहे हैं या कहीं जहां भी ये रेडियो लगा हुआ है, 100.7 की फ्रीक्वेंसी हमें दिख रही है इस पर, क्या बहुत खुश हो जाते हैं हम ये जब भी देख लेते हैं तो। अच्छा, नाम लिखने की परंपरा को निभाते हुए उन्होंने कुलदीप गुप्ता, महेंद्र दीपन, फैज़ अंसारी, गुलशन गौश, मोहम्मद अंसारी, सबके नाम लिखे हैं और प्रोग्राम की तारीफ कर दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है एक बढ़िया से गाने की, उसके बाद बहुत सारे और ईमेल्स हैं वो भी आप तक पहुँचा दूँगी मैं, क्योंकि जब मेल्स जितने हमें मिल गए हैं वो पढ़ना ज़रूरी है। और देखते हैं, एक आध फ़ोन कॉल्स भी हम कोशिश करेंगे लेने की, ठीक है? तो बस हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। मैं आरजे अंजू शुक्ला आपके साथ, स्टेडियम।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
1: और भरोसा।
2: जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जिस पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एक लिस्नर है, उनसे बात करते हैं। हेलो।
5: हेलो मैम, नमस्ते।
4: नमस्ते, बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी, थोड़ा सा तेज बोलिए या थोड़ा फोन के स्पीकर को अपने मुंह के और पास लेकर जाइए। जी बताएं। ओके अल्तमश, क्या कहना चाहते हैं हमारे बाकी लिस्नर से जो आपको सुन रहे हैं?
5: मैम हम ये कहना चाहते हैं, जैसे हम लोग नई नई जगह जाते हैं, पार्क जाते हैं, तो हमें ना मैम फोटो खींच लेनी चाहिए ताकि हमारी यादें बनी रहे और परिवार के साथ भी फोटो खींच लेनी चाहिए।
4: क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है, और ख़ास तौर पर सिर्फ रील या सेल्फी के चक्कर में ना रहे, परिवार के साथ और उन जगहों के साथ अच्छी सी फोटो लें ज़रूर।
5: मैम नाम लेना चाहते,
4: लेकिन इस प्रोग्राम में नाम लेना का कोई तुक नहीं है, है ना, कोई डेडिकेशन वाला प्रोग्राम नहीं है। हाँ बताएं।
5: मोहम्मद फैज हैं, और तालिब अंसारी हैं, बाबू अंसारी हैं, मोहम्मद आसिफ भाई हैं, वारिस अली भाई हैं।
4: चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अल्तमश। तो भाई ये तो थे अल्तमश, और इस तरफ हमारे पास बहुत सारे लोग आ गए। भाई क्या बताएं, जल्दी जल्दी से कुछ मेल पढ़ते हैं, क्योंकि 11:30 बजे से आपको आप तक पहुंचाना है स्टम्ड प्रोग्राम, जो आप दिल्ली से सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। और अरुण कुमार जी का मेल है, अरुण कुमार कुशवाहा घमोइया हरदोई से, इन्होंने हमको और फूलमती मौजी को राम राम भेजा, प्रोग्राम की तारीफ की, और थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मोहम्मद आसिफ जी ने कहा, काले बादलों को देख खिले किसान के चेहरे, आपका मेल हम शामिल कर चुके हैं आसिफ जी, दोबारा मेल आपने किया। राजकमल यादव जी ने कहा, ग्राम बरेया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से प्रणाम भेजा, प्रोग्राम की तारीफ लिखी, इनकी 4 साल की बेटी शालिनी यादव घाघरा पहनकर डांस कर रही है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मेल किया। इसके अलावा कुलदीप गुप्ता जी ने भी भौजी को भी सादर चरण स्पर्श भेजा, हफ्ते भर का फुल डोज मिल गवा है हमारे साथ, और दुकानदार आपकी प्रस्तुति सुनता है, और गुड्डू करौजिया जगजीवन गौतम कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच कुलदीप जी धौली बाराबंकी से। और कोमल तिवारी ने भी गुड मॉर्निंग भेजा सिर्फ और कुछ नहीं लिखा। गीता जी ने अंजू दिदिया और जिज्जी का राम राम प्रोग्राम एकदम सनसनउआ रे दैया, मतलब एक अलग डिक्शनरी बनानी पड़ेगी आप लोगों के, जो वर्ड्स हैं हन हनउआ, झमझमउआ, सनसनउआ, वाह गौनाई तो जबरदस्त की तारीफ कम पर जाई। हाँ मेहनत करते हैं भाई हम लोग, मेहनत करते हैं सभी लोग। और विजयपाल यादव जी का भी मेल है,

इन्होंने भी लिखा कि दीदी कल से ही इंतजार था आपका, अब इंतजार खत्म हुआ, हम सभी लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं और सबके नाम लिखे इन्होंने जो जो लोग सुगंध माटी की प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, सबको धन्यवाद भेजा। विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा, रिचा, गुड़िया, सुरभि और सब हमें सुन रहे थे। ग्रामवा पोस्ट ललहुआ, जिला लखीमपुर खीरी से जी। ईमेल छूटा नहीं, देखिए आपने लास्ट में दूसरे मेल में लिखा कि हमारा ईमेल छूट गया। देखिए मैं जब यहाँ पे होती हूँ ना, निश्चिंत रहा करिए, अगर इस प्रोग्राम में पिछले प्रोग्राम में छूट गया तो ये वाला जो मेल्स वाला प्रोग्राम है इसमें हम शामिल कर लेते हैं। और कई बार तो मैंने जो गुड मॉर्निंग लखनऊ में मुद्दे पर मेल्स छूट जाते हैं वो भी शामिल करते हैं, जैसे कि आज भी कुछ मेल छूटे हैं, अभी मैं पढ़ती हूँ उन्हें। नजीम रायन जी ने भी हेलो भेजा है हमें, ये दिल्ली से हमें सुन रहे हैं। प्रमोद कुमार जी ने भी गुड मॉर्निंग भेजा फिर से, और इनका संदेश है अपने ज्ञान या धन पर घमंड करने से बचें क्योंकि ये स्वभाव को दूषित करता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। रामराज जी ने भी हमें रायबरेली पहाड़ीपुर से सुन रहे हैं, और रामराज, राजू भानु, रामचरण, प्रजापति, पप्पू, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले इन्होंने नमस्कार भेजा। संदेश है कि धूप बहुत हो रही है, बाहर निकले तो छाता लेकर निकले, धन्यवाद। और इसके अलावा बहुत सारे और भी ईमेल्स हैं, और हमारे साथ कुछ और भी श्रोता जुड़े हुए हैं जो फ़ोन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं। सबसे मैं ये कहूँगी कि अब आप 11:48 के बाद फ़ोन करिएगा, हो सकता है एक आध कॉल हम ले लें। ईमेल्स तो मैं ज़रूर शामिल करूंगी सभी के। फिलहाल अब एक बारी है इस प्यारे से ट्रैक की, और उसके बाद ठीक 11:30 से आप सुनेंगे स्टम्प्ड हमारे दिल्ली केंद्र से, लेकिन उसके तुरंत बाद मैं अर्जुन शुक्ला वापस आऊंगी इसी प्रोग्राम में, आप तक पहुंचेंगी आपकी बातें, संदेश आपके गीत हमारे के जरिए। स्टे ट्यून्ड।

0: to sort of protect him, given the way the ball's nipping around and he's so young?
1: I don't know about protection, but I think they made the right decision by not blooding him in Ireland under very different conditions. Because had he, God forbid, failed in those two matches, there would have been a lot of talk about how he's not ready and about how he's an IPL bully and so on and so forth. So I think for his reputation, Gautam Gambhir did really well. Although all of India was saying, why not? You take him all the way, you got to play him because he's the new big new sensation. But I do think that little bit of delay is likely to do him good. I think overall a good decision because he, for him, so much is new. And I think there's this whole cocooning as well. His parents have gone with him and he's in a different room and a different, what's it called, a dressing room now for him and all sorts of other conditions. I think he would have been underprepared and maybe a shade overwhelmed. I shouldn't speak for him, but I think they did very well not to blood him straight away in Ireland under very different conditions.
2: Well, that's all we've got time for on this week's Stumped on Akash Varney. Don't forget to follow us on X. We're at BBCWS Sport and use the hashtag BBC Stumped. And check us out on YouTube by going to the BBC World Service YouTube channel. Thanks to Chari Sharma and Jim Maxwell and to all of you for listening. Speak to you soon. Bye-bye.
3: Stumped is a BBC Sport production for the BBC World Service in association with ABC and Akash Varney.
4: जिंदगी बहुत कीमती है उससे तो सस्ता ही है
5: मैं आशुतोष राणा मैंने जाना फिर ये माना आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक
6: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो
7: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
8: वेलकम बैक फ्रेंड्स 100.7 एफएम रेनबो ट्यून किया है आप सभी ने जिस पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे इश्क का तो पता नहीं मगर जो तुमसे है वो किसी और से नहीं और ये इश्क आप सब जाहिर करते हैं अपने ईमेल्स और फोन कॉल्स के जरिए और कुछ लोग तो इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि क्या ही बताएं कई बार उनसे कहा जाता है कि बस थोड़ा सा सब्र कर लिया करिए औरों को भी मौका दीजिए लेकिन उनकी मोहब्बत सराखों पर और हमारी अपनी बाध्यताएं भी अब क्या ही कहें उसको आप सराखों पर रख लीजिए कि हमारी मजबूरियां हमें इंस्ट्रक्शंस हैं या हमें बहुत सारी चीजें हम फील करते हैं और उसका सामना हमें करना पड़ता है आई होप आप उसको समझ पाएंगे कि जब वही वही नाम वही वही श्रोता हर प्रोग्राम में अगर फ़ोन करेंगे तो मुझे लगता है कि बाकी जो श्रोता हैं वो हमसे दूर हो जाएंगे जो हमें फ़ोन करना चाहते हैं लेकिन उनकी बात नहीं हो पाती है और अच्छा कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोग्राम में हैं हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त और फ़ोन लाइन देखिए ब्लिंक हो रही है तो हम फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं ना तो कुछ लोग कहते हैं हमारा फ़ोन नहीं उठाते कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत दिनों से बात नहीं की जबकि सुबह और शाम दो फोन इन प्रोग्राम्स आते हैं और हम भी प्रोग्राम्स सुनते हैं हमें मालूम होता है कि किसकी कॉल्स आ रही हैं किसकी नहीं आ रही हैं तो बस कुल मिलाकर मेरी कहने की का मतलब ये है कि जो चिर परिचित श्रोता हो चुके हैं जो एफएम रेनबो के माध्यम से बहुत सुप्रसिद्ध हो चुके हैं जैसा कि आप लोग चाहते थे और बहुत लोग आपको जानते हैं आपकी आवाज़ से पहचान जाते हैं कि हाँ आपका ही कॉल है तो प्लीज़ आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए 15 दिन महीने भर का ब्रेक लीजिए चुपचाप बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए और भी लिसनर्स को जुड़ने का मौका तो दीजिए ना फिर देखिए कि आपका रेनबो कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है ना तो बस सबकी बातें शामिल होनी चाहिए और इसी के साथ अब जो ईमेल्स आए उनको हम शामिल कर लेते हैं क्योंकि बहुत मेहनत से हमारे लिसनर्स हमें मेल करते हैं और जब वो टाइप करते हैं तो वक्त निकालते हैं फ़ोन मिलाने भी के लिए भी वक्त निकालते हैं जाहिर सी बात है लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम सबको शामिल कर सकें और हमारे सामने मेल है हिंदुस्तानी ब्रह्मेश जी का ये पिंकू सोनी जी हैं टिकैत नगर बाराबंकी से और इन्होंने संदेश के तौर पर कहा है कि जो लोग रोड के किनारे दुकान लगाते हैं और हम उनसे खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि उनके पास किराए की दुकान लेने के लिए पैसे नहीं होते कृपया ज़रूर इस बात का ध्यान दें लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि ऐसी जगह दुकान लगाए जहाँ पर नगर निकाय के द्वारा स्थान नियत किया गया हो है ना कहीं पर भी अगर आप दुकान लगाते हैं तो उससे आवागमन बाधित होता है और बहुत सारी चीज़ें जो शहर की खूबसूरती है वो भी चली जाती है मेरा तो ये मानना है और जब जो खाली स्थान होते हैं जैसे जो नगर निकाय स्थानीय निकायों ने स्थान निर्धारित किए हैं पटरी दुकानदारों के लिए वहाँ आप लगाते हैं दुकानें तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना बहुत बहुत शुक्रिया आपके मेल के लिए मोहम्मद आसिफ जी का भी मेल आ गया है और देखिए आपका मेल हम पहले भी शामिल कर चुके हैं आपने दो तीन बार मेल किया है तेलंगाना से आप हमें सुन रहे हैं असली दौलत आने वाले कल की है चलो आज मिलकर ये फ़र्ज़ निभाएं पेड़ लगाने की बात इन्होंने कही है प्रकृति की गोद में तुमने एक नया धाम

किया है, आने वाली नस्लें तुम्हें दुआएं देंगी, तुमने जो ज़मीन पर जन्नत का इंतज़ाम किया है, क्या बात है। बिल्कुल, जन्नत से कम नहीं होता है। एक पौधा लगाना और उसको बड़ा करना बहुत ही नेक काम है और इसको सबको करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मोनू जी का भी मेल आया है, 7 जुलाई को उन्होंने अपने जन्मदिन पर कहा है कि 7 पौधे लगाएंगे, क्या बात है। 7 नहीं 70 लगाइएगा, 700 लगाइएगा और सबको बड़ा करिएगा, जामुन आम नींबू सब। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेजी हैं। वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। श्रद्धा सिंह का मेल है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। ओके, इन्होंने दिल्ली से मेल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो। जावेद अख्तर जी ने भी हमें मेल किया है और प्रोग्राम इन्हें पसंद आ रहा है। मोबाइल ऐप पर सुबह से बंद होने के कारण हम प्रोग्राम नहीं सुन रहे। भाई बड़ी देर में आपने ये मेल हमें भेजा। अच्छा, ये मेल 3 जुलाई का। देखिए, आप नया मेल ड्राफ्ट किया करिए ना, उसी उस पर जाके आप मेल करते हैं तो दिक्कत आती है हमें। हमारे सामने आपके पुराने ईमेल्स पहले खुल जाते हैं और आज वाला मेल नीचे चला जाता है। ठीक है जावेद अख्तर जी, आप हर रोज़ जब भी मेल भेजें तो आप नए सिरे से मेल ड्राफ्ट किया करिए। ओके, गुड मॉर्निंग भेजा इन्होंने, सुगंध माटी की कार्यक्रम में जी मेल नज़रअंदाज नहीं किया गया था, वक्त कम था और बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंचानी थी, मज़ेदार चीज़ें पहुंचानी थी, जिसका सबको जो सबको पसंद भी आया, सबने तारीफ लिखकर भेजी, बहुत बहुत शुक्रिया। और रेशमी नगरी मुबारकपुर से आप हमें मेल कर रहे हैं। इसके साथ साथ वकील अहमद जी, आपका मेल मैं शामिल कर चुकी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक कुमार जी रायपुर से, रायपुर उदारा मितौली लखीमपुर खीरी से सुन रहे हैं, सॉन्ग्स अच्छे लग रहे हैं। और इन्होंने भी यही संदेश लिखा है कि अपने आसपास खाली जगह पर पेड़ पौधे लगाइए, उनकी देखभाल करिए, हरियाली से वातावरण शुद्ध और सुंदर रहता है। सार्वजनिक स्थानों, सड़क या पार्कों में या दीवारों पर न थूकें, गंदगी न फैलाएं। नीरज कुमार जी ने भी मेल किया है। अच्छा, ये रिंकी पिंकी है, गुड मॉर्निंग भेजा है और हमारा मैसेज में ही फ़ोन इन कार्यक्रम बंद कर दिया जाए। बिल्कुल ये सही बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तो इन्होंने कहा कि हमने कॉल करना छोड़ दिया है, फिर भी उनको चैन नहीं मिलता है। चलिए कोई नहीं, बहुत चीज़ें आपने लिखकर भेजी हैं रिंकी पिंकी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कल रात में हेलो एफएम में आपकी बात हो रही थी। और आप जब ये लिखकर भेजते हैं आप लोग कि हमने कॉल करना छोड़ दिया, या जिसका कॉल लग जाता है वो कहते हैं नहीं हमारी बहुत दिनों से बात नहीं हुई, तो अब हम आप लोगों से क्या कहें, आप लोग खुद समझदार हैं। कुलदीप गुप्ता जी, परिपक्वता क्या है? अरे आपने तो निबंध लिखकर भेज दिया भाई, जिसे पढ़ने का हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप गुप्ता जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने लिखकर भेजी हैं, ऐसे ही सुनते रहिए। नजीम रैन जी ने भी लिखा है, रेडियो मेरे जीने का सहारा है, शुक्रिया आप लोगों का और अच्छा प्रोग्राम करने के लिए, थैंक यू। तेज बहादुर यादव जी ने लिखा है, आजकल बदलती दुनिया में परिवार में अलगाव बहुत होता है, जिसमें दादा दादी बच्चों को आपस में वो प्यार नहीं मिल पाता जो पहले के समय में मिलता था, और ये रायबरेली आ रहे हैं आज शाम को। थैंक यू सो मच बच्चों को लेने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुनेश कुमार जी से हमारी फ़ोन पर बात भी हो गई थी। और पिंकू सोनी जी, आपका मेल मैं ऑलरेडी शामिल कर चुकी हूँ। नागेश कुमार जी लिखते हैं, धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। अच्छा, तो इन्होंने बहुत सारे टिप्स दिए हैं। किसान भाई, जिंक सल्फेट छिड़काव करें, खेत में संतुलित पोषण और जल प्रबंधन रखें, देसी उपाय के लिए के रूप में सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें, थैंक यू सो मच। और इन्होंने देखिए वही बात कही, फोन उठा लिया करें भाई, जब इधर कंप्यूटर पे आप लोगों के मेल पढ़ रही हूँ तो वहां से फोन कैसे उठा पाऊंगी, है ना। सीतापुर उत्तर प्रदेश उमरी से आपने हमें फोन किया, थैंक यू सो मच। वारिस जी ने भी लिखा है कि पिछला प्रोग्राम बहुत पसंद आया और कहते हैं कि एक पेड़ न जाने कितने जीवों का घर होता है, इसलिए सभी को पेड़ लगाने चाहिए, हमारे लिए अनमोल है। संजय नगर ऐशबाग से आपका ईमेल आया है। तो बस इन्हीं बातों के साथ कि आप लोग हमें भी समझेंगे, 100.7 FM रेनबो के आरजेस की बात भी समझेंगे, और ये जो नाराजगी और ये ताने वाने सुनाने की बात है ना, तो भाई देखिए मेरे प्रोग्राम में तो ये नहीं चलेगा। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, बस ऐसे ही 100.7 FM रेनबो के प्रति अपना प्यार बनाकर रखिए। ईमेल्स सबके शामिल होते हैं, एक प्रोग्राम में बस एक मेल करें और हर प्रोग्राम में मेल करें, ईमेल्स जरूर शामिल होंगे, लेकिन फोन कॉल्स के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया करिए, ठीक है। आप लोग बहुत फेमस हो चुके हैं आई नो ना, लेकिन यहाँ पर मुझे भी 24 साल हो गए हैं, तो जो जो बातें आप लोगों ने लिखकर भेजी या फ़ोन पर जो बातें अभी मुझसे हुई हैं, बहुत सारे नियमित श्रोताओं के, क्योंकि इसीलिए मैंने फ़ोन कॉल्स आज बहुत कम लिए, 3 ही फ़ोन कॉल्स आज लिए गए, वैसे भी स्टम्प्ड प्रोग्राम आप तक तो पहुँचाया गया तो इसलिए वक्त भी कम मिला इस प्रोग्राम में। लेकिन भाई देखिए ये जो चीज़ें होती हैं, हम लखनऊ से हैं, 100.7 FM रेनबो लखनऊ की धड़कन है, लखनऊ की पहचान है, तो तहजीब और संस्कार हमारे सभी आरजेज में है। आप प्यार से रहिए, प्यार से सुनिए, हम बहुत सारा प्यार आपको देंगे। तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। मैं अंजू चलती हूँ, मुलाकात होगी आपसे इसी चैनल पर किसी और दिन, और ये प्यार का सिलसिला हमेशा यूं ही बरकरार रहेगा। अगले कुछ घंटे रहेंगे

नमस्कार, दोपहर के 12 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया। श्री नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं। उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक स्वागत मंच बनाए गए हैं, जहां पार्टी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उनका स्वागत करेंगे। अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर श्री नवीन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की राष्ट्रवादी, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा देने वाले महान संत, राष्ट्र ऋषि स्वामी विवेकानंद का तपस्वी जीवन करोड़ों युवाओं को अपने राष्ट्र, संस्कृति और कर्तव्य के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है।

राजस्व परिषद के न्यायालयों में अब किसी वाद में अभिलेख तलब के लिए किए जाने पर मूल अभिलेखों की जगह संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। प्रभाव से लागू की गई है। इसे मूल अभिलेखों के बार बार एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने की आवश्यकता कम होगी, जिससे उनके क्षतिग्रस्त होने और देरी से उपलब्ध होने जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 15 जुलाई तक प्रदेश भर में मिशन सेफ फ्यूचर अभियान चला रहा है। इसी क्रम में अमरोहा में स्कूली वाहनों की सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। आरटीओ परिवर्तन मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियान के दूसरे चरण में 8 जुलाई से 15 जुलाई तक विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाली स्कूली वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। चित्रकूट में ग्राम पंचायत कोटवा में मोहना नदी के जीर्णोद्वार कार्य का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि जिला खनिज फाउंडेशन की लगभग 74 लाख रुपए की लागत से संचालित इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 15 किलोमीटर लंबी मोहना नदी पर का जीर्णोद्वार किया जा चुका है। कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण और श्रमदान कर जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन व जन भागीदारी का संदेश दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: हेलो दोस्तों, 12:09 हो चुके हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। शनिवार का दिन यानी कि फैमिली स्पेशल एपिसोड शुरू हो चुका है। जी, आप हैं मेरे यानी हर्षा के साथ और आज हम कुछ खास फैमिलीज के बारे में बात करने वाले हैं। फैमिली स्पेशल वाले दिन, स्पेशल फैमिलीज की बात, सही है ना? तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे यानी हर्षा के साथ ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो। बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, बहुत सारी बातें बतानी है आपको, लेकिन सबसे पहला रूल हमारा, वो तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। फैमिली फन कैसे होता है? गाने उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए ना, एक प्यारा सा गाना फिर से आपके पास भेज रही हूँ, थोड़ी सी देर में वापस आती हूँ कुछ बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग बातों के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। जी 12:15 हो रहे हैं, वेलकम बैक दोस्तों। इस गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है फैमिली स्पेशल एपिसोड ऑफ सैटरडेज में। जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको बहुत सारी स्पेशल फैमिलीज़ के बारे में बताऊंगी, तो क्यों ना हम लोग जल्दी से शुरुआत करें, देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना हम उन फैमिलीज़ के बारे में जाने जिन्होंने बैंकिंग और कॉमर्स सेक्टर में, कॉमर्स की इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया। और जब भी हम बैंकिंग और कॉमर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें याद करना चाहिए रॉथचाइल्ड फैमिली को। जी आपको बताना चाहूँगी कि ये एक बड़ी ही स्पेशल फैमिली है। देखिए 18वीं सदी में जर्मनी में सबसे पहले उन्होंने बैंकिंग नेटवर्क बनाया, और दोस्तों बैंकिंग नेटवर्क बनाया ही नहीं देश में ही नहीं बल्कि अंतर

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनली अपना नेटवर्क इतना मजबूत किया उन्होंने कि बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं में उनकी फंडिंग के बारे में बात की जाती है। जी, ग्लोबल फाइनेंशियल पावर थी रॉथचाइल्ड फैमिली। और इसी के बाद एक और फैमिली है, जब भी हम बैंकिंग और कॉमर्स सेक्टर की बात करते हैं तो इनको हम ज़रूर याद करते हैं। अब देखिए ना, नेक्स्ट बिलियनियर फैमिली जो है ना, उसका जब मैं नाम लेती हूँ, उन्होंने तेल की दुनिया में, जी ऑयल इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया, और मैं बात कर रही हूँ रॉकफेलर फैमिली की। और अगर आप थोड़ा सा भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपने ज़रूर उनका नाम सुना होगा। यू नो व्हाट, सबसे पहली फैमिली थी वो, जी हाँ, विश्व की सबसे पहली फैमिली थी जिन्होंने तेल के व्यापार से बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा ऊपर का व्यापार किया। तो फैमिली फन के साथ जब फैमिली में साथ ही में एफर्ट्स भी डाले जाते हैं तो देखिए क्या से क्या हो सकता है। तो ऐसे ही आज खूब सारी बढ़िया बढ़िया और मोटिवेशनल बातें करेंगे। तो मैं लौटती हूँ प्यारे दोस्तों थोड़ी सी देर में, लेकिन जानते तो आप लोग हैं ही, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है खूब सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ खूब सारे प्यारे प्यारे गाने सुनना और ख़ुद को इंजॉय करना। तो ऐसे ही इंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो पर। आप हैं मेरे यानी हर्षा के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: ऐसे हौले हौले समय बीता जा रहा है। 12:26 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं फैमिली स्पेशल एपिसोड मेरे यानी हर्षा के साथ। अच्छा, अभी अभी हम लोग बहुत ही स्पेशल फैमिलीज के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने बैंकिंग और कॉमर्स सेक्टर की कुछ फेमस फैमिलीज के बारे में बात किया, जैसे कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली और रॉकफेलर फैमिली। अब उसी से कनेक्ट करते हैं और चलिए कुछ मॉडर्न फैमिलीज और मॉडर्न वेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं और जानते हैं कि इस क्षेत्र में किन्होंने अपना नाम किया, किन्होंने अपने आप को एक बड़े ही तगड़े मुकाम पर पहुंचाया।

जैसे कि सबसे पहले हम याद करते हैं वॉल्टन फैमिली को. यस, वॉल्टन फैमिली दोस्तों, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा रिटेल स्टोर फ्रेंचाइज खोला. देखिए, जैसे किराने की दुकान होती है ना, बिल्कुल वैसे ही किराने की दुकान. लेकिन किराने की दुकान को अगर आप 100 times, 1000 times और ज़्यादा बड़ा कर दें, और आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. और अगर नहीं भी समझे हैं तो थोड़ा सा आप भी सर्च कर लीजिएगा वॉल्टन फैमिली के बारे में. और अगर आप कभी ये सोचते हैं ना कि अमेरिका की रिचेस्ट फैमिली कौन सी होगी, आप हमेशा सोचते होंगे कि ज़रूर बिल गेट्स की फैमिली होगी, ज़रूर इलॉन मस्क की फैमिली होगी. नो नो नो नो नो, इलॉन मस्क सबसे रिचेस्ट इंडिविजुअल तो है, लेकिन अगर फैमिली की बात की जाए तो अमेरिका की रिचेस्ट फैमिली है यही वॉल्टन फैमिली. और कैसे? इस फ्रेंचाइज के जरिए. यस, इस रिटेल स्टोर फ्रेंचाइज के जरिए उन्होंने अपनी दौलत कमाई. और अगर हम इंडिया की बात करें, अब क्यों नहीं, हमारे इंडिया में भी तो कुछ कम लोग नहीं है. बिल्कुल, अंबानी, अडानी, टाटा फैमिली, ये सभी, इनके नाम तो घर घर पे हर किसी को पता ही होते हैं. सभी ने बिजनेस में यानी कि व्यापार में अपना नाम कमाया और इतनी बड़ी डायनेस्टी खड़ी कर दी. तो ऐसे ही फैमिली के साथ, जब अपने परिवारजनों के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, जब सब लोग अपने गोल्स को कंबाइन कर लेते हैं, तो सफलता के चांसेस कई कई कई गुना बढ़ जाते हैं. डोंट यू एग्री? वैसे इस बारे में हम और बातें ज़रूर करेंगे, लेकिन अब इतनी सारी बातें मैंने ऑलरेडी कर ही दी हैं, तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है एक प्यारा सा गाना सुनने का. तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना. और ज़रा आप सलमान खान जी को भी तो एक बार सलामी दे दीजिए. मैं तो देती हूँ हर एपिसोड में, हर शो में मुझे एक बार सलमान खान सर का गाना ज़रूर प्ले करना होता है. तो देखिए, तो ये वाला गाना आपको कितना पसंद आता है.

Yes, love will find a way. That's right. और जहाँ family है वहाँ तो प्यार होता ही है. Family episode special में आप सुन रहे हैं मुझे यानी हर्षा को only on 100.7 FM Rainbow. दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल फैमिलीज की जो हम सभी के मन में इंस्पिरेशन थोड़ी सी मोटिवेशन जगाएंगी मुझे ऐसा लगता है. और हमने कई सेक्टर्स में कई बड़ी फैमिलीज को उनके बारे में बात की है उनके ऊपर गौर किया है. और ज़रा बिजनेस फैमिलीज और वेल्दी फैमिलीज इन सब से मॉडर्न वेल्थ वाली फैमिलीज इन सब से ज़रा हट कर क्यों ना हम एंटरटेनमेंट जगत की तरफ देखें. एंटरटेनमेंट ग्लैमर की दुनिया में अगर आप ध्यान से सोचें तो कौन कौन सी फैमिलीज आपको याद आती हैं. देखिए वैसे तो बहुत सारी फैमिलीज हैं जो बहुत पॉपुलर हैं लेकिन अगर एक फैमिली जिसका लोहा सब मानते हैं उसका नाम लिया जाए तो वो है कार्डाशियन फैमिली. क्या आप कार्डाशियन नाम को पहली बार सुन रहे हैं या आपने पहले भी कभी इनका नाम सुना है. दोस्तों ये एक अमेरिकन फैमिली है अमेरिका का एक परिवार है जिसने उनका एक बहुत बड़ा परिवार था राइट. तो उन्होंने अपनी नोक झोंक को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को टीवी पर प्रसारित कर दिया. जी उनकी फैमिली में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ और उन्होंने उस पर शर्मसार

करने की जगह, उस पर संकोच करने की जगह उन्होंने सोचा क्यों नहीं, जब सभी लोग हमारे कलेश में इतना इंटरेस्ट ले ही रहे हैं तो फिर चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आपको अच्छे से अब अच्छे से डिज़ाइन करके बताते हैं कि हमारी फैमिली में क्या चलता है। और बस यही, इसी तरीके से उन्होंने अपनी फैमिली के एवरीडे ड्रामास को मोनेटाइज कर लिया और उन्होंने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए इसी से कमा लिए। जी हाँ, उनका एक अपना टीवी शो है, कार्डाशियन फैमिली का एक अपना टीवी शो है और उसी टीवी शो से उन्होंने इतना कमाया, इतना वेल्थ कमाई कि अब उनके पास कई सारे सेपरेट बिजनेस है। इनफैक्ट इतनी बड़ी फैमिली है लेकिन तब भी हर मेंबर, हर सदस्य के पास अपना खुद का बहुत बड़ा करोड़ों का बिजनेस है। तो देखिए ना, अगर कोई आपके आपके आपकी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो उसको भी, यू नो, कहते हैं ना कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन टर्न इट इनटू अ लेमोनेड, जब जिंदगी आपको नींबू देती है तो उसका नींबू पानी बना लेना चाहिए। फनी चीज़ है लेकिन सच भी है, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे आपको घुमा के अपने लिए उसको पॉजिटिव करना है, अपने लिए उसको सकारात्मक करना है, ये आपके हाथ में है। और दिमाग लगाने के लिए आप सिर्फ अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा क्यों लगाएं, पूरे परिवार का साथ लीजिए, क्योंकि जब परिवार का साथ होता है तो सबका विकास होता है। वाह वाह वाह वाह वाह, मैंने भी क्या वज़नदार बात की है। तो अब इसी वज़नदार बात पर, इसी शानदार बात पर एक जानदार गाना भी हो जाना चाहिए। तो चलिए आप सुनते हैं ये प्यारा सा गाना सोनू निगम जी की आवाज में, और प्यार से बड़े ही अच्छे से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं ये एपिसोड का ये वाला प्यारा सा गाना।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी 12:53 हो चुके हैं, आप सुन रहे थे बड़ा ही प्यारा सा गाना तेरी ओर। अब लेकिन समय हो चला है इस शो को अनफॉर्चुनेटली रैप अप करने का। तो आज हम लोगों ने खूब सारी फन बातें की, खूब सारी इंस्पिरेशनल बातें की, और हमने जाना कि अगर फैमिली के सभी लोग एक साथ एफर्ट्स डालते हैं तो फन तो तिगुना हो ही जाता है, लेकिन तरक्की भी चौगुनी हो जाती है। क्यों, आपको क्या लगता है? तो बस इसी तरीके से अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ते रहिए। कॉमन गोल्स अगर आप रखते हैं तो ज़रूर आपको तरक्की बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिलती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलती है। और अगर फेलियर्स भी आती हैं तो उसको भी एक दूसरे के सहारे हम बड़ी आसानी से झेल ले जाते हैं। तो बस इसी तरीके से अपने फैमिली को चेरिश करते रहिए। फैमिली के साथ एवरीथिंग इज़ सो मच मोर ब्यूटिफुल, सो मच मोर अमेजिंग, और इसी बात की इम्पोर्टेंस हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। वैसे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज हमने बातें करी उससे एक बार फिर से आपको ये सारी बातें रिमाइंड हो गई होंगी। लेकिन अब समय हो चुका है इस प्यारे से शो को रैप अप करने का। लेकिन फिकर नॉट, कुछ प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, कुछ प्यारे से छोटे से प्यारे से गानों के बाद और न्यूज ब्रेक के बाद मिलती हूं मैं आपसे उस पार, यानी कि होटो पे तेरी बात नाम के एक ब्रांड न्यू शो के साथ। यस, होटो पे तेरी बात पे मैं और आप इंटरैक्ट करेंगे थ्रू ईमेल। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार 6 जुलाई को सदस्यों की बैठक बुलाई है। बैठक में ट्रस्ट द्वारा प्रदान दान की जांच कर रही विशेष जांच टीम के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह बैठक दोपहर 3 बजे मणिराम दास छावनी में आयोजित की जाएगी। बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्यागपत्रों पर विचार किया जाएगा। साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया। श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर श्री नवीन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। श्री नवीन प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। कल दोपहर वह प्रेरणा स्थल में शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उन्नाव में जिलाधिकारी घनश्याम मीना की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों से वृक्षारोपण अभियान और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बनाई गई कार्य योजनाओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधे लगाने और उनके संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि उन्नाव में 66 लाख पौधे लगाने की लक्ष्य है, जिसे जन भागीदारी के साथ पूरा किया जाए। आगरा मथुरा

इटावा और आसपास के जनपदों में आज कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई, हालांकि अधिकांश जनपदों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य की पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी जनपदों में उमस भरी गर्मी पड़ने और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान भी जताया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। जी मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो और होठों पे तेरी बात नाम का एक प्यारा सा शो शुरू हो चुका है। जी ये है एक इंटरैक्टिव शो जहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूं और आपको मुझे उसका जवाब देना है और जवाब देना है ईमेल के जरिए। तो मैं जल्दी से अपना सवाल तो पूछ लूं। सवाल आज का बड़ा ही सिंपल है क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है और बाजार में बहुत सारे आम आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आपको मुझे ये बताना है कि आपका फेवरेट आम का काइंड, आपका फेवरेट तरह का आम कौन सा है, आपको किस तरह का आम पसंद है, आपको चौंसा पसंद है, लंगड़ा पसंद है, या मेरी तरह दशहरी पसंद है, या कोई और आम पसंद है। और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि आम की मेडिसिनल क्वालिटी क्या होती है और कमर्शियल इम्पॉर्टेंस क्या होती है। जी व्यापारिक तरीके से और स्वास्थ्य के लिए क्यों आम ज़रूरी है, उसमें ऐसी क्या खास बात है, यही सारी बातें आज आपको मुझे बतानी है। अरे आम के बारे में सिर्फ हमें सिर्फ उसे खाना ही थोड़ी है, हमें उसके बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए। देखिए ना, आम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम लोग उसके बारे में सिर्फ उसके टेस्ट के बारे में ही बात करते हैं। तो आज हम लोग सब तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक प्यारा सा गाना सुनते हैं और 1:10 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें और उसके बाद में वापस लौटूंगी होठों पे तेरी बात शो के साथ। ईमेल आपको मुझे करना है FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर, याद रहेगा ना।

0: आम तवज्जो का मरकज रहे। इस दौरान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा,
1: हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए, ड्रोन और AI बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है।
0: वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर ज़रा शिवराज सिंह चौहान ने कल एक जायजा मीटिंग की, जिसमें अलनीनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों पर मामूल से कम बारिश और उसके असरात से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत अलनीनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों में मामूल से कम बारिश और मुमकिन खुश्क साली के हवाले से सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। उन्होंने वजारत ज़रात और तमाम मुतालिक वजारतों को हिदायत दी कि वो चौकस रहें और रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल कायम करें, ताकि किसानों को मुनासिब फसलों की बुआई के बारे में मशवरा दिया जा सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पीर 6 जुलाई 2026 को अपने अराकीन की मीटिंग बुलाई है, जिसमें कई अहम इंतजामी और माली मामलात पर तबादले ख्याल किया जाएगा, जिसमें ट्रस्ट को मिलने वाले एहतियात की गिनती की जाँच करने वाली खसूसी तहकीकती टीम SIT के नतायज भी शामिल हैं। 8 जून 2026 को जारी करदा एक सरकारी नोटिस के मुताबिक ट्रस्ट के सदर की मंजूरी से खजानची स्वामी गोविंद देवगिरी की तरफ से इजलास बुलाया गया है, क्योंकि इन मसाइल पर बहस और फैसले की जरूरत है। ये मीटिंग दोपहर 3 बजे मनी रामदास छावनी अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में होगी। एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से जमा कराए गए इस्तीफों पर गौर करना शामिल है। इस नोटिस में स्पीकर की इजाजत से किसी दूसरे मामले पर बहस का भी बंदोबस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट UPTET का दूसरा दिन कल पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। 3 रोज़ा इम्तिहानात के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। इम्तिहान के दौरान एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से AI कैमरों का इस्तेमाल करते हुए तमाम इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी की। कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि UPTET इम्तिहान के आखिरी दिन आज एक ही शिफ्ट में इम्तिहान लिया गया। और श्री अमरनाथ यात्रा कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल रास्तों से शुरू हुई। तीसरा जत्था हफ्ते की सुबह यानी आज जम्मू के भगवती नगर में वाकई यात्री निवास से रवाना हुआ। कल रियासत के कई इजला में भारी से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कुछ इजला में मरतूब गर्मी जारी रही। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मशरकी हिस्से के कुछ इजला में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। मगरबी इजला में गरज चमक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जी अभी अभी आप सुन रहे थे इलाकाई खबरें और अब एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं मेरे यानी हर्षा के साथ। ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है होठों पे तेरी बात। जी तो क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये एक बड़ा ही इंटरैक्टिव शो है जहां पर आप हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं थ्रू ईमेल, मैंने आपसे पूछा था एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल। मैंने आपसे पूछा था कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको आम की कौन सी काइंड पसंद है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी बताइए अगर आप को मेडिसिनल पर्पस के बारे में पूछा जाए या उसकी कमर्शियल इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा जाए, यानी कि व्यापारिक नज़रों से अगर देखा जाए आम को, या फिर अगर स्वास्थ्य

माध्यम से आम को देखा जाए तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किस लिए, क्यों वो महत्वपूर्ण है। और इसी बात का जवाब देते हुए ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आ चुके हैं और ईमेल्स हमारे लिसनर्स इतने परिपक्व हो चुके हैं ईमेल्स में और इतने रेगुलर लिसनर्स हैं कि वो अब कंबाइंड ईमेल भेजते हैं जी। वो आगे पीछे जितने सारे शोज़ हैं उन सब के बारे में जो कुछ भी उन्हें कहना है वो सब कुछ एक साथ मिलाकर भेज देते हैं। जैसे कि वारिस अली खान जी ने नेक्स्ट शो के लिए अभी से ही फरमाइश कर दी है, उन्होंने अपनी पसंद का अपने पसंद के गाने की रिक्वेस्ट भी भेज दी है और उन्होंने बहुत सारे लोगों का नाम भी लेने को अभी से कह दिया है, जैसे कि वारिस अली खान जी के साथ इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और शिव शरण सोनी जी। थोड़ा वेट कीजिए वारिस अली जी, ऐसे थोड़ी जब हम हॉटमेल पर आएंगे तो ज़रूर आपकी पसंद के गाने चलाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं सुधाकर जादव जी ने हमें क्या भेजा है। उन्होंने एक बड़ा छोटा सा हमें मैसेज भेजा है, उन्होंने कहा कि उन्हें लंगड़ा आम पसंद है और मार्केट से वो आम रस लेकर आते हैं और बनाते हैं, और बहुत सारे लोगों का नाम भी उन्होंने भेजा है। जाफराबाद से हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद साहिर जी, आपने हमें एक बड़ा लंबा सा मेल भी भेजा है और साथ ही साथ लास्ट में ये भी कहा है कि दीदी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ हमारे मेल को पूरा पढ़िएगा। अगर आपके इतने लंबे मेल को मैं पूरा पढ़ूंगी तो फिर मैं बाकी लोगों के मेल्स कैसे पढ़ पाऊँगी मोहम्मद साहिर जी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। आपका नाम सबसे पहले तो आपने आईडी मोहम्मद साहिर जी की लगाई, लेकिन आपका नाम है मोहम्मद फैज़, आप रामपुर कटरा से हैं और आपको आम सबसे ज़्यादा कौन सा फेवरेट है, दशहरी। जी जी जी, दशहरी आम आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट है और आपने बहुत सारे लोगों के नाम लिए हैं, जैसे कि सिद्दीकी मोहम्मद साहिर भाई, मोहम्मद सलमान भाई, मोहम्मद अमजाद भाई और पिताजी का नाम मुबारक अली जी। जी, आप सभी को नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और अब देखते हैं सुल्तान रजा जी, आपने क्या लिखा है। आपने लिखा है कि आपको लंगड़ा आम बहुत पसंद है और आप उसकी गुठली का भी अच्छे से उपयोग करते हैं और देसी रोटी के साथ जब लगा कर खाते हैं तो आपको सच में ऐसा लगता है कि वाकई आम फलों का राजा है। बिल्कुल, अगर घर में सब्ज़ी ना हो तो सिर्फ आप रोटी लीजिए, नमक लीजिए और आम काट के खाइए, देखिए कितना मज़ेदार लगता है, कितना अच्छा लगता है। अब देखते हैं, मोहम्मद आसिफ जी का भी मेल हमारे पास आ चुका है और उन्होंने कहा है कि उनको भी दशहरी पसंद है। वाह वाह वाह वाह वाह, दशहरी के बहुत सारे फैंस हैं, मैं भी दशहरी की फ़ैन हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। बिल्कुल सही, अब आए ना मुद्दे पर। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और विटामिन ए और सी से भरपूर होने के कारण त्वचा और आँखों की सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। और साथ ही साथ इतनी प्यारी सी बात कहने के बाद आपने रिक्वेस्ट की है कुछ नेम ले लीजिएगा। ओके ओके ओके, मैं नेम ले लेती हूँ। सजिया अंसारी, साहिबा अंसारी, समा अंसारी, अहमद नवाब, बबीता राव और रोशनी दीदी, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और देखते हैं तालिब अंसारी जी क्या लिख रहे हैं। तालिब अंसारी जी लिख रहे हैं कि सबसे पहले तो उन्हें दशहरी आम बहुत पसंद है और साथ ही साथ वो तुकमी आम, देसी भाषा में तुकमी आम कहा जाता है। अच्छा, देखिए ना, जब आप लोग इतने सारे प्यारे प्यारे मेल्स भेजते हैं तो मैं भी कुछ सीखती हूँ, मुझे ये बात नहीं पता थी लेकिन आपकी वजह से मुझे पता चली, उसके लिए थैंक यू। और साथ ही साथ आपने भी बहुत ही अच्छे से बताया है कि इसमें पौष्टिक तत्व बहुत सारे होते हैं और विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है। और साथ ही साथ लास्ट में क्वेश्चन भी लिखा है कि लंगड़ा आम जो है उसका नाम कैसे पड़ा। वाह वाह वाह वाह वाह, ये कितना बढ़िया और एक फनी सा क्वेश्चन है, अगर किसी को पता हो तो वो भी मेल कीजिए, ये भी आज के क्वेश्चन में कंबाइंड है। क्या बात है, इतने क्यूट क्यूट से फनी फनी सी बातें आप लोग भेजते हो, कितना अच्छा लगता है। तालिब अंसारी जी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा सा मेल करने के लिए। श्वेता सिंह जी, माई फेवरेट सफेदा, इसको बगन पल्ली भी कहते हैं। अच्छा, देखिए ना, मैं भी कुछ सीख रही हूँ। और उसके बाद आपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में इम्यून

इम्यूनिटी बूस्टर, आई हेल्थ, विटामिन ए रिच, एनरिच्ड हार्ट हेल्थ और बेटर डाइजेशन, इन सब के बारे में आपने लिखा है और साथ ही साथ इसकी कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस भी लिखी है। कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस को जताने वाला पहला ईमेल हम तक आ चुका है। अब सबसे पहले तो इट इज़ नंबर वन प्रोड्यूसर, इनकम सोर्स, इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट, MSME ग्रोथ, हेल्प फ्रॉम दिल्ली। वाह, इन्होंने बेसिकली होता है ना कि जब कभी कभी हम लोग कीवर्ड्स जब ढूंढते हैं और कीवर्ड्स को जल्दी से लिखकर और उसके बाद जैसे आंसर शीट को सबमिट कर देते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही इन्होंने सोचा कि बड़े लंबे सेंटेंसेस क्या बनाने, हम सीधे सीधे कीवर्ड्स भेजते हैं। बट आई लाइक इट, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं श्वेता सिंह जी, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, क्या बात है। और सतीश अनेजा जी, आपका मैसेज भी हमारे पास आ चुका है। आम बहुत ही मीठा है, बहुत ही लाभदायक है, विटामिन ए सी और इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारी मदद करता है, पाचन में सुधार करता है, आंखों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी गुणकारी है। और सबसे बड़ी बात और सबसे क्यूट सी बात यह है कि इन्होंने बताया कि इनके घर में आम्रपाली आम लगे हुए हैं और उन्होंने तस्वीर भी भेजी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और इस तस्वीर में आम के पेड़ पे इतने सारे आम लगे हुए हैं और जब मैं अपनी आंखों के सामने इतनी क्लियर 4K पिक्चर देख रही हूँ तो मुझे भी अब आम खाने का मन कर गया है। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा सतीश अनेजा जी। वैसे आप बिमला अनेजा जी को खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे हैं अच्छे से, आम रोज़ काट काट के खिलाइए उनको। अब बहुत सारे मेल्स हमारे पास वैसे तो आ रहे हैं, थोड़े से मेल्स अभी मैंने रीड किए हैं, थोड़े से मेल्स फिर से थोड़ी देर बाद रीड करूंगी क्योंकि अब समय हो चला है कुछ प्यारा सा एक म्यूजिकल ब्रेक लेने का। तो जल्दी से एक प्यारा सा गाना तो सुन लें अरमान मलिक जी की आवाज में।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी 1:34 हो चुके हैं और आप चले आए कि नहीं चले आए जी। होठो पे तेरी बात नाम के एक प्यारे से शो को सुन रहे हैं आप मेरे यानी हर्षा के साथ, और बहुत सारी मीठी मीठी बातें हमारी आपस में चल रही हैं क्योंकि आज हमने पूछा है आपसे मीठे मीठे आम के बारे में, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि क्या बताऊँ इतने इंटरैक्टिव लिसनर्स हैं ना हमारे कि ज़रूर वो जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी ये आईडी है, बेसिकली पिंकू सोनी जी की आईडी है ये, टिकैत नगर बाराबंकी से, और उन्होंने मेल किया है कि उन्हें आम खाना बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात है, आम खाना किसे नहीं पसंद होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आम खाना मुझे भी बहुत पसंद है। और अब वकील अहमद जी देखिए आपने क्या लिखा है, आपने कहा है कि उन्हें आपको दशहरी आम बहुत पसंद है, और आप मसूरी कटका हथूरी ज़िला सीतापुर से हैं और बारिश का इंतज़ार है, धान लगाने के लिए खेत तैयार हैं। बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी है आपने, बहुत ही छोटा सा लेकिन प्यारा सा ईमेल था। मोहम्मद सबीर अंसारी जी आपने लिखा है कि सबसे पहली बात तो आपको गानों का सिलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर जी, आपने ऐसा बोला मैं तो एकदम गदगद हो गई। और आपने टॉपिक पे लिखा है कि आम फलों का राजा है क्योंकि इसमें विटामिन ए सी डी बहुत अच्छे से पाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं जिसकी वजह से ही ये राष्ट्रीय फल है। बिल्कुल सही आपने मुझे ये मैसेज भेजा है हैदराबाद से, और तालिब अंसारी जी का नाम भी लिखा है राजा कटरा से, आपके दोनों भाई आसिफ अंसारी और तालिब अंसारी जी आपका नाम ले लिया गया है। वाह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चीज़ है कि अब लोग मैसेज भी भेज रहे हैं और साथ ही साथ ये भी चाहते कि मैं नाम भी लूँ। तो ये भी थोड़ा सा हॉटमेल और होटो पे तेरी बात लगता है मिक्सअप हो गया है ना। देखिए महेंद्र दीपन जी ने मुझे मैसेज किया है और उन्होंने पूछा है कि उन्होंने कहा है कि उन्हें तोता पूरी आम पसंद है। वाह, कितने सारे तरह के आम होते हैं ना, मैं भी ये आम पहली बार सुन रही हूँ, इस तरह की काइंड का नाम पहली बार सुन रही हूँ, तोतापुरी आम। क्यों ऐसा क्यों, क्या ये आम बिल्कुल तोते जैसा मल्टी कलर का होता है, क्या इसमें ग्रीन ऑरेंज येलो सब कुछ पाया जाता है, या ये पूरी तरह से एकदम बिल्कुल जैसे हरे रंग का तोता कलर जो होता है उस कलर का होता है, ऐसा क्यों है, बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है। और साथ ही साथ उन्होंने अच्छा नहीं

पूछने से पहले इन्होंने जवाब भी लिखा है, तोते की चोंच जैसा अनोखा आकार देखने की वजह से ये बहुत अलग होता है और इसका हल्का खट्टा मीठा कड़क स्वाद मुझे बहुत भाता है और ये खाने में बिल्कुल चिपचिपा नहीं होता है। और फ़ायदे तो विटामिन ए और सी भरपूर हैं, आँखों और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। जी बिल्कुल, फाइबर अभी तक किसी ने मेंशन नहीं किया था, महेंद्र दीपन जी आपने मेंशन कर दिया, थैंक यू। और साथ ही साथ पेट को हल्का रखता है और डाइजेशन एकदम बढ़िया रहता है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अमेजिंग सा मेल आपने हमें भेजा था, बहुत सारी बातें हमें जानने को मिली। रामराज जी आपने हमें क्या लिखा है, आपने हमें रायबरेली से हमें मैसेज किया है और ओके, आम सभी पसंद है लेकिन चौसा आम बहुत पसंद है, और उससे भी पहले उन्होंने नाम खूब सारे मुझे भेज दिए, राम राज राजभानु रामचरण पप्पू पासी मनीष नीरज मधु मिर्ज़ा इमरान बेग, और इन सभी लोगों के नाम लेने के बाद आप सभी को सबसे पहले तो नमस्कार। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मेरे पास मोहम्मद आसिफ जी का एक बार फिर से मेल आ गया जिसमें उन्होंने शायरी लिखी है, तूने इलाही तूने क्या निज़ाम बनाया है। ज़रा किसी ने वाह वाह नहीं बोली तो मैं खुद ही वाह वाह बोल देती हूँ, तो इलाही तूने क्या निज़ाम बनाया है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, जो फलों का राजा है उसी को आम बनाया। ओहो, एकदम बिल्कुल वज़नदार शेर कह दिया आपने मोहम्मद आसिफ जी, क्या बात है। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग मेल्स आते ना तो हमारा शो और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहे तो कुछ खास मज़ा नहीं आती ना, साथ ही साथ ऐसे बड़ी फ़नी या कुछ बड़ी कभी कभी बड़ी अच्छे इंटरेस्टिंग सी शायरियाँ भी आप लोग जब भेजते रहते हैं तो ये हमारे शो को और भी ज़्यादा रंगीन सतरंगी बना देते हैं। गुलफ़्सा सिद्दीकी जी आपने हमें भेजा कि आपको चौसा आम बहुत पसंद है, बहुत मीठा होता है और उनके बाग में इसका पेड़ भी है। अब रामेश्वर जी आपने हमें लिखा है कि वो आपने मुंगीसापुर कानपुर से हमें मैसेज किया है और आम के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। नाम आपने बहुत सारे लिख दिए हैं, रामेश्वर कटेरिया, उमा कांति कटेरिया, कमलेश कटेरिया, पुत्रवधु निशा कटेरिया, प्रज्ञा कटेरिया, प्रतिमा कटेरिया, वेद बाबू कटेरिया, समस्त कटेरिया परिवार जी। अब रोशनी रावत जी होठों पे तेरी बात पे आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है कि आपको चौसा आम बहुत पसंद है सबसे पहले तो, और चौसा आम तो पसंद है ही, साथ साथ आपने इसके बारे में बहुत सारी इम्पोर्टेंस बताई है, जैसे इसमें विटामिन्स बहुत सारे होते हैं और सीज़न के आखिर में ये और भी ज़्यादा मीठा हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है आम पता नहीं क्यों और भी ज़्यादा मीठा होता जाता है और भी ज़्यादा पक जाता है। ताले बंसारी जी आपने दोबारा मेल करना चाहता हूँ कि गाने सब मेरी पसंद के हैं, सॉन्ग सिलेक्शन झक्कास है। जी जी जी जी जी बिल्कुल, आपकी झक्कास आरजे जब यहाँ पर है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गाने आपको एकदम बिल्कुल लाजवाब ही मिलने वाले हैं। आखिर आपको हमारी प्लेलिस्ट पे भरोसा है कि नहीं है, है कि नहीं है, है? ओके आहिल खान जी आपने हमें बुलंदशहर से मैसेज किया है, आम तो फलों का राजा है लेकिन दशहरी तो आम की रानी है, वाह क्या बात है। मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट भी, मुझे ऐसा लगता है कि जो आम में सबसे बेस्ट सबसे अमेजिंग वाला सबसे प्यारा वाला टेस्ट देता है ना वो है दशहरी, और वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और मुझे भी सबसे ज़्यादा पसंद है। चौसा आम मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है, आपको भी बहुत पसंद है और बहुत सारे लोग चौसे की काइंड का नाम ले रहे हैं, मुझे लगता है मुझे भी कहीं से ढूंढ ढांड के कहीं से अपने लिए आम लाना पड़ेगा। और वैसे तो मैंने बहुत सारे मेल्स अब पढ़ दिए हैं तो क्यों ना अब हम लोग एक प्यारा सा एक म्यूज़िकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस लौटते हैं, एक सुंदर सा गाना सुनते हैं और उसके बाद इस म्यूज़िकल ब्रेक के बाद वापस आऊँगी, आपके खूब सारे प्यारे प्यारे ईमेल्स पढ़ूँगी, लेकिन एक बड़ा ही फनी सा क्वेश्चन एक ईमेलर ने एक लिसनर ने पूछा था और मैं चाहती हूँ कि ये सवाल भी अगर कोई जवाब देना चाहे तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये इतना फ़नी सा सवाल है।

और मैं इसे आज के सवाल में शामिल करना चाहती हूँ, और वो ये है कि जो लंगड़ा आम है ना, इसका नाम लंगड़ा कैसे पड़ा, आखिर क्यों रखा गया? तो अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी है, या आपको इस बारे में कुछ भी और भी अपना भी कुछ फनी सा रिस्पॉन्स भेजना है, तो ज़रूर fmakashwani@gmail.com पर मैं आपके ईमेल का इंतज़ार कर रही हूँ। तब तक सुनते हैं प्यारा सा गाना और फिर वापस आते हैं।

जी 1:47 हो रहे हैं और आधा इश्क क्यों, पूरा इश्क है हमें आम से जी, इन खास खास आमों से हमें पूरा पूरा इश्क है। और ये इश्क बयां कर रहे हैं हमारे लिसनर्स ईमेल के ज़रिए। देखिए ना, हमारे पास कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ गए हैं। जैसे कि नरेंद्र सुथार जी का राजस्थान से हमारे पास मैसेज आ गया है और उन्होंने लिखा है कि उन्हें सफ़ेदा आम काट कर भी और शेक बना कर भी पीने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और साथ ही साथ घर पर आम्रपाली आम भी उन्होंने खाए हैं क्योंकि उन्हें वो बहुत ज़्यादा मीठे लगते हैं। और बाद में बड़ी एक स्वीट सी बात भी कही है कि अब मैं अपनी तारीफ़ में क्या ही कहूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि मीठी मीठी आवाज़ की तरह ही मीठा मीठा आम। ओह, जब ऐसे ऐसे इतने प्यारे प्यारे ईमेल्स आते हैं तो अब मैं क्या बताऊँ, मैं कितनी खुश हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी मैसेज करने के लिए। और अब हमारे पास मैसेज आ गया है एमन नवाब जी का, और एमम नवाज जी को दशहरी बहुत पसंद है, और वैसे तो उन्हें सभी आम पसंद है क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ खासियत होती है। बिल्कुल सही, लेकिन लेकिन लेकिन अब इनके ईमेल के एकदम मेन पार्ट पे आते हैं दोस्तों। मेन पार्ट जो इनका है वो ये है कि कल ही उन्होंने अपने दादाजी से पूछा और उनके दादाजी ने बोला कि दादू उन्होंने पूछा कि दादू लंगड़ा आम क्यों है, तो उन्होंने दादाजी ने बोला कि लंगड़ा आम ठेले पर बिकता है, इसीलिए बिकता है क्योंकि वो लंगड़ा होता है। ओ हो, अब मैं क्या बताऊँ, अब मैं कैसे कैसे इस माइक पे अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही हूँ, अब मैं बस आपको क्या ही बताऊँ। एमएम नवाब जी, आप लोग भी ना कभी कभी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें, इतनी बढ़िया बढ़िया ईमेल्स भेज देते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना फनी सा मैसेज दिया। और बाबू अंसारी जी का मेल हमारे पास आ चुका है और उन्हें दशहरी आम पसंद है। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे भी आपसे बातें करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। रामेश्वर जी, आपका मैसेज एक बार फिर से आ चुका है मुंगीसापुर कानपुर से। थैंक यू सो मच, आपका आपने तो प्यारा सा आशीर्वाद दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, आपको तोता परी आम पसंद है, वाओ तोता परी आम, ये मैं याद रखूंगी कि कोई तोता परी नाम का भी एक आम होता है। और सतीश अनेजा जी, अब आपने भी हमें एक प्यारा सा शेर लिखकर भेजा है। हम तो आए थे, दोस्तों गौर कीजिएगा, गौर कीजिए, गौर कीजिए, देखो बड़ा वजनदार एकदम शेर लिखा है। हम तो आए थे शिकवों का टोकरा लेकर दोस्त, और तूने आमों की टोकरी पकड़ा कर गले से लगा लिया। ओ हो, अब क्या माहौल एकदम शायराना ही कर डालेंगे क्या सतीश अनेजा जी, क्या बात है, क्या बात है। और बाबू अंसारी जी, आपने क्या लिखा है, ओ आपका मेल लगता है आपने दो दो तीन तीन बार भेज दिया है। मोहम्मद आसिफ जी, आपका मेल एक बार फिर से आ चुका है और इस बार आपने मुझे ये भेजा है, लंगड़ा आम के बारे में भेजा है, क्योंकि 300 साल पहले बनारस वाराणसी में उसे उगाने वाले संत या पुजारी लंगड़ा कर चलते थे। जब उन्होंने इस पेड़ के स्वादिष्ट और मीठे आमों को लोगों में बांटा तो उसे लंगड़े का आम के रूप में लोग जानने लगे और फिर यही नाम मशहूर हो गया। अच्छा, वाह, मुझे वाह, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बड़ी ही इंटरेस्टिंग जानकारी थी। थैंक यू सो मच मोहम्मद आसिफ जी, आपने हमें मेल के ज़रिए हम सभी को बताया। गुलफ्सा सिद्दीकी जी, चौसा आम आपको पसंद है। रोशनी रावत जी, आपका मैसेज भी आ गया है। इतना ईमेल लिखा था लेकिन आपने मेरा एड्रेस नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। रोशनी रावत जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका मेल तो इतनी बार आता है, आई एम श्योर हमारे सभी लिसनर्स को ऑलरेडी मुझे लगता है आपका मेल और आपका एड्रेस सब कुछ पता चल गया होगा। विजय पाल जी, आपका मेल हमारे पास आया है। लंगड़ा आम का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जिन साधुओं द्वारा इन पौधों को लगाया जाता था वो लंगड़े थे। धन्यवाद, आपने हमें खीरी से मैसेज किया है और बहुत ही एक अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की है। विजयपाल जी धन्यवाद, आपने हमें मेल किया। और मोहम्मद अजान जी आपने लिखा है 3 किलोमीटर दूर मणिकपुरी है, वहाँ के आम दुनिया के हर कोने पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कोई बताएगा मार्केट में जो लंगड़ा आम है उसकी कौन सी टांग टूटी है या

उसका इलाज क्यों नहीं करवाता? ओह वैसे ये सवाल मुझे भी बहुत फनी लग रहा था, लेकिन अब तो लोगों ने इसका भी बहुत ही अच्छे से जानकारी पूर्ण जवाब ईमेल के ज़रिए भेजना शुरू कर दिया है और हम सभी को बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि क्यों लंगड़ा आम उसको इस नाम से जाना जाता है। अब शैलेश कुमार जी का मैसेज हमारे पास है रूपपुर चंदेला से और उन्हें दशहरी आम बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच शैलेश कुमार जी हमें मेल करने के लिए। दिलीप राजमाही जी रिंकी पिंकी रिंकी पिंकी गांव जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर ज़िला रायबरेली से और बहुत सारे नाम भी भेजे हैं। समा परवीन सुरभि सिंह साहिब अंसारी साजिया अंसारी मैक अंसारी ममता दीदी सुषमा दीदी अनु पांडे वकील अहमद भाई मोहम्मद फैज़ भाई और पिंकू सोनी सभी लोग वाह और मल्टीपल आईडी से आप लोग हमें मल्टीपल आईडी से हमें ईमेल कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है थोड़ी ठीक बात नहीं है बट इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। आप लोग इतने एंथुजियाज़म से इतने अच्छे से हमें मेल भेज रहे हैं। जैसे कि नरेंद्र सुथार जी का हमारे पास फिर से मैसेज आ गया है, राजस्थान से आपने हमें मैसेज किया है और इस बार एक बार फिर से आपने भी अच्छे से इस चीज़ को समझाया है कि लंगड़े आम का नाम लंगड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि जिन लोगों ने जिन पुजारियों और किसानों ने उसे सबसे पहले लगाया था वो एक पैर से दिव्यांग थे यानी कि लंगड़े थे और इसीलिए इस आम की किस्म का नाम लंगड़ा रखा गया जी। अब 1:54 हो चुके हैं दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली इस शो को रैप अप करने का समय आ चुका है। इतने प्यारे प्यारे ईमेल्स आपने हमें भेजे, खूब सारी जानकारी दी, अपने बारे में दिल खोल के मुझे बताया और साथ ही साथ कुछ बहुत ही सारी फ़नी फ़नी चीज़ें भेजकर, कुछ सवाल पूछकर, कुछ शायरियाँ भेजकर आपने इस शो में 4 चांद लगाए और इसी के लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अब चलते हैं, सुनते हैं एक प्यारा सा गाना और उसके बाद न्यूज़ ब्रेक आएगा और न्यूज़ ब्रेक के उस पार मैं मिलूँगी आपसे हॉट मेल में और आपको मुझे मेल करना fmakashwani@gmail.com पर अपने फेवरेट गानों की फरमाइशों के साथ। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी फरमाइशों को पूरा करने की। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। आती हूँ मैं न्यूज़ ब्रेक के उस पार।

नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत पाकिस्तान के 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। इन सभी को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ, भर्ती, हथियारों की आपूर्ति और हमलों की योजना बनाने जैसी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्तता के कारण आतंकवादी घोषित किया गया है। इससे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA जैसी जांच एजेंसियों को इन आतंकियों के धन पर रोक और हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया। श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर श्री नवीन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। श्री नवीन प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। कल दोपहर वह प्रेरणा स्थल में शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कल अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रही SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण किया।

इस परीक्षण के दौरान इन ट्रायल में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। परीक्षण में यात्री वाहनों से लगभग 40,000 किलोमीटर और दो पहिया वाहनों से 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इसमें कहा गया कि माइलेज पर ईंधन के प्रकार के अलावा कई और चीज़ों का भी असर पड़ता है। इटावा में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने समीक्षा बैठक में कहा कि जनपद में 60 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 55 लाख पौधे जिला शासन द्वारा लगाए जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में जहां एक सड़क को हरित किया जाएगा, वहीं नगर क्षेत्र में मियावाकी तकनीक से घना वन बनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने गंगा और यमुना में प्रदूषण नियंत्रण पर सख्ती बरतते हुए बिना शोधन पानी नदी में ना बहाने का और ना दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

जी 2:09 हो चुके हैं, हॉट मील शुरू हो चुका है और बिल्कुल ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे भी कहना पड़ेगा कि अरे हद कर दिया आपने, क्योंकि मेरे पास इतने सारे मेल्स पहुंच चुके हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो जल्दी जल्दी मेल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, सबकी रिक्वेस्ट पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। सुधांशु जी का मेल हमारे पास आ चुका है, भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा से आपने हमें मेल किया है। और उसके बाद मेल आ चुका है हमारे पास जय जी का, उत्तम नगर दिल्ली से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। और आपने एक गाना भी हमें रिक्वेस्ट किया है, गाना रिक्वेस्ट करने के लिए धन्यवाद। तालिब अंसारी जी कैसे हैं आप, किसी भी गाने में आपको शामिल कर लिया जाए, देखिए ना मैंने आपको शामिल कर लिया। अब आते हैं भाई मूसा शेख जी आपके गाने के पास, प्यार भरा आदाब आपने हमें भेजा है, आपको भी। और साथ ही साथ शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बड़ोना बोड़ाना जी, ये सभी लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। पंकज शर्मा जी कैसे हैं आप, आपका मेल हमारे पास करनाल से आ चुका है, सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, शशि बल्ला, जग्गी दुआ जी, राम जी, ये सभी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं और गानों को इंजॉय कर रहे हैं। उत्तम कुमार जी आपने हमें झारखंड से गाना रिक्वेस्ट किया है, आपके साथ श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद और बोहड़ा गाड़ी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, ये सभी लोग हमें सुन रहे हैं। धन्यवाद, आपके गानों को मैं प्ले करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब देखते हैं राहत हुसैन जी का मैसेज मेरे पास आ चुका है। उम्मीद है मैं मायूस नहीं करूंगी आपके गाने को, रिक्वेस्टेड गाने को प्ले करने के लिए। लिस्ट बहुत ही लंबी हो चुकी है राहत हुसैन जी, मैं कैसे बताऊं, कोशिश तो मैं पूरी करूंगी लेकिन देखते हैं आपका गाना प्ले होता है या नहीं। भागवत वर्मा जी आपके साथ, शांति देवी, लीला देवी, विनीत वर्मा और रुद्र वर्मा जी आप हमें सुन रहे हैं दतरिंगी से, थैंक यू सो मच हमें मेल करने के लिए। उसके बाद फागुराम शेख जी आपका मैसेज मेरे पास आ चुका है, आपने हमें मैसेज किया है संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी के साथ। उसके बाद पंजाब राम टेके आईडी से, ओके आपका नाम है पंजाब राम टेके, यशोधरा राम टेके और श्राव्या राम टेके, आप लोगों ने एक प्यारा सा गाना रिक्वेस्ट किया है, थैंक यू सो मच गाना रिक्वेस्ट करने के लिए। दिलीप कुमार जी भागलपुर बिहार से कैसे हैं आप, दिलीप कुमार सोनी जी आप ने हमें एक गाना रिक्वेस्ट किया है। और साथ ही साथ राधे श्याम शर्मा जी आपका भी हरियाणा से हमारे पास मैसेज आ गया है, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा जी के साथ। अब देखते हैं मेरे पास मैसेज आ चुका है सतीश अनेजा जी का, सतीश अनेजा जी, बमला अनेजा जी, थैंक यू सो मच मेल करने के लिए। तुलसी मस्कीन जी आपने हमें शाहदरा बिहारी कॉलोनी शाहदरा से मैसेज किया है, तुलसी मस्कीन और वीना मस्कीन दिल्ली से आपने हमें मैसेज किया है, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। मसूर हसन जी आपने सहारनपुर से हमें मैसेज किया है, सैयद मसूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, किसी भी गाने में आपको शामिल कर लिया जाए, देखे ना मैंने आपको शामिल कर लिया। बोधराज खोरवाल जी आपका मैसेज मैं पढ़ चुकी हूँ, अनिल कुमार गंवाकर, एकांश सुमित गंवाकर, कुमारी ध्वनि गंवाकर, परी अभिजीत गंवाकर, श्रीमती सरिता गंवाकर, प्रणीता सिद्धांत गंवाकर और लाडला तुकतुक गहवाकर, ये सभी लोग इस वक्त महाराष्ट्र से हमें सुन रहे हैं और इतनी दूर से जब हमें सुन रहे हैं, आई होप

सभी गाने रिक्वेस्टेड गाने जो प्ले करूंगी मैं वो आपको भी पसंद आए। भले ही आपका रिक्वेस्टेड गाना अगर ना भी प्ले हो पाए तो भी निराश मत होइएगा, सभी गाने बहुत ही खूबसूरत हैं। शाहरून नूर अंसारी जी, आपका मैसेज हमारे पास आ चुका है बरेली से। फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान जी, आप सभी लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त। रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो और जॉन डिकैस्ट्रो सहारनपुर से हमारे रेगुलर लिसनर हैं। और थैंक यू सो मच, आप इतने प्यारे से ईमेल के साथ हमेशा हमारे साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। सरफुद्दीन अंसारी जी, आपने हमें बिहार से, बक्सर बिहार से, फातिमा खातून अंसारी जी और सुरीत रमेश साहू जी के साथ मैसेज किया है। साथ ही साथ डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी, और गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद राय और आर्य, अभ्यंदन आर्य और परमानंद आर्य, और साथ ही साथ सरीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी जी, ये सभी लोग गाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही प्यारे प्यारे लिसनर्स भी हैं जो गाना नहीं भी रिक्वेस्ट करते, बस कहते हैं कि बस हमारा नाम ले लीजिएगा। जैसे कि हनुमंत शिंदे जी हैं, संगीता शिंदे जी, ऋषिकेश और वसुंधरा जी के साथ इन्होंने हमें मेल किया है। थैंक यू सो मच हमें मेल करने के लिए। वारिस अली खान जी, आपका मेल भी हमारे पास पहुँच चुका है और आपने हमें ऐशबाग लखनऊ से मैसेज किया है और बहुत सारे रिक्वेस्टेड गानों में से ऑप्शन दिए हैं कि मैं कोई तो गाना प्ले कर ही दूँ। कोशिश करूँगी सर, मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर पाऊँगी लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके रिक्वेस्टेड गाने को प्ले करने की। और साथ ही साथ अंजू जी का मेल हमारे पास आ चुका है और अंजू जी थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना प्यारा सा मेल किया है और एक बहुत ही पॉपुलर गाना आपने हमें रिक्वेस्ट किया है। बाबू अंसारी जी, बाबू अंसारी जी कैसे हैं आप, बारामंकी से आपने हमें मेल किया है। और आपने कुलदीप गुप्ता जी, महेंद्र दीपन जी, फैज़ अंसारी जी और गौश मोहम्मद अंसारी जी, इन सभी का नाम लेने की रिक्वेस्ट भी की है। वाह, सभी लिसनर्स एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं और कितना जानते हैं एक दूसरे को, मतलब एक वी आर ऑल अ बिग फैमिली, राइट। और ताज मोहम्मद जी, आपका मेल भी हमारे पास आ चुका है। गुलाम साबिर अंसारी महराज जहां और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आपने हमें मेल किया है, थैंक यू सो मच। बहुत सारे मेल्स हमारे पास आ रहे हैं लेकिन अब टाइम आ गया है कि मैं एक गाना भी तो प्ले करूं। ऐसे कैसे चलेगा, तो वादा हम लोग निभाते रहेंगे और गाना भी सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। तो चलिए प्यारा सा गाना सुनते हैं, आपके रेडियो सच पे आ रहा है वादा रहा सनम।

0: की बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: जी दोस्तों, 2:22 हो चुके हैं और एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं हर्षा। इस म्यूज़िकल ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं हॉट मेल और आपके मेल्स हमारे पास आते ही जा रहे हैं। जैसे कि अहमद फूलवाले जी का मेल हमारे पास आ चुका है, छोटी बलिया फिल्म नगरी मुंबई से आपने हमें मेल किया है। अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सफ़द आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले और काप सहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया अमन, आमना नसरीन, आसमा परी, रबिया, मंतशा, आशु, अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली, सभी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं। जगदीश जी, आपका मेल हमारे पास पहुंच चुका है और किसी भी सॉन्ग में आपको

शामिल करना है, शामिल होना है, तो देखिए शामिल कर लिया। सुधाकर जाधव जी, आपका मेल हमारे पास आ चुका है जाफराबाद से। सुधाकर जाधव, राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमार सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख और समस्त राजे जाधव देशमुख वायाल परिवार, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और अब्दुल गफ्फर जी भी, आपका, आप भी प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त और खांडवा से आपने हमें मेल किया है। अब्दुल हक डावर और जियाउल हक डावर जी के साथ अब्दुल गफ्फार जी हमें सुन रहे हैं। और छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। साथ ही साथ देखते हैं रामेश्वर जी का मेल, आपका मेल मैं शामिल कर चुकी हूँ रामेश्वर जी, लेकिन आपका रिक्वेस्टेड गाना एक बार फिर से मैंने देख लिया, कोशिश करूँगी मैं गाने को प्ले करने की। रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार, समस्त कठेरिया परिवार को मेरा नमस्कार। सुधाकर जाधव जी, आपके मेल को मैं शामिल भी कर चुकी हूँ, लेकिन आप इतने सारे मल्टीपल मेल्स ना करें, सभी लिसनर्स से रिक्वेस्ट है। बहुत सारे मेल्स आप लोग, एक ही आईडी मेरे पास इतने सारे मेल्स आ रहे हैं एंड इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग कि मैं कौन सा मेल पढ़ चुकी हूँ और कौन सा मेल नहीं पढ़ पाई हूँ। बिकॉज़ कई बार जब आप लोग इतने सारे मेल्स करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मैंने इस मेल को नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ भी, मेरी भी हेल्प कीजिए, आपकी छोटी सी आरजे हूँ मैं, प्लीज़ मेरा भी थोड़ा सा ख्याल रखिए और मैं आपका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूँगी। अब मोहम्मद साहिर जी, आपका मेल हमारे पास आ चुका है। बेसिकली मोहम्मद फैज़ रामपुर खतरा कटरा जिला बाराबंकी, आपने हमें मेल किया है और गाना रिक्वेस्ट किया है, कोशिश करूंगी मैं आपके गाने को प्ले करने की। कमल कांत गुप्ता जी, आपका मेल हमारे पास आ गया है दीपा, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता जी के साथ। और समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और श्रीमती अंकु राघव गुप्ता जी, आपने हमें पिपरिया से हमें मेल किया है। ओके ओके ओके। और विजय महोबिया जी, आप कैसे हैं आज, आपकी बार आपके यहाँ बारिश हो रही है, आपने हमें कल्याणपुर से मेल किया है और नाम लेने के लिए कहा है विजय महोबिया, कविता महोबिया, सपना शिवी सलोनी, ईशु बाबा और पेंटर बाबू, रामगंज खांडवा मध्य प्रदेश से आपने हमें मेल किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और याकूब कुरैशी जी, आपका मेल भी हमारे पास पहुँच चुका है, इंदिरा विहार दिल्ली से आपने हमें मेल किया है। याकूब आसमा कुरैशी, यूसुफ आसमा कुरैशी, इमरान आसमा कुरैशी और इरफान आसमा कुरैशी जी के साथ। ओके ओके ओके। अब देखते हैं आसमा खातून जी, आपने हमें क्या लिखा है, आपने हमें बिलासपुर से मेल किया है। वसीम आसमा दलाल, अकरम आसमा दलाल, असलम आसमा दलाल, अल्ताफ आसमा दलाल, रेलवे कॉलोनी लखनऊ से, सोनम कुटरिया, दानिश कुटरिया, फातिमा कुटरिया और सरफुद्दीन कुटरिया जी, आप सभी लोगों ने हमें मेल किया है, सो थैंक यू सो मच मेल करने के लिए। मोहम्मद आमिर जी, आपका मेल नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, मगर मैंने आपके मेल को पकड़ लिया। ओके। लेकिन ज़िला बरेली से आपने हमें मेल किया है शमीम अंसारी, माही नूर अंसारी, नसरीन अंसारी और समा अंसारी जी के साथ, और सो कोऑपरेटिव, आपने कहा कोई भी गाना सुना दीजिए, थैंक यू सो मच। और राजू माथे जी, आपने हमें मेल किया है संतोष एस काले जी और गजानन सालोकर जी के साथ। तो दोस्तों बहुत सारे मेल्स आते जा रहे हैं और सच कहूँ इतने सारे मेल्स आ रहे हैं कि सभी मेल्स को पढ़ पाना भी इस वक्त पॉसिबल नहीं है, वरना ये कार्यक्रम सिर्फ मेल्स का ही हो जाएगा और अगर मैं कोई भी गाना प्ले ना करूँ तब भी सभी मेल्स को मुझे लग रहा है अब पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं। तो अगर आपका किसी कारणवश मैं मेल नहीं पढ़ पाती हूँ तो मैं पहले से ही अभी से आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। सो आई होप आप लोग सभी गानों को इंजॉय करेंगे और ज़्यादा दिल पर नहीं लेंगे। देखिए मेल्स एक लॉटरी सिस्टम की तरह आप समझिए, मेल आपने भेज तो दिया, मैं पूरी कोशिश करती हूँ बहुत सारे मेल्स पढ़ने की, लेकिन फिर भी इफ़ आई एम नॉट एबल टू इंक्लूड, प्लीज़ आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब नेक्स्ट गाने की

2:35 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं हॉट मेल, और कुछ भी कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत सारे मेल्स हमारे पास ऑलरेडी आते जा रहे हैं। संदीप मक्कड़ जी, आपने हमें एक गाना रिक्वेस्ट किया, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भ्रात मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोराया जलंधर, पंजाब से, थैंक यू सो मच मेल करने के लिए। और जितेंद्र नामदेव जी, आपका मेल भी मेरे पास आ चुका है, आपने हमें मेल किया है ग्राम पोस्ट खनौदी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश से जी। और आपने एक सेकेंड, आपने बहुत सारे नाम भी लिए हैं जैसे कि बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरूही नामदेव और सौम्या नामदेव जी के जी का नाम आपने लिया है, आप सभी को मेरा नमस्कार। और नरेश जी, कैसे हैं आप? आपने हमें पानीपत से मेल किया है, नरेश मल्होत्रा जी, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा और पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का जी, आप सभी ने हमें मेल किया है, थैंक यू सो मच मेल करने के लिए। नजीम रैन जी, आपका मेल हमारे पास आ चुका है, लेकिन एक सेकेंड, नजीम रैन जी आपका मेल, ओके, दिल्ली इंद्रनोक से आपने हमें मैसेज किया है, और मौसम बहुत अच्छा हो गया है इस बात की जानकारी भी आपने हमें दी है, वाह क्या बात है, तो दिल्ली में मौसम बहुत अच्छा है ऐसा हमें नाजीम रैन जी कह रहे हैं। और सुरेश नारंग जी, आपका मेल भी हमारे पास आ चुका है, और आशा नारंग जी के साथ और सोनाली पाठक जी के साथ इस वक्त आप हमारे शो को सुन रहे हैं। निसार अली जी, आपका मेल भी हमारे पास आ चुका है, घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू, आप सभी लोग इस वक्त रेडियो को एंजॉय कर रहे हैं। और अक्रम प्रिंस जी, आपका आपके तीन मेल्स भी मेरे पास आ चुके हैं, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, अरीज वसरम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन जी, ये सभी लोग इस वक्त रेडियो को सुन रहे हैं और आई होप सभी गानों को एंजॉय भी कर रहे होंगे। बिट्टू गजनेजा जी, आपका मेल हमारे पास आ चुका है, जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गजनेजा, पूनम गजनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जी के साथ आपने हमें मेल किया है। और हितेंद्र दास जी, आपका मेल हमारे पास आ चुका है, आपने हमें आसाम से मेल किया है और इतनी दूर से भी आप हमें सुन रहे हैं।

यू सो मच मेल करने के लिए। हीरामणि वर्मा जी, हीरामणि वर्मा जी आपका मेल छत्तीसगढ़ से हमारे पास पहुंच चुका है। हीरामणि वर्मा जी के साथ पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, ये सभी लोग इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं हॉट मेल को। और मनोज बंसल जी, मनोज बंसल जी आपका मेल हमारे पास आ चुका है हरियाणा से। हाँ सी, हरियाणा से आपने हमें मेल किया है। और हिंदुस्तानी ब्रह्मेश पिंकू सोनी टिकैत बाराबंकी से आपने हमें मेल किया है। कुलदीप जी उधौली और आकाश जी दरियाबाद से और नारायण गुप्ता जी, आप सभी को ये सभी गाने डेडिकेट कर रहे हैं। ओके, अनिल कुमार, आफ्ताब अंसारी जी आपका मेल हमारे पास गंज डंडुवारा से आ चुका है। रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी जी के साथ। और अनिल कुमार जी, विलेज सदा ठेर डिस्ट्रिक्ट बदायूं, राधे राधे आपको भी। और अब देखते हैं जगदीश जी का मैसेज। जगदीश जी का मैसेज आपका मेल देखिए शामिल कर लिया जा चुका है। और कौशिक वंदना जी, कौशिक वंदना जी ने मम्मी पापा महेश वदवाड़ा परिवार गुड आफ्टरनून आपको भी। आपने हमें राजकोट गुजरात से मैसेज किया है, थैंक यू सो मच। शाहजी बोड़के जी आपका मेल भी हमारे पास पहुंच चुका है महाराष्ट्र से, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमदाड़े जी के साथ। और डीके जी न्यू दिल्ली से, कमलेश मुकुल सचिन और दीपांशु जी के साथ आपने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट की है। शंकर लाल जायसवाल जी आपने हमें मेल किया है महाराष्ट्र से। शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल जी, ये सभी लोग इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं, सभी गानों को एंजॉय कर रहे हैं। गाना रिक्वेस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। मुकेश कश्यप जी कैसे हैं आप, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोनी, ऋतिक और बलवीर सिंह जी, मुकेश कश्यप जी के साथ शीतल कश्यप जी, आप सभी लोग इस वक्त दूल्हापुर उत्तर प्रदेश में हैं, ज़िला मुरादाबाद है। और उम्मीद है कि इस वक्त आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी और आप गानों को एंजॉय कर रहे होंगे। नवी हसन जी आपका मेल आ चुका है हमारे पास दरवाज़ा एटा से। शहनाज अब्बासी, नवद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, हुसैन हसन अब्बासी और ददी रसीद वारसी जी, और साथ ही साथ सिद्धपुरा टाउन से ज़ुबैर अली खान, ये सभी लोग, आप सभी को मेरा नमस्कार। डी वर्मा जी की आईडी से आपने हमें मेल किया है। दंत रेंगी भाटापाड़ा से सोनम बेलदार, फातिमा बेलदार, आसमा बेलदार और सरफुद्दीन फ़कीर, वाह कितने सारे लिसनर्स हैं ना हमारे। रोहित बेलदार जी आपका मेल भी हमारे पास आ चुका है। और लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं। और रुबीना थापा जी आपका मेल देखते हैं, आपने हमें सरगुजा मैन पार्ट से मैसेज किया है। फातिमा थापा, सोनम थापा, आसमा थापा, अदीबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्लू थापा जी के साथ। और अब हमारे पास मेल आ चुका है वली उल्ला डोम जी का, डब्लू उल्ला डोम, राशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम जी का, आपने भी हमें मेल किया है और गाना रिक्वेस्ट किया है, थैंक यू सो मच गाना रिक्वेस्ट करने के लिए। अमजद अली जी आपका मेल सीतापुर से आ चुका है हमारे पास। कैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं। और आसमा खातून जी आपका मेल भी मेरे पास आ चुका है, आपने हमें बिलासपुर से मेल किया है। और मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं आपका मेल ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। महेंद्र दीपान जी कैसे हैं आप, राजस्थान से आपने हमें मेल किया है। और बहुत ही प्यारा सा एक आपने AI से फ़ोटो बनाई है। वैसे ये जो मैम हैं जो इस वक्त जिनकी फ़ोटो आपने AI द्वारा लगाई है, मैं ऐसी तो नहीं दिखती हूँ मगर फिर भी कोशिश अच्छी है। बट हाँ मैं बताना चाहूँगी कि इस आईडी में मतलब ये जो आपने फ़ोटो AI द्वारा लगाई है, आई थिंक मैं इनसे करीब 10 साल तो छोटी होंगी।

बट इतनी सी हिंट दे सकती हूँ मैं आपको, बट नाइस ट्राई, बहुत ही प्यारा सा पोस्टर बनाया है. थैंक यू सो मच इतना डेडिकेटेड तरीके से मेल करने के लिए. मोयासीन हाशमी जी, आपने हमें मेल किया है गंज डंडुवारा से. मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसिफ हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी जी के साथ थैंक यू सो मच मेल करने के लिए. और सीताराम कांगड़ा जी, सीताराम कांगड़ा जी फिल्म आपने सब कुछ बताया है हमें. और एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट जी, सभी ये सभी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं. और संतोष खड़से जी, आपका मेल भी मैं शामिल कर लेती हूँ. महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी, आप भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं. बहुत सारे मेल्स हैं, जितना मैं पढ़ती जा रही हूँ उतना ही ज़्यादा और आते जा रहे हैं. समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह जी, ज्योति सिंह जी, रोहतास बिहार से सोनम सिंह जी और अनामिका सिंह जी, आपने हमें मेल किया है. और नीरज कुमार जी, आपका मेल हमारे पास आ चुका है. और देखते हैं, रोज़ी डी कैस्ट्रो जी, आपका मेल मैं पढ़ चुकी हूँ. मोहम्मद सदीक जी, आपका मेल हमारे पास आ चुका है. मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री और हाजी इस्ताक लोलामानी और मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी जी, ये सभी लोग इस वक्त गानों को एंजॉय कर रहे हैं. राजकुमार जी, पुष्प प्रमोद कुमार दूदी, पुष्पेंद्र कुमार दूदी और राजकुमार दूदी हिसार से आपका मेल हमारे पास आ चुका है. सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट जी के साथ आपने हमें मेल किया है. अब बहुत सारे मेल्स पढ़ने के बाद अब समय आ चुका है कि कुछ हमें गाना भी इंजॉय करना चाहिए. ऐसे कैसे चलेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के मेल्स ही शामिल करती रहूँ लेकिन लोगों के गाने भी ना प्ले करूँ. तो चलिए सुनते हैं कुमार सानू जी की आवाज़ में ये प्यारा सा रिक्वेस्टेड सॉन्ग, और उसके बाद देखते हैं कि कितना समय बचा है.

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: जी हाँ दोस्तों, 2:50 हो चुके हैं, इस शो हॉट मेल को रैप अप करने का टाइम आ ही चुका है। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से मैं कुछ मेल्स पढ़ लेती हूँ जो इस वक्त मेरे पास आ चुके हैं। दिनेश वर्मा जी का मेल आ चुका है मेरे पास, छत्तीसगढ़ से उन्होंने हमें मेल किया है करुणा वर्मा जी के साथ। साथ ही साथ आहिल खान जी, आपका मेल भी मेरे पास आ चुका है। और अमजद अली जी कैसी हैं आप, कैसे हैं आप, आपका मेल भी हमारे पास आ चुका है। लाल गिरी जी, श्री गंगानगर राजस्थान से आपने भी मेल किया, हेमलता हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी जी के साथ, थैंक यू सो मच हमें मेल करने के लिए। ताज मोहम्मद जी कैसे हैं आप, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आपने हमें मेल किया है और थैंक यू सो मच मेल करने के लिए। अशोक कुमार जी कैसे हैं आप, लखीमपुर खीरी से आपने हमें मेल किया है और वहाँ पर बरसात होनी शुरू हो चुकी है ये भी बात आपने हमें बताई है एक फरमाइशी गाने के साथ, तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा सा मेल लिखने के लिए। हमें रायपुर ओद्रा मितौली लखीमपुर खीरी से आपने हमें मेल किया अशोक कुमार जी। सुरेश नारंग जी, आपका मेल हमारे पास आ चुका है, आशा अनुमोना और सुनील पाठक जी। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जितने भी मेल्स आ रहे हैं मैंने उन सभी मेल्स को पढ़ लिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब एक ऐसा मेल बचा है जिससे मैंने नहीं पढ़ा है। तो थैंक यू सो मच सभी का, आप लोगों ने इतने अच्छे से इतने एंथुजियाज्म के साथ गाने रिक्वेस्ट किए और बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे गाने आपने रिक्वेस्ट किए जिससे हम सभी ने बहुत बहुत इन्जॉय किया। तो अब आखिर में अब जाने का समय हो गया है दोस्तों, लेकिन जाते जाते कुछ दो गाने रिक्वेस्टेड जो है वो मैं और प्ले करने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद फिर मिलेंगे सीधे न्यूज़ ब्रेक के उस पार विद सतरंगी दुनिया।

नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय लिए, उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयारी की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान के बालोतर में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने इस संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित जनभवन में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन भारत की सनातन चेतना का एक जीवंत प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का एक ऐसा विराट संचार किया जिसका प्रभाव आज भी संपूर्ण विश्व अनुभव कर रहा है। इस अवसर पर जनभवन के शिक्षा विभाग की ओर से स्वामी विवेकानंद के जीवन, व्यक्तित्व और विचारों पर आधारित सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। मिर्जापुर जिले में जिगना क्षेत्र के नरोइया गांव स्थित पंचायत भवन में आयोजित आपदा प्रबंधन जागरूकता बैठक में ग्रामीणों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के उपाय बताए गए। इस दौरान ग्रामीणों ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान को सफल बनाने का संकल्प भी किया। बैठक में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए स्वच्छता अभियान चलाने और गाँव को एकल उपयोग वाली प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए कपड़े के थैलों के उपयोग की भी अपील दी गई। मिशन शक्ति के 5वें चरण में अमरोहा में पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिला पुलिस की शक्ति दीदी और बीट आरक्षी टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता दी गई। नए आपराधिक कानूनों की जानकारी के साथ ही महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: जी दोस्तों, 3:03 हो चुके हैं और सतरंगी दुनिया यानी आपका फेवरेट प्रोग्राम फिर से शुरू हो चुका है। तो हमेशा की तरह ही आप सुनेंगे अपने फेवरेट गानों के साथ बहुत सारी अमेजिंग बातें, बहुत सारे प्यारे प्यारे फैक्ट्स। तो जानकारी और एंटरटेनमेंट, इन्फोटेनमेंट का ये सिलसिला शुरू हो चुका है, कहीं जाइएगा नहीं। लौटते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक के बाद और आज हम लोग कुछ बहुत ही ट्विंकलिंग चमचमाती बातें करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा मेरे साथ ओनली ऑन 100.7।

क्या मैं अपनी बात कर रही हूँ? अब मैं क्या बताऊँ, मैं अब अपने मुँह से अपनी तारीफ क्या ही करूँ। दोस्तों वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो सतरंगी दुनिया और आप हैं मेरे यानी हर्षा के साथ। अब मैं अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहती थी तो इसलिए मैंने ना अब मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन अब ज़रा मुझ पर से ध्यान हटाते हैं और आज के टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि सतरंगी दुनिया जो है ना, सतरंगी दुनिया में हम लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं करते, हम लोग इन्फॉर्मेशन की भी बात करते हैं। और आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं? यस, आज हम लोग बात करने वाले हैं सितारों के बारे में, चमचमाते हुए सितारों के बारे में, स्टार्स के बारे में। तो अब जल्दी से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से शुरुआत करती हूँ मैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि आखिर स्टार्स होते क्या हैं, आखिर सितारे क्या होते हैं, क्या है वो जो उन्हें हेल्प करता है इतना चमकने में। तो देखिए दोस्तों, सितारे यानी कि स्टार्स ब्रह्मांड की चमकती हुई सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो प्लाज्मा यानी कि गैस की जब सबसे गर्म स्टेट आ जाती है ना, जब बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल अपने चरम सीमा के तापमान पर जब गैस आ जाती है तो वो इस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है और उसी से बने होते हैं स्टार्स। और इनमें ना, क्योंकि ये इतना गर्म होता है ना, तो इसमें बार बार न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। और अब न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो बहुत सारी एनर्जी बन रही है और वही एनर्जी जो है ना वो बार बार रेडिएट होती है और इसलिए वो चमकती है। तो ये रेडिएट होती हुई, चमकती हुई ये जो रोशनी जहाँ से आती है, जिन सितारों से आती है, उन्हीं को हम चमचमाता हुआ सितारा कहते हैं। तो अब सितारों के बारे में मैंने बात छेड़ी दी है तो बहुत सारी बातें मैं ज़रूर करूँगी सितारों के बारे में, लेकिन गाने तो पहले बढ़िया सुनने ही चाहिए ना हम लोगों को, उसके बिना कैसे चलेगा। तो चलिए नेहा कक्कड़ जी की आवाज़ में, वो भी हमारी सिंगिंग की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है, उनकी आवाज़ में एक बढ़िया सा गाना पहले इन्जॉय करते हैं और उसके बाद फिर वापस लौटते हैं।

जब सितारा जन्म लेता है ना, तभी डिसाइड हो जाता है कि वो आगे कितना चमकेगा। वाह, ये तो मैंने बड़ी गूढ़ बात कह दी। आप लोग जैसे कहते हैं ना कि जैसे छोटा बच्चा जब होता है तभी पता चल जाता है कितना आगे जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जब सितारा बनता है ना तभी डिसाइड हो जाता है कि वो आगे कितना चमकेगा। और ऐसा कैसे? देखिए, सितारा जितना बड़ा होगा, यानी कि उसका मास जितना होगा, जितना वो भारी होगा, उतना ही जल्दी वो मर जाएगा, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा। जितना ज़्यादा छोटा सितारा होगा वो उतना ही लंबे समय तक रहेगा, और जितना बड़ा सितारा होगा वो उतनी ही जल्दी मर जाएगा। बात थोड़ी सी उल्टी हो गई है कि नहीं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, बहुत ही रोचक बातें मैं आपके पास लाती रहूँगी, और साथ ही साथ ऐसे ही खूब अच्छे अच्छे एकदम फन वाले गाने, एकदम बिल्कुल एकदम आपको डांस करा देने वाले गाने भी आपके पास लाती रहूँगी। तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, आप बने रहिए बस मेरे साथ, मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरी प्लेलिस्ट पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपकी हर्षा है ना वो एकदम झक्कास गाने बजाती है। आप भी एग्री करते हैं ना?

इतना प्यारा सा गाना, इतना फन गाना सुनने के बाद कौन डांस नहीं कर रहा था? सबसे पहले तो वो मुझे बताए, कौन था जो डांस नहीं कर रहा था, कौन था जो इंजॉय नहीं कर रहा था? सबसे पहले वो आके हमसे मिले, बिकॉज इतने प्यारे प्यारे गाने सुनाने वाली आपकी हर्षा इस वक्त स्टूडियो में है। एक बार फिर से वेलकम बैक दोस्तों, सतरंगी दुनिया सुन रहे हैं आप, और हम लोग आज बात कर रहे हैं चमचमाते सितारों के बारे में। वैसे सितारे एक्चुअली क्या चमचमाते हैं भी? क्या ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि सितारे चमचमा रहे हैं? बट हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? देखिए सितारे ना, आज मैं आपका थोड़ा सा भ्रम दूर कर देती हूँ, लेकिन सितारे एक्चुअली में ना चमचमाते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो ट्विंकल नहीं करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। असल में उनकी रोशनी जब धरती तक पहुँचती है ना, तब जाके धरती का जो एटमॉस्फेयर है, जब उसमें उनकी रोशनी एंट्री लेती है, तब एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं, हवा जो होती है, बादल होते हैं, ये सब एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। और इसलिए हमारी आंखें जब सितारों को देखती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी रोशनी क्योंकि कम ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब वो चमक रहे हैं। बट एक्चुअली सितारे जो होते हैं ना, उनकी लाइट बहुत ही एक समान होती है। अगर आप स्पेस में होते तब आप अगर सितारों को देखते तो बस आपको वो एक चमकती हुई सेलेस्टियल बॉडी ही दिखाई देते, लेकिन नहीं नहीं इसीलिए तो हमारी धरती पर रहना वो अपने आप में एक प्रिविलेज है, डोंट यू थिंक? तो इसीलिए कहते हैं कि सुंदरता जो होती है ना, वो देखने वाली की आँखों में होती है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। कभी कभी ना मैं बड़ी ऐसी गहरी गहरी बातें भी बीच बीच में क्या ही देती हूँ। तो वैसे इसी तरह की बहुत सारी बातें आपसे मुझे करनी है, आपको मुझे बतानी है, और ये वाला फैक्ट आई होप आपको अच्छा लगा हो। और इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे वाले फैक्ट्स मैंने आज कलेक्ट कर रखे हैं, तो आपको कहीं जाना नहीं है, आपको बस बने रहना है मेरे साथ और इन्जॉय करते रहना है खूबसूरत से प्यारे प्यारे गानों को। क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, इतनी बढ़िया बढ़िया वाली प्लेलिस्ट मैंने लगा रखी है ना, कि बस आपकी सेहत एकदम तरोताज़ा

दोस्तों, 3:36 हो चुके हैं और अभी अभी जस्सी गिल जी की आवाज़ में आप ये बड़ा ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा गाना सुन रहे थे। बापू जमीता नाम है इस गाने का, और जब मैं इस गाने को सुनती हूँ ना, तो मुझे अपने आप ही डांस करने का भी मन करता है और अपनी मजबूरी भी गाने का मन करता है। बिल्कुल सही बात है, जब बापू जमींदार है तो फिर कैसे कार लेके देंगे। ओ हो, क्या लिरिक्स है, क्या लिरिक्स है। ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर गाने, बहुत ही अलग अलग गाने मैं आपके लिए लेकर आने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। शो का नाम चल रहा है इस वक्त सतरंगी दुनिया, और आज हम लोग बात कर रहे हैं चमचमाते हुए सितारों के बारे में, खूब सारे कलरफुल बहुरंगी सितारों के बारे में। अब देखिए, चमचमाते हैं सितारे या नहीं चमचमाते, इस बारे में तो हमारी बात हो चुकी है, लेकिन आपको तो ये भी, आपने ये भी नोटिस किया होगा ना कि सितारे अलग अलग कलर के होते हैं, राइट? बट अलग अलग कलर्स के आखिर कैसे होते हैं, आखिर कैसे उनका कलर चेंज होता है? दोस्तों, इसका भी एक रीज़न है। यस, एवरीथिंग हैज़ अ साइंटिफिक रीज़न। तो देखिए, सितारों के जो कलर्स हैं ना, उनके टेम्परेचर यानी उनके तापमान को दर्शाते हैं। देखिए, अगर सितारा ब्लू वाइट है, यानी कि एकदम सफ़ेद रोशनी अगर दे रहा है ना, तो वो सबसे ज़्यादा गर्म है, सबसे ज़्यादा। और उसके बाद अगर हम नीचे नीचे जाते जाएं, यानी कम से कम तापमान की ओर बढ़ते जाएं, तो येलो कलर, उसके बाद ऑरेंज कलर, और सबसे कम गर्म जो है ना, वो है रेड कलर। कितनी फनी चीज़ है ना, लाल रंग असल में सबसे कम तापमान को दर्शाता है, सबसे ज़्यादा तापमान को नहीं। मगर यही है भाई सितारों की दुनिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी खूब सारी बातें करेंगे, लेकिन गानों का सिलसिला देखिए ना, रुकना नहीं चाहिए। तो 3:38 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं सतरंगी दुनिया मेरे यानी हर्षा के साथ। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दादा, ओ हो, म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार और बहुत ही ज़्यादा जाने माने, ग्लोबली जाने वाले स्टार दिलेर मेहंदी जी, उनकी आवाज़ में अभी अभी आप ये गाना सुन रहे थे और उन्होंने इस आइकॉनिक गाने से अपने आप को ग्लोबली और इंडियन म्यूज़िक को ग्लोबली फेमस कराया, इंटरनेशनली फेमस कराया। तो सिर्फ हम आज सितारों में, सिर्फ हम ब्रह्मांड के सितारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर तरह के सितारों की बात कर रहे हैं, राइट? और मेरी नज़रों में तो दोस्तों, आप लोग भी, आप लिसनर्स भी सितारों की तरह ही हैं। देखिए ना, मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा एक मेल आया है बसंत कुमार जी का, सीतापुर से इन्होंने हमें मेल किया है। और इन्होंने ये जो मेल किया है वो खुद से टाइप नहीं किया है, इन्होंने किसी और से ये मेल कराया है बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न, जो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकती, मगर ये मगर उन्होंने इतनी कोशिश की, इतना डेडिकेशन दिखाया कि उन्होंने फिर भी ये मेल लिखा है। और इतना प्यारा मेल पाके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। बसंत कुमार जी, थैंक यू सो मच। मेरी नज़रों में तो आप भी एक सितारा हो और हमारे सभी लिसनर्स भी किसी सितारे से कम नहीं हैं। और जब हम आज सितारों की बात कर ही रहे हैं तो हमने सभी सितारों की बात करी, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सितारा कौन सा है? उसके बारे में हमने क्यों नहीं बात करी? हमने अपने सन के बारे में, अपने सूरज के बारे में कैसे नहीं बात करी? तो दोस्तों, एक और एक लास्ट फैक्ट मैं स्क्वीज कर सकती हूँ यहाँ पर, और लास्ट फैक्ट मैं क्यों ना अपने सन के बारे में बताऊँ, यू नो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट? तो हमारा सन जो है ना, हमारा सूरज है, वो एक मीडियम साइज्ड येलो ड्वार्फ स्टार है, राइट? तो अब आप पूछेंगे ड्वार्फ स्टार क्या होता है? अब ड्वार्फ स्टार का मतलब है

ऐसा सितारा जो साइज़ में छोटा है। इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, हमारी नज़रों में सन कितना बड़ा है, लेकिन असल में हमारा सूरज जो है ना वो साइज़ में बहुत छोटा है कंपेयर्ड टू ऑल द बॉडीज़ इन द यूनिवर्स। इतने सारे बड़े बड़े सितारे हैं, उसके कंपैरिजन में हमारा सन ना एक ड्वार्फ स्टार है, और एक येलो ड्वार्फ स्टार है, मीडियम साइज्ड है, और उसको उसका जो लाइफ स्पैन है ना वो 4.6 बिलियन ईयर्स का है, राइट? 4.6 बिलियन ईयर्स का उसका लाइफ स्पैन है। तो आई होप कि आप रोज़ सूरज देवता को प्रणाम करते होंगे और उन्हें और भी ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि हम लोग हमारी पृथ्वी पर रहते हैं, हम लोग इस एनवायरनमेंट को इंजॉय करते हैं। अपने पर्यावरण को अच्छा रखिए और जितना हम कुछ कर सकते हैं सब कुछ कीजिए, और जो हमारे पास है उसे अप्रिशिएट कीजिए, राइट? हमारे सूरज देवता को भी थोड़ा सा और अप्रिशिएट कीजिए। और हाँ, सुनते ज़रूर रहिएगा 100.7 FM रेनबो, आप हैं मेरे यानी हर्षा के साथ, शो चल रहा है सतरंगी दुनिया।

3:54 हो चुके हैं और ऐसे ही मौजा ही मौजा चलता रहेगा 100.7 FM रेनबो पर। लेकिन मेरे जाने का दोस्तों अब समय हो चुका है, मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी रोज फिर किसी दिन, तब तक कीप एंजॉयिंग 100.7 FM रेनबो, ये है धड़कन लखनऊ की।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
1: पुरानी जींस और गिटार
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: जगा
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल
2: ये रातें ये मौसम

0: हो जाता ये सफर जगा, फिर रात को फुर्सत के वो पल,
1: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक खिलौना उद्योग का मूल्य लगभग 120 अरब डॉलर है, जबकि भारत की हिस्सेदारी केवल 0.2 से 0.3% है। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र में विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में 50 से अधिक खिलौना क्लस्टर विकसित किए गए हैं, जिनमें से लगभग 80% क्षेत्र लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा संचालित हैं। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गया है। मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज की कोई कमी नहीं है। प्याज का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपये प्रति किलोग्राम है। प्रदेश के राजस्व परिषद ने आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति एवं शत्रु संपत्ति से संबंधित वादों की सुनवाई अब 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा किए जाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। ये विशेष पीठ प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई करेगी। राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल के निर्देश पर यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। वाराणसी की पारंपरिक मिठाई बनारसी लौंगलता को GI टैग मिलने के बाद इसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है। मिठाई कारोबारियों के अनुसार GI टैग से लौंगलता की मांग और बिक्री में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे इसका उत्पादन बढ़ा है और स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ ही लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, उन्नाव, औरैया, कन्नौज, हरदोई तथा आसपास के क्षेत्रों में आज तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुन रहे हैं आप धड़कन लखनऊ की 100.7 FM रेनबो।
0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: है जगा,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
1: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: करियर पर है ध्यान,
4: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
3: पॉजिटिव है फैशन,
4: क्रिएटिव है पैशन,
3: टेक्नोलॉजी में रुचि,
4: बने पर्सनालिटी ऊंची,
3: फॉलो करें ट्रेंड्स,
4: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
3: ओनली ऑन यूथ वेव,
4: यूथ की बात यूथ के साथ,
3: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
4: धड़कन लखनऊ की।
2: जी हाँ, यूथ की बात यूथ से करने आ चुका है सर्वेश जायसवाल आपके पास। आपके साथ रहूंगा रात 8 बजे तक और तरह तरह के प्रोग्राम लेकर आऊंगा और सीधे जुड़ूंगा 7 बजे हेलो FM में, और उससे पहले शामे अवध और उससे पहले टॉप 10 गाने लेकर आऊंगा FM टॉप 10 में। लेकिन अभी का वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ यूथ का है और यूथ से बात करूंगा। आज सैटरडे है, वीकेंड का टाइम है और वीकेंड के दिन यानी कि सैटरडे के दिन हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में। बिल्कुल

करेंगे आपके स्किल और आपके डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले खूबसूरत सा गाना आपको सुनाऊंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसलिए कि बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं और आप भी बहुत दिनों बाद मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, तो बिल्कुल ये आवाज़ आपको सुनाई देती रहेगी रात 8 बजे तक, और खूबसूरत से गाने भी सुनते रहेंगे आप, और हमारी बातचीत, हमारी गपशप यूं ही चलती रहेगी। तो ये सिलसिला जो है ना, रुकना नहीं चाहिए।

तो भाई 4:08 का वक्त हो चुका है, सर्वेश आ चुका है आपके पास। और एक बार फिर से बता दूं कि सुनना ना भूलिएगा, लखनऊ का मौसम थोड़ा थोड़ा सुहावना हो चुका है। अभी मैं स्टूडियो आ रहा था तो बारिश की बूंदें गिर रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर, क्योंकि सुबह से ऐसा मौसम था बिल्कुल उमस वाला। लेकिन चलिए मौसम की बात हम बाद में करेंगे, अभी जो बात करेंगे वो आपके बारे में करेंगे, यूथ के बारे में करेंगे। और यूथ की बात सैटरडे में क्या करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के बारे में। तो सिंपल सी बात है, पहले से आपको एक लाइन में समझा दूं कि स्किल डेवलपमेंट है क्या। स्किल से स्किल को और डेवलप करके स्किल डेवलपमेंट होता है, पहली चीज़ तो यह है। और उसके बाद आप अपना कोई स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो बहुत सारी स्कीमें चलती हैं जिससे आपको कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और साथ ही साथ बहुत सारी ट्रेनिंग्स और बहुत सारे कोर्सेज भी कराए जाते हैं। तो बस आप ढूंढिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपकी स्किल कहाँ है, और जैसे ही आपको पता चल जाए कि आप कहाँ पर मजबूत हैं, कहाँ पर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, बस उसी फील्ड में आगे बढ़ जाइए, उसी सेक्टर में आगे बढ़ जाइए और अपनी स्किल को इस मुकाम पर ले जाइए कि आप सफलता की कदम आगे आपके बढ़ते जाएं और जो मंजिल है आपकी वो आपके कदमों में आके गिर जाए। सुनते रहिए यूथ वेव।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप, 4:14 का वक्त और लखनऊ का मौसम थोड़ा सा सुहावना हुआ है। आपके वहाँ का मौसम कैसा है ये आप ही जानते होंगे, बता सकते हैं। प्रोग्राम कैसा लगता है वो भी बता सकते हैं। आज बात हो रही है सैटरडे के दिन यूथ में स्किल डेवलपमेंट की, बहुत सारी बातें और भी करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरे लिए तुम काफ़ी हो।

वे स्किल डेवलपमेंट के लिए करना क्या है? कुछ नहीं, सबसे पहले अपने जो भी आपका गोल है उसको सेट करें, एक प्लान बनाएं, अपने पसंदीदा करियर से जुड़े सेक्टर को चुनें और प्रैक्टिस बहुत सारी करें, ऑनलाइन कोर्सेज की मदद लें, धीरे धीरे स्टार्ट करें, यानी बहुत जल्दबाजी में रहें, और उसके बाद धीरे धीरे कहते ना अपनी स्पीड बढ़ाएं, और जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी आप कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित होते जाएंगे, और बस एक्सपीरियंस के साथ आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे कि स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं और एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप बढ़ सकते हैं। फिलहाल सोचता हूँ बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में।

0: से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है रते आशिके जगा,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
5: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,

आप देख सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा, आयुध निर्माणी नालंदा की वेबसाइट munitionsindia.in। भारत सरकार का उपक्रम राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। अधिकारी वित्त कुल 5 पद, अधिकारी मानव संसाधन 1 पद, अधिकारी चिकित्सक कुल 2 पद बैकलॉग, वरिष्ठ प्रबंधक सीसी लैब रिक्तियां 1, अधिकारी विधि विभाग 1 पद, सहायक अभियंता 5 पद, अभियंता विद्युत कुल 5 पद, वरिष्ठ अभियंता विद्युत कुल 5 पद, उपप्रबंधक 3 पद और अभियंता सिविल 2 पद। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अभियंता सिविल के 2 पद भी रिक्त हैं। योग्यता, अनुभव, आरक्षण, वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार पत्र का 23 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 तक का अंक। इसके अतिरिक्त आप कंपनी की वेबसाइट www.rcfltd.com के भर्ती अनुभाग पर जाकर भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अग्रणी महापत्तनों में से एक है। ये प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रबंधक ड्रेजर टग्स और सहायक प्रबंधक फ्लोटिंग क्राफ्ट्स। संपूर्ण विज्ञापन, आवेदन पत्र और अन्य विवरण के लिए देखिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक अधिकारी बी, सहायक सुरक्षा अधिकारी ए, कार्य सहायक और परियोजना पद हैं परियोजना वैज्ञानिक अधिकारी बी। विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.hbcse.tifr.res.in। गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 1, टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, लाइब्रेरियन 1 पद, प्रोजेक्शनिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट और अपर डिवीजन क्लर्क। अधिक जानकारी के लिए देखिए गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की वेबसाइट www.girhfwt.org। आवेदन किए जा सकते हैं 19 जुलाई 2026 को शाम 5:15 तक। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही।

0: कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

रोजगार समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हां, अभी के प्रोग्राम यूथ फेव में शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में। बहुत सारी बातें हमने आपको बताई भी और अब जरा उन चीज़ों की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ नया हो रहा है स्किल डेवलपमेंट को लेकर, क्या कुछ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, क्या कुछ हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी यूपी गवर्नमेंट कर रही है। तो जल्दी से आपको ये बताता हूँ कि यूपी में 1,00,000 यूथ को मिलेगा हाईटेक कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। यूपी गवर्नमेंट 2026-27 के लिए राज्य कौशल विकास निधि स्कीम के तहत 1,00,000 से अधिक युवाओं को हाईटेक कौशल प्रशिक्षण देगी, जिसमें एआई फॉर ऑल मॉड्यूल अनिवार्य होगा। जी हाँ, क्योंकि एआई के बिना आज कहाँ कोई चीज़ पूरी हो रही है, हर जगह एआई है, जिधर देखिए उधर ही एआई है। और ट्रेनिंग के बाद आपके लिए 365 दिनों तक रोजगार की ट्रैकिंग भी होगी और सरकार का फोकस है कि जो हमारे युवा है ना, जो हमारे यूथ हैं, उनको आगामी भविष्य को देखते हुए, उनके आगामी भविष्य को देखते हुए डिजिटल युग के लिए उनको तैयार करना है। क्योंकि भाई, अगर आप आज के डेट में टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे परिचित नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप जो कॉम्पिटिशन की जो एक दौड़ लगी हुई है ना, उसमें पीछे छूट जाएंगे। तो लेकिन हम आपको पीछे कहाँ रहने देंगे, क्योंकि आप सुनते हैं FM रेनबो पर प्रोग्राम यूथ वेव।

जी यह पूरी महफिल जमी हुई है ऐसा कुलदीप गुप्ता साहब कह रहे हैं। दिलीप राजमाही यानी रिंकी पिंकी का भी मैसेज आ चुका है, कहीं प्रोग्राम बहुत ही मजा आ रहा है और आपके वहाँ बारिश हो गई, हमारे वहाँ बहुत उमस है, तो यहाँ भी बहुत ज्यादा नहीं है उमस, यहाँ भी बरकरार है।

जी हाँ, कुछ तो हुआ है और कुछ होने का हम इंतज़ार कर रहे हैं, बारिश होने का इंतज़ार कर रहे हैं ना। लेकिन मैं उससे पहले आपको स्किल डेवलपमेंट के बारे में बता दूं, क्योंकि अभी आप यूथ वेव सुन रहे हैं। चलिए सर, पहले गाना ही सुन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या हुआ है स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में।

यहाँ कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है और कुछ होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कुछ कुछ नहीं हो रहा है जी, हाँ कुछ और मत समझ लीजिएगा, मैं कुछ और की बात कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे हैं कितनी बार कुछ और कितनी बार और बोलूँगा मैं, जी हाँ, क्योंकि आपके अंदर कुछ अगर होगा नहीं तो आप अपने करियर पे फोकस कैसे करेंगे, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कोर्स का सिलेक्शन कैसे करें, कौन सा कोर्स चुने। तो सबसे बड़ी और गहरी बात यह है भाई कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, किस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी है खुद पे कि एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है और मुझे क्या करना अच्छा लगता है, किस फील्ड में मैं जाऊँ और मेरा इंटरेस्ट वहाँ पर है। तो ये पहले तो सबसे पहला काम ये करिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, और जैसे ही आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, बिल्कुल उसके बाद उसी फील्ड में अपने को लगा दीजिए। वैसे फौरी तौर पर आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड कोडिंग, टेली एंड GST, फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे कोर्स आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर है। फिलहाल वही बात कि आपको क्या करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सुन रहे हैं आप सर्वेश को आज के यूथ वेव में।

और जो आपका दिल आपसे कह रहा है ना, उसी को सुनना है और उसी को करना है। जहां पर इंटरेस्ट है वहीं पर फोकस करना है, तभी इसकी डेवलपमेंट का मजा है। सुनते रहिए यूथ वेव सर्वेश के साथ।

0: रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: चार बजकर 53 मिनट का वक्त, और जी हाँ, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है और जाते जाते कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देकर ही जाऊंगा, और 5 बजे विशेष कार्यक्रम के बाद प्रोग्राम FM टॉप 10 लेकर भी आऊंगा। तो आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन युवाओं में स्किल डेवलपमेंट को लेकर कुछ ना कुछ इनोवेटिव कर रहा है, और प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत अब कक्षा 6 से ही पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स को कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, और स्कूलों में मॉडर्न लैब भी विकसित की जा रही हैं। वहीं यूथ को फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट की ट्रेनिंग देने के लिए भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ टाई अप किया गया है, और जिसमें 1000 से अधिक सेंटर्स पर यूथ को फ्री वित्तीय कौशल प्रशिक्षण, फ्री फाइनेंशियल ट्रेनिंग दी जा रही है और आगे भी दी जाती रहेगी। तो बस जाते जाते यही कहूँगा कि अपने स्किल पर पूरा ध्यान रखें और नज़र बनाए रखें।

कि जो ट्रेंड में क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड्स को नहीं फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ ट्रेंड्स में चल रही होती है उसी में करियर ऑप्शन बहुत ईजली मिल जाते हैं। फिलहाल भूल भुलैया से लबों को लबों से।

यूथवेव से मुझे अनुमति दीजिए। जी हाँ, समाचारों के बाद विशेष कार्यक्रम के बाद प्रोग्राम लेकर आऊँगा FM टॉप 10। आपको बिल्कुल हमारा साथ छोड़ना नहीं है। रात 8 बजे तक हूँ आपके साथ। सुन रहे हैं आप सर्वेश को, सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य MOU भी हुए। इस अवसर पर उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। आम महोत्सव के तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज उद्यान विभाग के उच्चाधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादकों किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज महोबा में कहा कि श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पिछड़ा वर्ग की विभिन्न समस्याओं और लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं कबरई कानपुर एक्सप्रेसवे की सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 और 3 जुलाई को 2-2 पाली तथा आज 1 पाली में समाप्त हुई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। प्रदेश के राजस्व परिषद ने आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल निष्क्रांत संपत्ति एवं शत्रु संपत्ति से संबंधित वादों की सुनवाई अब 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा किए जाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। ये विशेष पीठ प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई करेगी। राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल के निर्देश पर यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। और प्रदेश सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति और ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत फर्रुखाबाद पुलिस ने बीते 6 माह में 304 लोगों को सजा दिलाई। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने 9 मुकदमों में 16 अपराधियों को आजीवन कारावास कराई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की FM 100.7 FM रेनबो।

0: और आइए अब सुनते हैं विशेष कार्यक्रम।
1: विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलावों पर अर्थशास्त्री एपी तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 सालों में ग्रामीण विकास, कृषि और कृषि उत्पादन के साथ ही रोजगार के मोर्चे पर कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अब मनरेगा की जगह विकसित भारत अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी के साथ ही 300 रुपए की न्यूनतम मजदूरी भी तय की गई है। सरकार का प्रयास है कि गांव में सिर्फ मजदूरी आधारित रोजगार नहीं, बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, कृषि उत्पादकता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी जाए। सरकार के इस विजन को बीवी रामजी अधिनियम कैसे पूरा करेगा, क्या खास बातें हैं इस अधिनियम में, मनरेगा की खामियों को इसमें कैसे दूर किया गया है, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री एपी तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी
2: सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम को ग्रामीण विकास और आर्थिक दृष्टि से आप कैसे देखते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मॉडल में ये किस तरह का परिवर्तन ला सकता है, खासतौर पे तब जब इसमें जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका और मौसमी घटनाओं से जुड़े कामों पर फोकस किया गया है।
3: विगत 12 वर्षों में लगातार मोदी सरकार ने खेती और खेती से जुड़ी हुई क्रियाओं को आगे बढ़ाया, जैसे वानिकी है, पशुपालन, मछली पालन और गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके विकास पर जोर दिया गया है। मेरा मानना है कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो एक जो कोष

0: की गई है हाल ही में, भारत का विकास तेज तभी होगा जब गांव का तेजी के साथ विकास होगा। लेकिन इसकी एक अहम कड़ी है कि गांव में ही लोगों को काम मिले, खासतौर पर वह जो अकुशल लोग हैं, अकुशल श्रमिक हैं, उन्हें गांव स्तर पर ही काम मिले। इसलिए ये है जो विकसित भारत जी राम जी स्कीम एक नए अवतार में कह सकते हैं लाई गई है। ये एक गारंटी है रोजगार की, जो पात्र श्रमिक होंगे उनको वर्ष में 125 दिनों का काम मिलेगा, इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ मेरा मानना है कि आर्थिक विकास की जो कड़ी है गांव की, उसमें मजबूती आएगी, क्योंकि खेती और गैर खेती की क्रियाएं जुड़ेंगी, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, भौतिक संपत्तियों का सृजन है, इसको बल मिलेगा। गांव का समग्र विकास को कह सकते हैं, इसकी कोशिश इस स्कीम के माध्यम से किए जाने का संकल्प लिया गया है।
1: बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने ग्रामीण विकास की बात की, मनरेगा की बात करें सर, तो मनरेगा को रोजगार की गारंटी के तौर पर लाया गया था, लेकिन जो ये नया अधिनियम है ये रोजगार के साथ साथ विकास की भी बात करता है, जैसा आपने चर्चा में कहा भी। तो ये नया अधिनियम सर इन दोनों के बीच, यानी कि रोजगार और विकास, इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बना रहा है?
0: देखिए, जब हम गांव के विकास की बात करते हैं तो एक उसका महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि गांव में ही गांव वालों को रोजगार मिले, क्योंकि इसका परिणाम ये होगा कि गांव के जो लोग हैं उनकी आर्थिक तरक्की होगी, उनकी आजीविका सुगम होगी, या उनके आजीविका के कह सकते हैं स्रोतों में गांव स्तर पर ही बढ़ोतरी होगी। तो जब ऐसा होगा तो उनका पलायन भी गांव से जो नगरों की तरफ होता है वो थमेगा। इससे जो कई तरह की आर्थिक और सामाजिक दुश्वारियां मजदूरों को झेलनी पड़ती हैं, उससे भी निजात मिलेगी। मेरा मानना है कि जब गांव विकास की बात की जा रही है तो गांव विकास का मूल मंत्र ये है कि खेती तो बढ़े आगे, लेकिन खेती के साथ जो गांव की गैर खेती की क्रियाएं हैं, वानिकी है, पशुपालन है, मछली पालन है, इन सब को अगर जोड़ कर देखा जाए तो विकास की गति और तेज होगी।
1: बिल्कुल सर, आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की और हमने देखा कि कोरोना काल में जब कठिनाई का वक्त था तब ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने बड़ी मदद की सरकार की अर्थव्यवस्था को संभालने में। सरकार की सोच है कि इस नए अधिनियम के जरिए कृषि, सिंचाई, जल संरक्षण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती दी जाए। तो आपको सर क्या लगता है, जो प्रावधान किए गए हैं उससे ये सोच कैसे पूरी हो सकती है?
0: देखिए, जब गांव के विकास की बात की जाती है तो जो गांव में खेती है उसके साथ ही साथ गैर खेती की क्रियाएं हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जो मझोले उद्योग क्षेत्र की क्रियाएं हैं, जो ODOP सेक्टर की क्रियाएं हैं कह सकते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनके द्वारा जो क्रियाएं संपादित की जा रही हैं खेती की, उनको अगर बागवानी से जोड़ा जाए या खेती का विविधीकरण अगर किया जाता है, तो खेती के विविधीकरण के लिए ये आवश्यक होगा कि नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, और जब नई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाएगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
1: सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार साल 2047 तक एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना चाहती है, यानी कि विकसित भारत की सोच को साकार करना चाहती है, उस दिशा में ये पहल आपको कितनी महत्वपूर्ण लगती है, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण विकास और रोजगार की बात बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है?
0: देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, उत्तर प्रदेश में खेती का क्षेत्र अभी भी एक प्रधान स्थान रखता है। साथ ही साथ जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि ODOP का क्षेत्र है, जो छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं, फूड प्रोसेसिंग है, एग्रो प्रोसेसिंग है, इनको आगे बढ़ाने का काम चल रहा है और उसको और अधिक मजबूती देने में इस स्कीम से मदद मिलेगी। साथ ही साथ जहां तक विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, उसको मूर्त रूप देने में भी ये स्कीम काफी सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि ये स्कीम केवल रोजगार देने की स्कीम नहीं है या आजीविका देने की स्कीम नहीं है, इसमें एक और जहां समेक मजदूरी देते हुए मजदूरों का सशक्तिकरण होगा, साथ ही साथ मजदूर एक जनशक्ति के रूप में राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो जनशक्ति है, जो मैन पावर है या मानवीय पूंजी है, उसकी सबसे बड़ी

0: भूमिका होने जा रही है 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में उभरने में, तो इस तरह देखा जाए तो ये है स्कीम जो एक नवाचारी है कह सकते हैं, ये टिकी हुई है नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल द्वारा, गाँव का आमूलचूल परिवर्तन करते हुए या गाँव की तरक्की को तेज करते हुए भारत की आर्थिक विकास की गति को भी टिकाऊ बनाना और 2047 तक लक्ष्य को प्राप्त करना विकसित भारत का, वो इस विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्कीम बहुत कारगर साबित होगी।
1: बिल्कुल सर, आपने विस्तार से बताया कि ये बदलाव केवल रोजगार योजना का विषय नहीं बल्कि ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था के व्यापक मॉडल से भी जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलावों पर अर्थशास्त्री एपी तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
3: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर और शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
4: जगह,
3: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
4: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
3: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, FM रेनबो सुन रहे हैं आप, और विशेष कार्यक्रम के बाद मैं आ चुका हूँ आपके पास। सर्वेश जायसवाल है आज आपके साथ। जी हाँ, आपसे बात करते करते उत्साह इतना बढ़ जाता है कि जबान भी लड़खड़ा जाती है। खैर कोई नहीं, जबान लड़खड़ाए चाहे ना लड़खड़ाए, अब बात करते हैं कि आज आपको गाने कौन से सुनवाए जाए। गर्मी और उमस का माहौल है, और अगर हम कुछ ऐसे गाने सुनवा दिए बारिश के, तो भले बारिश हो या ना हो, कुछ ठंडा ठंडा सा एहसास तो हो सकता है ना। जी हाँ, हिंदी फिल्में और बारिश के गीत, इनका जो है ना बेहद पुराना और गहरा रिश्ता है। बारिश के गीतों ने फिल्मों में रोमांस, यादों और दर्द को पर्दे पर बड़ी ही खूबसूरती से उतारा है। जहाँ बारिश के लिए लिखा गया कि आज लगी आज सावन की झड़ी है, वहीं टिप टिप बरसा पानी भी लिखा गया, और एक लड़की भीगी भागी सी है ना, बरसो रे मेघा मेघा। वैसी स्थिति अभी ऐसी ही हो रही है कि भाई बरस जाओ। सुबह आज लखनऊ की बात करूं तो इतनी ज़्यादा धूप थी, उमस थी, हालांकि हल्की फुल्की बारिश हुई है। उम्मीद करता हूं कि आपके वहां भी जल्दी से बारिश हो। तो आज FM टॉप 10 में बारिश के गीत, मानसून सॉन्ग्स लेकर आ चुका हूं मैं, सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है।
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।

और ये जो गाने हैं ना बारिश के, बारिश हो या ना हो या होने वाली हो, ये ऐसे गाने हैं कि हम गुनगुनाने ही लगते हैं। और बॉलीवुड ने कुछ ऐसे कल्ट क्लासिक गाने बनाए हुए हैं कि जब बजते हैं ना तो बारिश बाहर भले ना हो रही हो लेकिन अंदर बारिश होना शुरू हो जाती है। टिप टिप बरसा पानी फ्रॉम द मूवी।

जी हाँ, बिल्कुल सही फरमा रही हैं। टिप टिप बरसा पानी और पानी नहीं आग लगी। जब टिप टिप करके पानी बरसता है उसके बाद धूप निकलती है और फिर उमस होती है, तो भाई ऐसी आग लगती है कि आप समझ ही सकते हो। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जोरदार बारिश हो, मानसून जो आए ना, झमक के आए और झमाझम बारिश हो।

वही घड़ी में 5:25 का वक्त हो रहा है और आप बता सकते हैं कि आपके वहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। वैसे बारिश और रोमांस का कॉम्बिनेशन हमेशा ही परफेक्ट रहा है। और ये जो गाना आप सुन रहे हैं बैकग्राउंड में, बारिश फ्रॉम द मूवी टू स्टेट्स, नहीं बारिश सॉन्ग सुन रहे हैं आप। और ये किस मूवी का है आप बताएंगे या मैं बताऊं? जी हाँ, ये गाना है हाफ गर्लफ्रेंड का। तो जल्दी से सुनिए और इंजॉय कीजिए।

0: धड़कन लखनऊ की।
1: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
1: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
2: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
3: और ये जो बारिश का मौसम है ना, ये अपने साथ सिर्फ ठंडी हवाएं और भीगी फिजाएं ही नहीं लाता, बल्कि ढेर सारी यादें और भावनाएं भी लेकर आता है। कभी खिड़की के पास बैठकर बारिश की बूंदों को निहारने का मन करता है, तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाने का आपका भी मन करता है ना? बिल्कुल करता ही होगा।

जी हाँ, बेताब फिल्म का ये गाना सनी देओल साहब, अमृता सिंह और आर डी बर्मन जी का संगीत, और शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़, गीत में बिजली चमकने की आवाज़ और बारिश की बूंदों में गज़ब का तालमेल दिखता है ना?

जी हाँ, हाय हाय, ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, ये उमस भरी मौसम और बहुत परेशानी। मेल्स भी आ रहे हैं। आरती मिश्रा लिख रही हैं कि गुड इवनिंग डियर सर्विस सर, बहुत उमस है। और भी जो मेरे पास मेल आ रहे हैं उनमें भी यही बात है कि बारिश नहीं हो रही है। हाय हाय, ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, और ये दूरी बहुत जल्दी ख़त्म होगी और बारिश आएगी।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

5:45 का वक्त सर्वेश आज आपके साथ और सुन रहे हैं आप एफएम टॉप 10 धड़कन लखनऊ की एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़। और जी है, बारिश की बात हो रही है तो मेरा भी मन बड़ा खुश हो रहा है और ये गाने सुनकर उम्मीद कर रहा हूँ कि आप थोड़ा अच्छा फील कर रहे होंगे। और जब भीगी भीगी रातें होती हैं ना तो जो अंदर के जज्बात हैं ना वो उमड़ते और घुमड़ते तो हैं ही।

बारिश के गाने दौर चाहे कोई भी रहा हो, पुराना दौर रहा हो, 60s का दौर हो, 70s का, 80s का, 90s का, या नए दौर के गाने हो, एल्बम सॉन्ग्स हो, बारिश बन जाना पायल देव और स्टीवन बिन.

0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

और वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी और नंगे पैर छमछम करते हुए बारिश में निकल जाना, याद आया बचपन, लौट के गए बचपन में। बिल्कुल, ये बारिश ऐसे ही है, इससे बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं और ऐसे ही गाने आज आप सुन रहे हैं FM टॉप 10 में सर्वेश जायसवाल के साथ। 5:52 का वक्त और एक गाना और भी सुनाऊंगा आपको, सुनते रहिए।

ये हम सब इंतजार कर रहे हैं कि आएगा मजा बरसात का। बहुत जल्दी बरसात होगी और वही एक दो दिन की बात और है, फिर झमाझम बारिश होगी और गाने जो है ना FM रेनबो लखनऊ पर ऐसे ही चलते रहेंगे। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

रेवली से रामराज जी का मेल आ चुका है और राधे श्याम जी का मेल कासगंज से आ चुका है। कह रहे हैं गाने बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और एक बात सभी कह रहे हैं कि भाई उमस वाली गर्मी से राहत कब मिलेगी, तो बस एफएम रेनबो सुनते रहिए और ठंडे ठंडे जो गाने आपको महसूस करा रहे हैं ना ठंडा ठंडा, बहुत जल्द बारिश की बूंदें भी आपको भिगाएंगी। और अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, कुछ ही पलों में समाचारों के उस पार लेकर आऊंगा प्रोग्राम शाम।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार

के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में लीवर एंड मेटाबॉलिज डिजीज नेटवर्क की तीसरी वर्षगांठ पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जेनेटिक बनावट, पेट के आसपास चर्बी की अधिक समस्या और भारतीयों की खास शारीरिक बनावट के कारण लोगों में मधुमेह, फैटी लीवर और हृदय रोग का खतरा ज्यादा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक तरक्की के साथ बड़े पैमाने पर जन जागरूकता और व्यवहार में बदलाव से इस चुनौती से निपटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 और 3 जुलाई को 2-2 पाली और आज 1 पाली में समाप्त हुई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष

में लीवर एंड मेटाबॉलिज डिजीज नेटवर्क की तीसरी वर्षगांठ पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जेनेटिक बनावट, पेट के आसपास चर्बी की अधिक समस्या और भारतीयों की खास शारीरिक बनावट के कारण लोगों में मधुमेह, फैटी लीवर और हृदय रोग का खतरा ज्यादा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक तरक्की के साथ बड़े पैमाने पर जन जागरूकता और व्यवहार में बदलाव से इस चुनौती से निपटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 और 3 जुलाई को 2-2 पाली और आज 1 पाली में समाप्त हुई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। इस बार परीक्षा में 88.77% अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज हुई। चित्रकूट में 29 जून से 6 जुलाई तक मनाए जा रहे अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह के तहत आज इफको द्वारा संतुलित और नैनो उर्वरकों के उपयोग पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। साथ ही किसानों को धान के स्थान पर बाजरा, ज्वार, तिल, उर्द, मूंग और अरहर जैसी कम जल खपत वाली फसलों के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बीते 24 घंटों में कानपुर और आज सुबह टुंडला में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। और इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जो कि है धड़कन लखनऊ की।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: घड़ी में 6:06 हो चुके हैं। जी हाँ, 6:06 हो चुके हैं और ये वक्त होता है शामे अवध का। सर्वेश आज आपके साथ रहूंगा 7 बजे तक शामे अवध में, और उसके बाद प्रोग्राम लेकर आऊंगा हेलो एफएम, जिसमें आप हमें कॉल करते हैं और सीधे हमसे जुड़ते हैं। अभी की बात आपसे ये करूंगा कि लखनऊ शहर में बहुत कुछ चल रहा है और हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ सांस्कृतिक गतिविधियाँ, कुछ ना कुछ होता तो रहता है। और अभी जो चल रहा है लखनऊ में आम महोत्सव चल रहा है और कल उसका समापन होगा, तो भाई आम तो आपने बहुत खाए होंगे लेकिन बहुत सारे देखे नहीं होंगे, तो जाइए और देखिए बहुत सारे आम, हर साइज के आम, और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ हर तरह के आम होते हैं ना, वो सारे के सारे आपको वहाँ दिख जाएंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहा है ये महोत्सव। बिल्कुल अभी आज अगर नहीं जा पाए तो बिल्कुल कल जाइए, क्योंकि जिंदगी जो है ना सिर्फ 2 पल की है, पता है ना आपको।

शिद्दत, मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में।

और ये जो थोड़ी सी बारिश के बाद की ये गर्मी और उमस बहुत परेशान करती है, और धूप तो ऐसे लगती है जैसे बदन पे कीले जड़ दिए हो किसी ने, या कीले गड़ रही हो, है ना। वैसे ऐसे मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन में धूप और उमस परेशान कर सकती है, उसके बाद 2 दिन के बाद और है, लेकिन बीच में हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी और अवध की शाम कहीं ना कहीं वैसे ही खुशनुमा होती रहेगी। अरिजीत सिंह, बेख्याली, फ्रॉम द कबीर सिंह।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

भैया मोनू सेठ लिख रहे हैं कि जामुन खाए हैं और आपको सुन रहे हैं, तो भैया हमारे लिए भी जामुन और आम थोड़ा भिजवा दीजिए, अवध की शाम और भी मजेदार हो जाएगी, आम महोत्सव भी चल रहा है लखनऊ में।

और शामी वक्त में आपको अपडेट दे दूं, लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। जी हाँ, सेशन 2026-27 के स्नातक और यूजी प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 से 12 जुलाई के बीच होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एस्पिरेंट्स एलयू के ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई तैयारी करते रहिए, बहुत दूर नहीं है, 6 से 12 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम भी है। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

सही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की

जी हाँ, धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप। और आज जो लखनऊ का ट्रैफिक है ना, सुबह से लगाकर दोपहर तक पॉलिटिकल मूवमेंट था, इस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस समय, और आपको बता रहा हूँ वीकेंड का दिन है, तो थोड़ा सा आप देख कर निकलें, आसपास पता करके निकलें। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है और मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ट्रैफिक अभी की जो बात है वो प्रॉपर स्मूथ चल रहा है। बिल्कुल आप अवध की शाम का मज़ा लेना चाहते हैं निकल सकते हैं, लेकिन हाँ ये भी है कि भाई गर्मी और उमस जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा है। तो बस अपना पूरा ख्याल रखें और सुनते रहें। क्या वो पहली बार जब हम मिले, कब मिले आप हमसे? सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की शाम। 6:30 का वक्त।

और प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है। इब्राहिम अंसारी साहब कह रहे हैं कि अहमदाबाद गुजरात से सुन रहा हूँ और गाने बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, अवध की शाम का मजा यहाँ भी आ रहा है। जी हाँ, और तेज बहादुर यादव भी हमें मेल कर रहे हैं कि गाना और प्रोग्राम दोनों बहुत अच्छा लग रहा है।

0: तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना।
1: बिल्कुल जी, हम आपको कहाँ छोड़ के जाने वाले हैं। अभी हम रात 8 बजे तक आपके साथ हैं और उसके बाद हमारे दूसरे साथी आ जाएंगे और रात 12 बजे तक आपका जो और हमारा है ना साथ, सुबह 6 बजे से शुरू होता है और रात 12 बजे तक ऐसे ही चलता रहता है। और अभी का जो वक्त आपको बता दूं, 6:34 का वक्त हुआ है और प्रोग्राम शाम वक्त सुन रहे हैं आप। गाने बहुत ही खूबसूरत आपको लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, जैसा कि आप मेल करके हमें बता रहे हैं और साथ ही साथ हम इन्फॉर्मेशन भी आपको देते ही जा रहे हैं। और आज कुछ कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई वाली बातें ज़्यादा हैं, उससे जुड़ी हुई जो है ना इन्फॉर्मेशंस ज़्यादा हैं। तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी में बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स पेंटिंग के 4 वर्षीय यानी 4 वर्ष का जो ये प्रोफेशनल डिग्री है ना, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। किया भी होगा, लेकिन उसके जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है ना, वो 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। तो भाई अगर आप भी कहते ना कि क्रिएटिव हैं और कुछ विजुअल आर्ट्स में करना चाहते हैं, पेंटिंग में कुछ करना चाहते हैं, 4 वर्ष का एक कोर्स करना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकेडमी ने इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई कर दी है। फिलहाल चले आना।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
4: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
5: समझे जनाब अली।
4: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

और धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप। 6:40 का वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में, और वक्त मिला लीजिए क्योंकि वक्त के साथ चलने वाले लोग जो है ना बहुत आगे तक जाते हैं। तो भाई आपको बता दूं, अभी जो अपना उत्तर प्रदेश है ना, दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो डे बाई डे बहुत ही अपग्रेड होती जा रही हैं, और आने वाले समय में है आपको इंटीग्रेटेड ट्रॉमा नेटवर्क बनाया जाएगा, जिससे जो एक घंटा होता है इसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिल सकेगा। साथ ही साथ हर ज़िले में कैंसर केयर की भी सुविधा स्टार्ट की जाएगी, जिससे अच्छी बात यह है कि जो एकीकृत ट्रॉमा और इमरजेंसी नेटवर्क है उसको इस्टेब्लिश किया जा सकेगा। तो भाई है ना अच्छी बात अपने लखनऊ के लिए। और खूबसूरत गाने कहाँ रुकने वाले हैं, सुन रहे हैं आप शाम में, और सर्वेश जायसवाल के साथ।

ट्रैफिक अपडेट आपको दे दूं कि हजरतगंज के आसपास थोड़ा सा आपको कंजेशन मिल सकता है, थोड़ी सा ट्रैफिक की दिक्कत हो सकती है, बाकी लखनऊ में सारा ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है। सुन रहे हैं आप शाम अवध धड़कन लखनऊ की 100.7 FM रेनबो, सर्वेश आज आपके साथ।

छः बजकर 51 मिनट का वक्त हो चुका है और आपको बता दूं कि यूथ के लिए गुड न्यूज़ है, जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आने वाली हैं। 2107 वैकेंसीज आएंगी और पोस्ट की डिटेल्स इंफॉर्मेशंस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन जुलाई में ही आने की पूरी उम्मीद है, तो बस अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई बिल्कुल अप टू डेट रखिए। जैसे ही फॉर्म आता है उसको भरिए और बिल्कुल क्रैक करिए, जिससे आपका नाम रिजल्ट में बहुत जल्द आ जाए।

और रात के शाम के इस माहौल में ये इस तरीके के गाने हैं ना, कुछ थेरेपी जैसे लगते हैं ना। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा 100.7 FM रेडियो पर, जो कि है धड़कन लखनऊ की।

और घड़ी में 6:56 का वक्त हो चुका है और ये देखिए आपसे बात करते करते 57 मिनट भी हो गए। पीरवसानी मार्ग पर स्थित खाटू श्याम मंदिर में 9 जुलाई को वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें श्याम बाबा के दरबार को फूल बंगला का शेप दिया जाएगा। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जी हाँ, खाटू श्याम मंदिर 9 जुलाई। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए समाचारों के उस पार, टॉप 10 न्यूज के उस पार, आप ही की बात आप ही के साथ हेलो एफएम में।

शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए यूपी की दिन भर की टॉप 10 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन आज से लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय

नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष तथा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। प्रदेश के राजस्व परिषद ने आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल और शत्रु संपत्ति से संबंधित वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा किए जाने की व्यवस्था लागू कर दी है। यह विशेष पीठ प्रत्येक बुधवार को इन मामलों की सुनवाई करेगी। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन आज लखनऊ के जनभवन में मैंगो बायर सेलर मीट कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य MOU भी हुए।

प्रत्येक बुधवार को इन मामलों की सुनवाई करेगी। तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन आज लखनऊ के जनभवन में मैंगो बायर सेलर मीट कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य MOU भी हुए। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन भारत की सनातन चेतना का एक जीवंत प्रकाश स्तंभ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कल अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रही SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना भी शामिल है। संसद का मानसून सत्र इस माह की 20 तारीख से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 8 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ, FM रेनबो सुनते भी रहिए और फोन करते रहिए, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है हेलो FM, जिसमें आपको करना सिर्फ इतना होता है, नंबर्स मिलाने होते हैं और हमसे सीधे जुड़ना होता है। 0522 2238 42 2238 52 और 29 82 377, ये नंबर्स हैं हमारे, जल्दी से हमें फोन कीजिए और सीधे हमसे जुड़िए। समाचारों को जब मैं पढ़ रहा होता हूँ ना, तो जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं और पूरी कोशिश करना शुरू कर देते हैं समाचारों के पहले से ही, वो सीधे हमसे जुड़ जाते हैं और देखते हैं अभी लाइन पर कौन है। हेलो,
4: हेलो
3: जी, अपना नाम बताएं।
4: हरिकेश बोल रहे हैं सर।
3: हरिकेश जी कहाँ से बोल रहे हैं
4: सर? रहने वाले तो बंथरा कुरोनी गांव के रहने वाले हैं सर।
3: जी जी जी, और अभी कहाँ पर हैं आप?
4: मैं हूँ अहमदपुर चौकी
3: जी
4: पास हूँ सर।
3: अच्छा, जनपद बाराबंकी।
4: हाँ हाँ,
3: अच्छा, ये वही अहमद, ये वही
4: बाबू अंसारी जी बात करते।
3: अच्छा, अहमदपुर से बाबू अंसारी जी भी बात करते, यही मैं कहने वाला था। देखिए, आप लोगों से मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि नाम के साथ साथ आपके पते भी याद हो चुके हैं।
4: हाँ,
3: तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे
4: सर? आई मिलन की रात का सुनना चाहते हैं, तूने प्यार की बीन बजाई। ये सर्वप्रथम जो है कि संगीत का मैं थोड़ा बहुत कला, तो मतलब कला जानता हूँ, संगीत की कला सर
3: जी,
4: गाने और बजाने की दोनों सर।
3: क्या बात है,
4: तो इसलिए सर्वप्रथम इसकी म्यूजिक से लेकर के, इसका गाना से लेकर के, इसके बोल से लेकर, अंतरा से लेकर, पूरा गीत में और मेरी जो है कि रग रग में ये बसा हुआ है।
3: क्या बात है, दो दो दो
4: उंगलियों का कमाल है सर इस गाने में।
3: अच्छा, तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए अगर गाने का शौक रखते हैं। दो लाइन जल्दी से।
4: तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई।
3: क्या बात है,
4: मैं दौड़ी चली आई हो।
3: क्या बात है, और ये गाना भी दौड़ता हुआ चला रहा है आपके पास।
4: हाँ सर,
3: डेडिकेशन।

0: ना चाहेंगे जल्दी से दे दीजिए।
1: सर जो कि हमारे गांव के भाई हैं उमेश
0: जी,
1: उमेश राजेश, हमारे माता पिता और बीवी बच्चे
0: जी,
1: और जो है कि बाबू अंसारी जी हैं, और जो है कि उन्नाव से श्री प्रकाश तिवारी जी हैं
0: जी,
1: उनकी बहन जी हैं, और सीमा रावत बहन जी हैं, सुरभि जी हैं, और जो है कि बस बस,
0: और एफएम रेनबो से सर्वेश जायसवाल भी हैं। कोई नहीं कोई नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरकेश भाई आपका।
1: ठीक है सर, कभी बनखरा आना जरूर
0: जी, बिल्कुल आएंगे और मुलाकात करेंगे।

0: और घड़ी में 7:10 हो चुके हैं और करना सिर्फ आपको इतना ही होता है कि 0522 38 852 38 848 29 82 83 377 ये हमारे नंबर हैं। जल्दी से कॉल कीजिए और जल्दी हमसे बात कीजिए और अपनी पसंद का गाना सुनिए, है ना। तो देखते हैं लाइन पर कौन है, उनसे जल्दी से बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी?
1: मिल रही है।
0: और बताएं कहां से आपने फोन किया हमें? अल्तमस लखीमपुर खीरी से आप हमसे बात कर रहे हैं। और क्या करते हैं आप लखीमपुर खीरी में?
1: जी सर, हम बस इंटर कॉलेज में पढ़ते
0: हैं। अभी इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप?
1: यस।
0: क्या बात है, किस क्लास में हैं, 11th में या 12th में?
1: हाई स्कूल में आए हैं।
0: हाई स्कूल में पहुंचे हैं और मेरी आपसे पहली बार बात हो रही है।
1: सर हम आपको सुना करते हैं बस और बात
0: करते हैं। ये प्रोग्राम इसीलिए है कि आप हमको खूब सुनिए और कोशिश करिए शायद बात भी हो जाए हमारे जितने भी

0: साथी हैं, जितने भी आजिज हैं उनसे आपकी बात हो जाए तो अच्छे लगते हैं सारे प्रोग्राम। लखीमपुर खीरी में साफ सुनाई देता है, लखीमपुर खीरी में तो 102.3 में फ्रीक्वेंसी है ना
1: जी सर। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं।
0: अरे धन्यवाद, धन्यवाद आपका। तो आज गाना सुनना चाहते हैं आप, इशारे तेरे, और किसको सुनाना चाहते हैं?
1: सर मोहम्मद फैज भाई हैं, ओके, साजी भाई हैं
0: जी, अरे वाह,
1: वारिस अली हैं और आप।
0: अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्तमस, और खूब पढ़ाई करिए, खूब नाम कमाइए, आगे बढ़िए और एफएम रेनबो सुनते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: जी आपको इशारे बिल्कुल नहीं करने, करना सिर्फ इतना है कि आपकी अपनी आपकी जो उंगलियां हैं ना उनको मोबाइल पर करना क्या है, उससे नंबर्स मिलाने 0522 38 845 22 38 852 और 29 82 370 ये नंबर्स हैं हमारे और इनको आप जल्दी से ट्राई कीजिए क्योंकि वक्त धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। 7:20 से 7:30 तक आपको प्रादेशिक समाचार भी सुनवाने होते हैं तो कोशिश करिए कि उससे पहले आपकी कॉल लग जाए। हालांकि 7:20 से 7:30 से लेकर 8 बजे तक आधे घंटे का वक्त और होता है आपके लिए और वहां पर भी हम आपकी कॉल्स लेते हैं और आपसे बात करते हैं। अभी लाइन पर कौन है उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो नमस्ते सर्वेश सर।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं? वैसे मुझे आप सर्वेश कहेंगे तो भी उसमें सर आ जाता है।
1: अरे नहीं सर, कहना
0: जरूरी
1: है सर।
0: मेरे नाम में सर ऑलरेडी है, जैसे आप सर्वेश बोलोगे वैसे ही सर आ जाता है। खैर कोई नहीं, और बताएं कैसे हैं आप?
1: जी सर हम बढ़िया हैं सर, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा होगा उसी से पता चल रहा होगा मैं बहुत अच्छा हूँ।
1: जी जी।
0: और बाबू अंसारी जी बात कर रहे हैं ना, सभी सुनने वालों को बताइए ना, हम तो जान जाते हैं लेकिन कुछ नए श्रोता होते हैं उनको भी पता चलना चाहिए कहाँ से आपने कॉल किया, अपना नाम बताएं।
1: मैं बताता हूँ जी, देवकली अहमदपुर बाजार बारामकी से बाबू अंसारी जी बात कर रहे हैं।
0: जी जी जी। और मौसम तो गर्म ही होगा, उमस होगी उधर भी?
1: जी बारिश भी ज्यादा हुई फिर भी पता नहीं क्यों गर्मी है।
0: इसलिए गर्मी है ना, कहते ना कि
1: जब वाटर लेवल हमारे वहाँ का कम हो गया, जमीन का पानी नहीं आता, बताइए अभी।
0: जी जी कोई नहीं, अब वक्त आ ही गया है, बस एक दो दिन का इंतजार, उसके बाद बारिश बेशुमार। गाना आज कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: जी सर फिल्म का नाम है गुप्त और गाने के बोल हैं मेरे सनम और सर डेडिकेट करना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल डेडिकेट कीजिए, फटाफट कीजिए। थैंक यू।
1: और महेंद्र दीपन है गांव रोड राजस्थान से हमारे दोस्त, और कुलदीप गुप्ता जी उधर ही बाराबंकी से, सुरभि सिंह है।

0: रामपुर से, और नवनीत मोदिया जी, श्री प्रकाश तिवारी जी और हरिकेश जी और फेड अंसारी जी रामपुर कटरा से।
1: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबू भाई, ऐसे ही कॉल करते रहिएगा और एफएम रेनबो से दिल लगी ऐसे ही लगी रहनी चाहिए, है ना
0: जी सर।
1: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की तीन दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी

0: भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
1: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पे लोगों ने मुझे अभिमान दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता हूं।
0: अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे पर श्री नवीन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय लिए, उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। श्री मोदी ने आज राजस्थान में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया।
2: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
0: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल, एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार ये बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज महोबा में श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना है, वह अच्छी व्यवस्था है। यदि कोई गड़बड़ी की है तो मेरा इतना ही कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 और 3 जुलाई को 2-2 पाली तथा आज 1 पाली में समाप्त हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार परीक्षा में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के प्रति आभार व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन भारत की सनातन चेतना का एक जीवंत प्रकाश स्तंभ है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व

0: की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन आज जनभवन लखनऊ में मैंगो बायर सेलर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य MOU भी हुए। इस अवसर पर उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
2: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच कर रही हैं और जब से हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनके तैयार होंगे हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
0: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बीते 24 घंटों में कानपुर और आज सुबह टूंडला में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 दिवसीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम हेलो एफएम में। सर्वेश आज आपके साथ और आप ही की कॉल्स ले रहा हूं और आपसे सीधे बात हो रही है इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह 0522 38 845 22 38 852 और 29 82 377 ये नंबर है हमारे। जल्दी से इन्हें मिलाइए और हमसे बात कीजिए। कॉल आई है हमारे पास और ये कॉल आई है यूपी से नहीं पंजाब से। चलिए बात करते हैं, देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताएं, पंजाब में कहां से आपने हमें कॉल किया है? पंजाब से
1: हम पाली प्याला जिला होशियारपुर।
0: जिला होशियारपुर से आपने हमें कॉल किया है और ऐप पर आप हमें वहां सुनते हैं ऑनलाइन माध्यम से?
1: हाँ जी, मैं ऐप से सुनता हूं सर जी।
0: अच्छा, हमारे प्रोग्राम से आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
1: बहुत अच्छा लगता है जी, 7 बजे प्रोग्राम लगता है ना।
0: जी जी जी,
1: बहुत अच्छा लगता है, आपकी आवाज बड़ी मीठी लगती है।
0: वैसे
1: बहुत अच्छा बोलते हैं जी, बहुत बढ़िया लगता है
0: जी। ये हमारे शहर
1: गल्ला लगती है।
0: जी जी जी,
1: दोस्त फोन करते हैं उसकी बहुत बात बढ़िया लगती है, जो हिंदी में बोलते हैं ना बड़ा बढ़िया लगता है।
0: और आपकी जो आवाज है पंजाबी में वो हमको बहुत बढ़िया लग रही है।
1: थोड़ी थोड़ी मुझे आती है लेकिन हिंदी इतनी नहीं आती।
0: बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमसे जुड़े हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लखनऊ शहर की आवाज की जब तारीफ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमारे सभी आरजेस की तारीफ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज
1: जितने भी आरजे आते हैं मैं रोज सुनता हूँ प्रोग्राम।
0: जी जी जी जी जी जी जी। और क्या करते हैं आप?
1: हमारा टेलर का शॉप है, सिलाई करते हैं।
0: अच्छा, सिलाई करते हैं, बहुत अच्छा काम है आपका। और खेती बाड़ी से भी जुड़े हुए हैं आप?
1: नहीं नहीं, खेती बाड़ी से नहीं, हमारा काम ही इतना है, यानी कि सुबह 5 बजे आता है रात को 8 बजे जाना पड़ता है।
0: जी जी जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं और अपने कार्यक्रम अपने जो काम हैं उनमें बिजी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आज गाना आपने गुलदास मान साहब का सुनना चाहा है?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। और
1: मान का सॉन्ग है सखिए सहेलिए।
0: सखिए सहेलिए,
1: उसने मुझे जुड़ा है, जलंधर से है
0: जी,
1: जलंधर से है मेंटू चंदेल।
0: जी जी जी,
1: और भी और श्रोते आते हैं, एक रिंकी और पिंकी।
0: जी जी जी, रिंकी
1: पिंकी अच्छी लगती है, बहुत मीठी आवाज लगती है
0: उसकी। जी वो अक्सर फोन करते
1: हैं प्रोग्राम।
0: जी जी जी जी, और अच्छी बात हमारे चैनल की ये है कि जो सुनने वाले हैं वो भी आपस में कनेक्ट रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं और एक दूसरे का नाम लेते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। मोहब्बत जो है ना, वो सिलसिला जो है हमारे चैनल का ऐसे ही चलता रहता है, सुबह 6 बजे से शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता है ये सिलसिला।
1: जी सर जी सर।
0: तो ये गाना हमने आपका लगा दिया है और किसी को सुनवाना चाहे, किसी और का नाम लेना चाहे तो आप ले सकते हैं।
1: हाँ, मेरी बेटी घर पे सुनती है, उसका नाम राइमा है।
0: जी,
1: बोलती कि पापा आज ये गाना लुवाना है।
0: और ये देखिए,
1: कहती पापा आज यहाँ गाना सुनना है।
0: जी जी, और ये गाना आपका आ गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू सर, थैंक यू। ओके भाई।
0: ओके जी भाई।

0: और घड़ी में 7:38 का वक्त हो चुका है और अभी हमारी बात हो रही थी पंजाब से, और वहाँ पर भी लोग हमें सुनते हैं, पूरे देश में लोग हमें सुनते हैं और विदेशों में भी लोग हमें सुनते हैं, जैसा कि हमें मेल्स आते हैं। और एक मेल हमारे पास आया हुआ है अंजू जी का, लखनऊ से ये मेल उन्होंने किया है और बहुत तारीफ़ की है हमारे प्रोग्राम्स की, और गाना भी सुनना चाहती हैं धुरंधर मूवी का। बिल्कुल वो गाना भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन अभी कोई है लाइन पर, उनसे पहले हम बात कर लेते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं। सबीना जी बोल रही हैं, कहाँ से आपने हमें कॉल किया है? कुर्सी जिला बाराबंकी से। क्या बात है, और बताइए हाल चाल कैसे हैं आपके? बहुत अच्छे हैं
1: जी।
0: मौसम ने परेशान कर रखा है थोड़ा सा
1: जी।
0: और आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगी? बेवफा मूवी का इश्क छुपता नहीं छुपाने से, है ना
1: जी।
0: और किसी को सुनवाना चाहेंगी?
1: जी सर, आप
0: और जी
1: देव सर,
0: जी जी
1: अनुपम,
0: और भी कोई?
1: जी सर बस
0: बस। चलिए गाना आप तक पहुंच रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबीना जी।

और ये मेल आया हमारे पास अंजू जी का लखनऊ से, और ये गाना सुनना चाहती हैं धुरंधर मूवी का। तो आपको बता दूं कि आप हमें कॉल भी कर सकती हैं 0522 22 38 845 और 0522 22 38 852। फिलहाल ये सॉन्ग आपको भेजा जा रहा है, सुनिए और ऐसे ही हेलो एफएम को सुनते रहिए, एफएम रेनबो को सुनते रहिए।

0: अरे वाह, तहसील जिला नागदा,
1: तहसील नागदा जिला उज्जैन।
0: अच्छा, तहसील नागदा जिला उज्जैन, क्या बात है। हर हर महादेव, कैसे हैं आप? जी जी जी, और बताइए क्या हो रहा है आजकल मानसून सीजन में, बारिश के मौसम में?
1: जी, अभी सोयाबीन की फसल लगाई है और दो तीन दिन से रेगुलर बारिश हो रही है।
0: अरे वाह, वहाँ बारिश बढ़िया हो रही है।
1: हाँ जी, अभी भी शाम को आधे घंटे से अच्छी बारिश हुई।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आपसे बात हुई है ना, तो अब मुझे लगता है जल्दी से लखनऊ में भी खूब बारिश होने वाली है।
1: बिल्कुल होगी लखनऊ में बारिश। सर, मेरी लड़की बिंदिया, वो आपसे बात करना चाहती है।
0: जी जी, बात कराएं, बिल्कुल बात कराएं।
2: हेलो।
0: हेलो बेटा, कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ। प्रोग्राम अच्छे लगते हैं आपको उज्जैन में जब आप सुनते हैं हमें?
2: हाँ हाँ सर।
0: और आप पढ़ाई करती हैं?
2: हाँ सर।
0: किस क्लास में है अभी?
2: 11th में।
0: 11th में, ओ हो, यानी नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स हैं आपके, 12th के एग्जाम है।
2: हाँ।
0: तो पढ़ाई अच्छे से हो रही है?
2: हाँ सर।
0: बहुत अच्छी बात है। और FM रेनबो सुनना अच्छा लगता है?
2: हाँ सर।
0: क्या बात है,
2: मोबाइल ऐप पे सुनते हैं पापा के साथ, अच्छा लगता है सुनना।
0: मुझे लगता है मोबाइल ऐप पे आप सुनते होंगे और पूरी फैमिली एक साथ बैठ के सुनती होगी, और गाने जब बजते होंगे तो बड़ा अच्छा लगता होगा।
2: हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है सब सुनते।
0: और आपके पापा ने आज गाना भी बहुत अच्छा सुनना चाहा है, कसूर मूवी का।
2: हाँ सर।
0: चलिए, और डेडिकेशन है आपके, किसी को सुनवाना चाहते हैं? जी नाम ले लीजिए।
1: डेडिकेशन है हमारे दोस्त हैं आकाशवाणी के।
0: जी
1: जी, जो रेगुलर लिस्टनर है उन सभी के लिए, और रामपुर से हैं
0: जी
1: ओमकार जी और मिंटू तिवारी।
0: जी जी जी,
1: हारून नूर अंसारी।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: हमारा ग्रुप बना हुआ है रेडियो,
0: अच्छा।
1: मतलब एकता ग्रुप।
0: जी जी जी जी, बहुत अच्छी बात है कि हम आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रेम सिंह जी, ऐसे ही कॉल करते रहिएगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: थैंक यू सो मच सर, मुझे भी आपसे बात करके बहुत
0: बहुत शुक्रिया आपका।

0: घड़ी में 7:46 हो चुके हैं और अगला कॉल जो हमारे पास आया है वो महाकाल की नगरी उज्जैन से है और देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, अपना नाम बताएं।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।

0: करते हैं 0522 2048 42 2048 42 38 652 और 2982 377 ये नंबर्स हैं हमारे। देखते हैं अभी लाइन पर कौन है हमसे बात करने के लिए। हेलो,
1: हाँ गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग जी, अपना नाम बताएं।
1: हाँ जी, जाकर बोल रहे हैं
0: रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से। आपने हमें कॉल किया है और आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं और सुनवाना चाहते हैं?
1: किशोर दा का गाना है
0: जी, रिमझिम गिरे सावन। बिल्कुल, क्या खूबसूरत सा गाना है लता किशोर जी का। और किसको सुनवाना चाहेंगे?
1: इरशाद अहमद साहब आदमी हैं।
0: थोड़ा सा दूर हो जाए, आपके फोन से डिस्टरबेंस आ रहा है। हेलो,
1: हाँ मैं
0: जी, अब ठीक है, अब ठीक है जी।
1: हाँ मोहम्मद फैज साहब हैं
0: जी, जी जी जी जी,
1: श्यामा परवीन अंसारी जी हैं
0: जी,
1: सालता है और जितने भी जो लिसनर सुन रहे हैं सबको ये गाना डेडिकेट है
0: जी,
1: और खास तौर पर आपको भी रहेगा।
0: चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अख्तर भाई, और आप हमारे बहुत ही रेगुलर लिस्टर हैं, आपसे बात होती है बहुत अच्छा लगता है। वक्त का भाई ये गाना हमने आपका लगा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी शुक्रिया, बहुत बहुत।

0: और 7:54 का वक्त हो चुका है। जाते जाते एक कॉल हम और लेंगे और जल्दी से बात करेंगे, देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अपना नाम बताएं जल्दी से।
1: बहुत अच्छे हैं, जिला सीतापुर पचायनापुर मस्जिद के पास है, शमा परवीन
0: जी। शमा परवीन अंसारी जी बोल रही हैं और आज हाँ हाँ बिल्कुल प्यार भरा सलाम मैंने कबूल कर लिया। गाना जल्दी से बता दें, कौन सा सुनना चाहेंगे आज आप?
1: आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे।
0: और देखिए, हमने 100 टुकड़े कर दिए। देखिए गाना आ गया आपका,
1: कर दिए।
0: देखिए आगे गाना।
1: लेकिन ये सॉन्ग सबसे पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं।
0: जी जी, और किसको सुनवाना चाहेंगे? फहीम सर अभी स्टूडियो में ही मौजूद हैं और आज 8 से 8
1: और मोहम्मद राशिद भाई हैं। मोहम्मद राशिद भाई, शत्रु कुमार भाई हैं और रोशनी रावत हैं।
0: जी जी जी,
1: मुस्कुरा रही हैं, मतलब एफएम रेनबो नहीं सुन रही है, रोशनी रावत मुस्कुरा रही हैं।
0: और कोई और भी है जो मुस्कुरा रहा है मेरे सामने, जानना चाहेंगी कौन?
1: फहीम सर
0: आ चुके हैं और बहुत
1: सर को मेरा प्यार भरा सलाम अलैकुम।
0: आइए फहीम साहब, देखिए बहुत जल्दी आपने बुलाया और वो आ गए जल्दी से।
2: सारे लिसनर जितने वो हमें याद कर रहे हो, देखिए आप लोगों ने याद किया और मैं हाजिर हो चुका हूँ स्टूडियो में।
0: देखिए आ गए फहीम भाई और रात 12 बजे तक आपके साथ रहेंगे और ये गाना आप तक पहुंचा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

और इसी गाने के साथ मुझे अनुमति दीजिए, फहीम भाई रहेंगे आपके साथ रात 8 बजे से 12 बजे तक, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। अपना खूब ख्याल रखिए और खुश रहिए।

नमस्कार। रात्रि के 8 बजे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के साणंद में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से ये केंद्र देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण क्षेत्र यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग पूरा करने में भी सहायता मिलेगी। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस संयंत्र में निर्मित चिप्स का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर

मंत्री शहरों में कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगी। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन अवसर पर कहा कि ये योजना 100 नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड के विकास में सुविधा प्रदान करेगी। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम रातों रात लागू नहीं किया गया है, बल्कि ये एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए इसे लागू किया गया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पूर्वाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरक्षित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। उन्होंने कहा कि इस पहल को वैज्ञानिक प्रमाणों, ऑटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा किए गए व्यापक परीक्षणों, भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ और भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी का समर्थन प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नबीन आज से लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों

वैज्ञानिक प्रमाणों ऑटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा किए गए व्यापक परीक्षणों, भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ और भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी का समर्थन प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नबीन आज से लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक की। इसके बाद श्री नितिन ने पद्मश्री डॉ. विद्या बिंदु सिंह के आवास पर प्रदेश की 4 विशिष्ट हस्तियों के साथ संवाद भी किया। कौशाम्बी जनपद के सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिलाए जाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने जनपद में किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण और नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने के लिए 6 से 26 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: दर्द काफी है बेखुदी के लिए, दर्द काफी है बेखुदी के लिए, मौत जरूरी है जिंदगी के लिए, कौन मरता है किसी के लिए, हम तो जिंदा हैं बस आपकी दोस्ती के लिए।

0: आबशार 100.7 FM रेनबो पर धड़कन लखनऊ की।
1: फूलों की वादी में हो बसेरा आपका, फूलों की वादी में हो बसेरा आपका, सितारों के आंगन में हो घर आपका। दुआ करते हैं खुदा से सारे जहां से, खूबसूरत हो हर सवेरा आप।

0: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: ए भूलना तो चाहा,
2: हर आहट पे तेरी तलाश है, हर आहट पे तेरी तलाश है, दूर होकर भी तू मेरे पास है। दिल ने याद किया हमें इतना कि दिल मुझसे पूछे कि धड़कन किसके पास है।

0: रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: इश्क में कई मजबूरी होती हैं, इश्क में कई मजबूरी होती है, पास रहकर भी मीलों की दूरी होती है, नजर बात करती है, धड़कन भी साथ होती है, होंठ खामोश होते हैं फिर भी बात होती है।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: कुछ लफ्ज बिना कहे अल्फाज होते हैं, कुछ लफ्ज बिना कहे अल्फाज होते हैं, कुछ लोग इस कदर खास होते हैं, दूर हों निगाहों से चाहे जितना, लेकिन फिर भी दिल के पास होते हैं।

0: है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: वो वादे पे तेरे एतबार नहीं करते, वो वादे पे तेरे एतबार नहीं करते, हम अपनी मोहब्बत का जिक्र सरे बाजार नहीं करते, हम उनकी रुसवाइयों से डरते हैं और वो समझते हैं कि हम उन्हें प्यार नहीं करते।

0: रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी गुजर जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, जिंदगी गुजर जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ये वक्त भी गुजर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। क्या पता तुम मुझे याद करोगे, ये यादें भी गुजर जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: 8:40 का वक्त, दीजिए प्रोग्राम आबशार से फहीम को इजाजत। मुलाकात होगी समाचारों के बाद। बस ये मोहब्बत भरा साथ दोस्तों यूं ही निभाते रहिए, और इस प्रोग्राम यानी आबशार से दीजिए फहीम को इजाजत। अब से थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार संध्या।

0: समाचार संध्या के साथ मैं पुनीत शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी

0: पावर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणत संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
0: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
2: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये

0: जानकारी दी।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के

सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
4: नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू येट अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ आकाशवाणी पॉडकास्ट्स। आवर टुडेज स्पेशल गेस्ट हैज फोरेड इनटू एंड रीच्ड द ज़ेनिथ ऑफ टेक्नोलॉजी, governance, media, and now film certification. It is my absolute honor and privilege

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, रात्रि के 10 बजे और अब सुनिए मुख्य समाचार। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क की तीसरी वर्षगांठ पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके के साथ बड़े पैमाने पर जन जागरूकता और व्यवहार में बदलाव से इस चुनौती से निपटा जा सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पृथ्वी 2026 भारत का पूरा विज्ञान फिल्म महोत्सव की औपचारिक घोषणा करते हुए इसके आधिकारिक ब्रोशर का जनभवन लखनऊ में लोकार्पण किया। पृथ्वी 2026 का लक्ष्य वैज्ञानिक अनुसंधान और समाज के बीच संवाद की दूरी को कम करना है। यह पहल जटिल वैज्ञानिक ज्ञान को सरल, प्रभावशाली और दृश्य कथाओं के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास करती है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन आज जनभवन लखनऊ में मैंगो बायर सेलर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य MOU भी हुए। इस अवसर पर उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।
1: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

10:09:25 ये वक्त होता है दोस्तों रात का, एक ऐसा खूबसूरत वक्त कि जब आप दिन भर की थकान से ऊब कर और कुछ खामोशी के पलों को जीते हुए, दिन भर की थकान को दूर करते हुए आप जब बिस्तर पर होते हैं या गाड़ी में होते हैं या किसी के साथ होते हैं और जब ये खूबसूरत गाने आपके कानों में जाते हैं तो दिल को एक बहुत सुकून महसूस होता है। इन गानों में एक ऐसी सच्चाई छुपी होती है कि जो माजी की यादों को ताज़ा कर देती है। दोस्तों ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी हसीन लोग होते हैं कि जब वो आपके करीब होते हैं तो उनकी बातें आपके मन को सुकून देती हैं। हर वो पल आपको बेहद खूबसूरत सा लगता है जब आप उनकी बातों को सुनते हैं जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सुनते रहिए रजनीगंधा फहीम के साथ।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: दस बजकर 20 मिनट का वक्त और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीगंधा, आज अपने आवाज़ दोस्त फहीम के साथ। रात गुजारी फिर महकती सुबह आई, मगर इन आंखों से रोया ना गया। कुछ जख्म जुदाई के ऐसे मिले कि फूलों के बिस्तर पे भी सोया ना गया। दोस्तों, जिंदगी में ना हर इंसान का बात करने का एक अलग अंदाज होता है, हर किसी का अपना एक मूड होता है, एक मिजाज होता है बात करने का। किसी को बात करने का अंदाज दिल को छू जाता है तो किसी से बात करने पर दिल गम से टूट जाता है। मगर बात हर इंसान करता है, फिर वो चाहे बेबाकी से बात करे या खामोशी से बात करता जरूर है।

दोस्तों, इंसान अपनी बातों से या तो धनी हो जाता है या फिर कंगाल। कुछ बातें दिल को छू जाती हैं तो कुछ बातें दिल को तोड़ देती हैं, और ऐसा तोड़ देती हैं कि दिल फिर कभी अपने आप को संभाल नहीं पाता है। और किसी ने क्या खूब लिखा है कि तुम मिलो या ना मिलो, तुम मिलो या ना मिलो, मिलने का गम नहीं, तुम आंखें बंद करके याद कर लो, ये मिलने से कम नहीं।

0: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: दोस्तों, जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनसे इंसान बहुत खुश हो जाता है और कुछ बातों से वो इतना नाराज हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी ही बदल देता है और पलट कर फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। यूं दूर रहकर दूरियों को बढ़ाया नहीं करते, यूं दूर रहकर दूरियों को बढ़ाया नहीं करते, अपने दीवाने को यूं सताया नहीं करते। हर वक्त जिसे तुम्हारा ख्याल हो, उसे अपनी एक नज़र के लिए तड़पाया नहीं करते।

0: रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: दस बजकर 50 मिनट का वक्त और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीगंधा, आज अपने आवाजी दोस्त फहीम के साथ।

मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठा रहता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पाट और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है।

10:55 का वक्त, रजनीगंधा का ये सफर दोस्तों कुछ देर के लिए रोकना होगा। समाचारों के बाद एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी कुछ बेहतरीन सदाबहार गानों के साथ। तब तक ये प्यार भरा साथ, मोहब्बत भरा साथ यूं ही बनाए रखिए अपने दोस्त फहीम के साथ।

नमस्कार, रात्रि के 11 बजे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद नितिन नबीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इसके बाद श्री नबीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार ये बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 व 3 जुलाई को 2-2 पाली तथा आज 1 पाली में समाप्त हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार परीक्षा में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप
2: चुराए। 11:10 का वक्त और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीगंधा, आज अपने आवाज़ी दोस्त फहीम के साथ। ये मत सोचना कि भूल जाएंगे, ये मत सोचना कि भूल जाएंगे, तुमसे दूर रहकर भी तुम्हें चाहेंगे। अगर दोस्त बनकर न रह पाए तो अजनबी बनकर याद आएंगे।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: यूं दूर रहकर दूरियों को बढ़ाया नहीं करते, यूं दूर रहकर दूरियों को बढ़ाया नहीं करते, अपने दीवाने को यूं सताया नहीं करते। हर वक्त जिसे तुम्हारा ख्याल हो उसे अपनी एक नजर के लिए तड़पाया नहीं करते।

तूफान में कश्ती को किनारे भी मिलते हैं, तूफान में कश्ती को किनारे भी मिलते हैं, जहां में लोगों को सहारे भी मिलते हैं। दुनिया में सबसे प्यारी है जिंदगी, लेकिन कुछ लोग जिंदगी से भी प्यारे मिलते हैं।

यूं आपका दामन छुड़ाकर जाना नहीं चाहते, आपसे दूर होना नहीं चाहते, चाहते हैं हम आपको इतना कि पाकर आपको खोना नहीं चाहते।

तरह आपके पास बिखर जाएंगे, सुकून बनकर दिल में उतर जाएंगी। महसूस करने की कोशिश तो कीजिए, दूर होते हुए भी पास नजर आएंगे। 11:45 का वक्त और आप सुन रहे हैं पुराने गीतों के प्रोग्राम रजनीगंधा, आज अपने आवाज़ी दोस्त फहीम के साथ।

0: पहचान जाते।
1: तमन्ना थी आशियाने की, चली आंधिया जमाने की, मेरा गम कोई समझ न सका, मुझे आदत थी मुस्कुराने की।

चाहत तेरी छुपा के जिए जा रहा हूँ मैं, खुद को हसीन फरेब दिए जा रहा हूँ मैं। तू बेवफा है मेरा हौसला तो देख, तुझ पे वफा निसार करके जिए जा रहा हूँ।

यादों का मतलब उनसे क्या पूछो जो खुद ही यादों को मिटा दिया करते हैं। यादों का मतलब उनसे क्या पूछो जो खुद ही यादों को मिटा दिया करते हैं। यादों का मतलब उनसे पूछो जो यादों के सहारे जिया करते हैं। 11:55 का वक्त दीजिए प्रोग्राम रजनीगंधा से फहीम को इजाज़त। मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर कभी और किसी प्रोग्राम के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।

नमस्कार, रात्रि के 12 बजे और अब सुनिए मुख्य समाचार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन भारत की सनातन चेतना का एक जीवंत प्रकाश स्तंभ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य नितिन नबीन आज 2 दिवसीय दौरे पर पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इसके बाद श्री नबीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 2 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रहा और ये सामान्य से लगभग 4 डिग्री अधिक था। सूर्योदय 5:18 पर और सूर्यास्त 7:04 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन प्रातः 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। प्रातः 5:50 पर पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।